सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आप सबों का आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, सुबह के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रतिमा वर्मा की पूर्व प्रसारित आलेख, विषय है जैव उर्वरक के प्रकार एवं उनके भंडारण।
3: किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैव उर्वरक की। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है। जी हाँ किसान भाइयों, इस कमी की पूर्ति के लिए जैव उर्वरक का फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैव उर्वरक हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, इसलिए मिट्टी में इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इनके कल्चर का उपयोग जैविक खादों के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसे जैव उर्वरक भी कहते हैं। जैव उर्वरक मुख्यतः राइजोबियम, एजियोबैक्टर, एजियोस्पाइरम, फास्फेट और पोटाश घुलनशील जीवाणु वगैरह होते हैं। ग्रामीण भाइयों, जैव उर्वरक अनेक प्रकार की मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है, ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आती है। जीवाणु कल्चर को बीज या जैविक खादों के साथ मिलाकर मिट्टी में मिलाने पर खेत में इन जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस,

0: पोटाश आदि तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और फास्फोरस के लिए फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु कल्चर का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मुख्यतः 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अति आवश्यक तत्व है। यह पौधों को 3 प्रकार से उपलब्ध होती है, रासायनिक खाद द्वारा, गोबर की खाद द्वारा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घुलनशील जीवाणुओं द्वारा। ग्रामीण भाइयों, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में और स्थिर फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदल देते हैं। जीवाणु खाद ऐसे ही जीवाणुओं का उत्पाद है जो पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि की उपलब्धता बढ़ाता है। जैव उर्वरकों में अगर हम राइजोबियम कल्चर की बात करें तो यह एक नमी धारक पदार्थ और जीवाणु का मिश्रण है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में करते हैं। राइजोबियम एक गतिशील जीवाणु होता है। किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहनी फसलों में 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से किया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी और बीज के उपचार के लिए भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम और अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। राइजोबियम जीवाणु के प्रयोग से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रयोग से फसल की उपज 15-20% की वृद्धि होती है। राइजोबियम के प्रयोग से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। इन फसलों के बाद बोई जाने वाली फसलों में भी भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होने से पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों, अब बातें एजिटोबैक्टर की। एजिटोबैक्टर मृदा में पाया जाने वाला एक मृत जीवी जीवाणु है जो कि अदलनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इसका उपयोग मुख्यतः धान एवं गेहूं की फसलों में करते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर हो जाती है। एजिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी के उपचार, रोपाई और बीजों के उपचार के लिए भी किया जाता है। किसान भाइयों, अब बातें एसिटोबैक्टर की। एसिटोबैक्टर यह जीवाणु गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। एसिटोबैक्टर फसलों और पौधों की जड़ों के आसपास विखंडित होकर भूमि की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों तक पहुंचाते हैं। एसिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी एवं बीज उपचार के लिए किया जाता है। यह गन्ने और चुकंदर की फसल में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उसमें शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जैव उर्वरकों का भंडारण हमेशा ठंडे स्थान पर करें और इसे सूर्य की रोशनी से बचाकर रखें। इसे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग रखें। इसका प्रयोग पैकेट पर अंकित तिथि से पहले करें। जैव उर्वरकों का प्रयोग विशिष्ट फसल के लिए होता है, इसलिए फसल के हिसाब से ही जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें जैव उर्वरक की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुनते हैं श्री रामचरित मानस।

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा आज का चिंतन, शीर्षक है आत्मा की सुरक्षा के उपाय। सभी संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जैसे हम चोरों से अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसी प्रकार हमें आत्मा की भी सुरक्षा करनी चाहिए। अनजाने में हम चोरों को अपने भीतर घुसने देते हैं और वे हमारे भीतर आकर तबाही मचा देते हैं। ये चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जब ये चोर हमारे अंदर अपना अधिकार जमा लेते हैं तब हमें गुस्सा आता है, हम झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और अहंकार के कारण कई तरह की गड़बड़ियां करते हैं। परिणाम यह होता है कि हमें हमारे सच्चे घर और ईश्वर से दूर कर देते हैं। हम नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं और हमारी सच्ची दौलत जो परमेश्वर है उससे जुड़ नहीं पाते। ये चोर हमारे विचारों पर कब्जा कर लेते हैं। हम सद्गुणों को अपने जीवन में ढालना चाहते हैं, निष्काम सेवा करना चाहते हैं, पर ये हमें जरूरतों और इच्छाओं की जाल में फंसाए रखते हैं, हमारे मन की शांति भंग कर देते हैं। ऐसे में हम अपने आपकी असफल, असहाय और निराशा से घिरा हुआ पाते हैं। ऐसी अवस्था में हमारे अंदर से एक पुकार निकलती है जिसे हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना वह क्षण है जब हम मदद के लिए पुकारते हैं और प्रभु हमारी मदद के लिए चले आते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रभु को याद करने का एक और तरीका है, जिसे हम सिमरन कहते हैं। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, जिसे दोहराने से पांचों चोर भाग जाते हैं। सिमरन करने से हम स्वयं को नम्रता और मानवता से भरा हुआ अपने आप को पाते हैं। इसी तरह यदि हम किसी ऐसे संत महापुरुष की संगत करें जो प्रभु नाम की दौलत को बांटते हैं, उनके साथ रहकर भी हम अपनी मनस्थिति बदल सकते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि हर व्यक्ति के लिए उम्मीद है, बुरे से बुरे के लिए भी पश्चाताप करो, प्रार्थना करो और आगे पाप मत करो। महापुरुषों के प्यार भरे इस अनोखे तरीकों से चोर और डाकू भी अच्छे मनुष्य में बदल जाते हैं। संतों की संगति में रहने और ध्यान अभ्यास के जरिए ज्योति और श्रुति से जुड़ने से भी हमें अपने मन को हम शांत कर सकते हैं।

श्रोतों में भी आप सुन रहे थे हमारा आज का चिंतन, शीर्षक था आत्मा की सुरक्षा के उपाय। वचन स्वर था संजय कुमार सिन्हा का।

0: सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पढ़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे।

0: आराधना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और साथियों के स्वर में भक्ति गीत। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर पी के राव से ली गई पूर्व प्रसिद्ध भेंट वार्ता। विषय है सड़क दुर्घटना।
1: या हेलमेट पहनने के साथ साथ और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाई स्पीड हो गया, नशे की लत हो गई, उनकी आदत हो गई, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनके

0: पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, उसके बाद भी बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत तेज चलाते हैं। तो आप अब हम मुख्य बात पे मुख्य मुद्दे पे आएँ कि सड़क दुर्घटना के बाद जो स्थिति बनती है, जैसे चोट लगने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है अस्पताल में। आप देखते हैं आए दिन आप इलाज करते हैं इमरजेंसी में इस तरह के लोगों का, तो क्या क्या देखने को मिलती है, कितनी बड़ी घटना के बाद कितना बुरा परिणाम आपने देखा अभी।
1: बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जो कि छोटे से चीज़ों के चलते, जैसे हेलमेट नहीं पहने और ज़्यादा स्पीड के चलते, बहुत सारे छोटे छोटे गलतियों के चलते बहुत बड़ी गंभीर रूप से बीमारियां का कारण बन रहे हैं बच्चे लोग, छोटे वो भी कम उम्र के, किशोर 18 से नीचे, जिनकी लाइसेंस भी नहीं है हमारे। और बहुत सारे हॉस्पिटल में भी आके बेचारे बच्चे छोटे, बड़ा तकलीफ़ होता है हमें भी। और हाँ, हमने हेड इंजरी बहुत कॉमन माना है, हर हर एक इसमें हर एक एक्सीडेंट में हेड इंजरी का बहुत कॉमन आ गया है, जिसमें कि इंटरनल ब्लीडिंग के साथ साथ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत पाया गया है। और बहुत से एक्सीडेंट ऐसे हैं कि इंटरनल एब्डोमिन में भी चोट लगती है, जिसमें कि फेफड़े भी डैमेज हो जाते हैं, पेट में एब्डोमिन भी डैमेज हो जाती है। और ये चीज़ बहुत प्ररूप रूप ले लेती है, जिसमें कारण कि कभी कभी बच्चे लोग रात में भी आते हैं एक्सीडेंट होके, जो कि उस टाइम पे हम लोग को वहाँ पे सीटी स्कैन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है रात के दौरान। तो हमें हिमाटोमा अगर कुछ जम गया है कुछ इसमें तो पता नहीं चलती है, तो उसके कारण हम लोगों ने बहुत सारे कम किशोरा बच्चों को भी हमने खोया है। और ये है कि
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हेड इंजरी एक बड़ी मैंने बात होती है कि हेड इंजरी होने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है आपको इलाज कर पाना भी, और शायद मरीज़ का ठीक होना भी थोड़ा लंबा समय भी लगता है और ठीक होने में परेशानी भी आती है, कभी कभी तो ठीक नहीं भी होता हो पाता है लंबे इलाज के बाद भी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने सही कहा कि अगर हाथ पैर टूट जाएँ तो शायद उनका इलाज हो जाए, जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन हेड इंजरी क्या मौत का कारण भी बन सकती है कभी कभी?
1: जरूर बन सकती है, समय पे अगर इसे इलाज नहीं कर पाए तो हेड इंजरी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं मौत की। और सबसे पहली कारण है कि खून का जाति बहना, अंदर थक्का जमना खून को, और इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना, बहुत सारे कारण हैं। और सबसे बड़ी कारण है हीमोग्लोबिन की कमी होनी, जो कि खून की हमेशा बेहतर रहना।
0: तो जैसे एक्सीडेंट के बाद अगर आप ये कहें कि प्राथमिक चिकित्सा, अगर तुरंत अस्पताल मान लीजिए बहुत नज़दीक नहीं है, किसी चिकित्सक से मिल पाना संभव नहीं है, तो तुरंत क्या करना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने बताएं आप।
1: जी मिश्रा जी, इसमें एक हम ये कह सकते हैं, अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाती किसी को भी, अगर कोई सामने वाले कहीं भी कोई भी हो, कोई मदद करने वाले हो, सहपाठी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जितना जल्दी हो सके उनको हमेशा हॉस्पिटल, जो भी नज़दीक रहे, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ भी है, कोई भी हॉस्पिटल हो, उन्हें तुरंत अत्यंत शीघ्र उनको लेके आए। हाँ, अगर उन्हें ज़्यादा चोट है, कहीं ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उन्हें कुछ नहीं करना, आराम से खून को रोकते हुए, अब तो हर जगह कॉटन बैंडेज हर जगह, हर ग्रोसरी स्टोर में हर जगह मिलने उपलब्ध हो गई हैं। ब्लीडिंग रोकने से आधा जान तो एकदम वो बचा ही रहा है स्वयं, और ये जो बचाने वाले हैं वो कभी डरे नहीं, उन्होंने उनके लिए तो बहुत अच्छी उपलब्धि है कि उन्होंने एक एक अपना इंसानियत दिखाते हुए जान बचा लिया जो सामने वाले को, और डरे नहीं कि कोई केस होता है, कुछ हो, कुछ नहीं हो सकता। आप एकदम बहुत एक को आप जान बचा रहे हैं, और ये आपका फ़र्ज़ है कि बहुत अच्छी फ़र्ज़ आप निभाइएगा, और आप इस चीज़ का कोई टेंशन ना लें कि वो हमें हॉस्पिटल में लाया तो हम पे केस होगा या कुछ मुकदमे होंगे, ऐसा कुछ सोचे ना। और जितना जल्दी हो सके उनको नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र या कोई भी हॉस्पिटल में पहुंचा दें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रोड दुर्घटना होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करता है, अस्पताल पहुंचाता है, उसकी मदद करता है, तो उसको पुलिस के से की परेशानी से बचने के लिए लोग चाहते हैं कि इसमें क्यों आगे आएं, तो ये चीज़ अब नहीं होगी। उस तरह के लोगों को जो मरीज़ को अस्पताल पहुंचाएंगे उनको इनाम दिया जाएगा, उनकी शाबाशी होगी और उनको उनकी तारीफ करेंगे सब लोग, पुलिस कभी परेशान नहीं करेगी, कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, बिल्कुल उनको इत्मीनान से सिर्फ उठाकर मरीज को चिकित्सक के पास अस्पताल के नज़दीक पहुंचा करके उनको फ्री हो सकते हैं वो। तो डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि अस्पताल पहुंचाने की जो जवाबदेही वो लें, अगर तुरंत अगर बैंडेज बांध दिया तो बैंडेज बांध करके, या फिर अगर कभी कभी हाथ पैर भी टूट जाते हैं, बुरी तरह टूट जाते हैं, तो खून का बहना रुकने के साथ साथ हाथ पैर टूटे वाली स्थिति में उनको कैसे संभाल के कैसे डॉक्टर पास पहुँचाया जाए?
1: जी बहुत अच्छी सवाल आपने बोली है। हाँ, अगर कहीं ज़्यादा इंजुरी है, कहीं हाथ पैर टूट जाती है, तो उसे उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ बस जिस पोजीशन में है, सीधे हैं, अगर सीधा है तो सीधा एकदम स्ट्रेच करके उनको धीरे धीरे सपोर्ट दीजिए। बांस, कोई लकड़ी देख लीजिए आसपास के, कोई बांस हो, कुछ भी, कोई भी छोटी मोटी लकड़ियाँ उसमें डाल के उस बैंडेज को बांधे, ताकि वो टेढ़ा ना रहे, सीधा रहे, और ब्लीडिंग भी कम होती है। और बहुत हमने गढ़वा में बहुत सारे देखे हैं ऐसे आदमी को बचाते हुए, और बहुत अच्छा लगा। हाथ हो, पैर हो, बस इसका सपोर्ट जरूरी है। छोटी छोटी लकड़ियाँ, लकड़ी का सपोर्ट रखते हुए उसे बांध के सीधा करके, और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आइए, हम लोग सब व्यवस्था यहाँ पे है ही।
0: डॉक्टर पी के राव, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत ढेर सारी धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पी के राव से ली गई पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता, विषय था सड़क दुर्घटना।

FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। इस चुबी की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पुनः लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे। उन्होंने नागरिकों से देश की प्रगति में योगदान जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां और इरादे सही हैं। देश में कच्चे तेल के बाद सोना ही ऐसी दूसरी वस्तु है जिसका सर्वाधिक आयात किया जाता है। सोने की थोक मात्रा में खरीद बंद करने से देश के कुल आयात बिल में भारी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर

0: से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। चीनी भंडारण की नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी स्टॉक को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता है और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी गई और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के विरुद्ध जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को हम आज अपने परिश्रम से साकार करके रहेंगे और इसलिए आइए देशवासियों, हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें। हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति आज एकजुट होकर के देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
1: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains. Taking a swipe at his critics, he said some people within the country, drowned in an atmosphere of despair, are spreading the lies all around. Mr. Modi said the country's youth will see their dreams being realized through the hard work being put in today. He also called on citizens to continue contributing to the country's progress, saying the government's policies and intentions are right. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब आइए डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, तो आपसे कुछ ही देर में यानी 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। कलाकार होंगे भरत सिंह भारती और उनके साथी।

सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुनिएगा स्वर सरिता 7:45 से। कलाकार होंगे गुलाम अली। सुबह के 8 बजे हम शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। आठ बजकर 30 मिनट पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। लौटेंगे स्टूडियो 8:45 पर और सुनवाएंगे पुराने फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर आधारित कार्यक्रम आप सुनते हैं जोहार पलामू सुबह के 9 बजे। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

दिन के 10 बजे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 से 10:10 पर हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर में 1 बजे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:10 से। पुनः विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे 1:20 से। लौटेंगे स्टूडियो 5:30 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। पर आप सुनिएगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। 6:02 पर कार्यक्रम खेती बाड़ी और ग्रामीण सभा कार्यक्रम आप सुनिएगा 6:30 से। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से।

एक रंग, फिल्मी गीतों का यह प्रोग्राम हम पेश करेंगे 7:15 पर। स्वास्थ्य संबंधी कार्यकारी कार्यक्रम आप सुनेगा कल्याणी 7:45 से। इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनाएंगे भेंट वार्ता, विषय होगा स्वस्थ पोषण खुशहाल जीवन। भेंट वार्ता करेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बातचीत करेंगे संतोष कुमार। फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आप सुनिएगा चित्रपट से रात्रि 8 बजे। 8:45 पर News@9 रात्रि 9 बजे और उर्दू में खबरें 9:15 से। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 9:30 पर। लौटेंगे स्टूडियो रात्रि 10 बजे और सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। हर रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम पलाश। इस प्रोग्राम में हम आपको सुना रहे हैं भोजपुरी लोकगीत, कलाकार हैं भरत सिंह भारती और उनके साथी।

पलाश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भरत सिंह भारती और साथियों से भोजपुरी लोकगीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर सरिता। कलाकार है गुलाम अली। तो आइए सुनते हैं गुलाम अली की गाई हुई चंद गजलें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता। इस प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की गाई हुई गजलें।

श्रोताओं, स्वर सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई हुई गजलें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुबह के 8 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है। इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow kare.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मुज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा।

0: नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
2: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी
1: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र, एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में

0: 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है, हिंदुस्तान में है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और हॉर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
3: Swadeshi ka mantra, vocal for local, videshon ki yatraen, agar ghumne phirne jate hain, to nahi karna chahiye. Shaadi bah videshon mein karte hain, nahi karna chahiye. Made in India ke mantra ko jeena chahiye. Aur zarurat na ho, to sona bhi nahi khareedna chahiye. Hum jitna zyada Swadeshi par bal denge, jitna Atmanirbhar par bal denge, mujhe pakka vishwas hai, jab azadi ke 100 saal honge, hum hamari yuva pidhi ko viksit Bharat suprat karenge.
2: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% growth. देश खुशियों से भर गया है, लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
2: Taking a swipe at his critics, he said some people within the

0: country drowned in an atmosphere of despair are spreading the lies all around.
1: भारत के भीतर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए इन सारी चीजों को पार करते हुए उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है हमें इस गति को बनाए रखना हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है
0: Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from 15th of this month till 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability.
2: Currently, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of the last month. Under the amended provisions, a sugar dealer shall not hold any stock for a period exceeding 30 days from the date of receipt of such stock. The sugar dealer shall not also keep sugar in stock at any time and in any place throughout the country in excess of 2,000 quintals. However, the stock holding limit shall remain at 4,000 quintals for Kolkata and its extended metropolitan areas considering the specific market requirements of the region. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the Kolkata area is sourcing sugar from Uttar Pradesh and Maharashtra and supplying to the eastern part of the country, including the northeastern region. With Bhanu, Saklain Akhtar for Akashvani News, Delhi.
0: The government said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that retail intervention efforts have expanded significantly across 19 cities, supported by the dispatch of over 30 trucks to ensure widespread availability. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the progress of the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana at a meeting in New Delhi yesterday. The meeting focused on accelerating implementation of the scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district level performance for farmers. More from our correspondent.
3: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that the average score of the 100 districts across the 6 objectives of the scheme increased from 22.54 in April 2026 to 38.85 in July 2026, an improvement of 16.31 points. The ministry said that the scheme is being implemented through the convergence of 36 central schemes of 11 ministries and departments along with the state schemes and private sector participation. A total of 121 indicators comprising 74 output indicators and 47 outcome indicators have been identified across the 36 schemes for monitoring progress against annual targets. The review emphasized on strengthening the monitoring framework to move beyond tracking activities and expenditure towards measuring outcomes and the actual benefits reaching farmers. Dhan Dhanya Krishi Yojana was approved by the Union Cabinet last year and was launched on 11th October 2025. Shiva Mishra, Akashvani News, Delhi.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Raipur today to attend third convocation of All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Raipur. The convocation will mark a significant milestone in the institute's academic journey, with degrees being conferred on graduating students from undergraduate, postgraduate, super specialty, doctoral and allied health sciences programs in the presence of distinguished dignitaries. This is Akashvani giving you the news.
4: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube. For news on the go, follow us on X at AIR News Alerts and listen to AIR News on PB Shabd.
0: US has begun fresh strikes on Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, targets inside Iran. Iranian media reported that explosions were heard in Bandar Abbas, Hormuz, Asaluye, Jiroft, Khesham Island, Konark, Chabahar, Rasak, Sirik and Lawan. The US Central Command said it completed the wave of strikes against Iranian military targets, which included air defense sites, mine-laying capabilities and communication sites, among others. It said that the strikes follow recent attempted attacks by IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members. Iran's foreign ministry said that the US strikes hit a home hosting a wedding ceremony in the city in Kuheshtak, resulting in death of 4 civilian and over 50 injuries. US President Donald Trump, in a post on Truth Social, has warned that any retaliation by Iran against the very justified attack will see a stronger response by Washington. In response, Iran's IRGC claimed an attack on US military barracks at Jordan's Camp Titan. Iran's army said it targeted US forces stationed at Bahrain's Sheikh Isa Air Base. Kuwait's army said the country's air defenses responded to attacks by hostile drones from Iran. A 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside foreign experts. Alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Indian Embassy said that the team commenced the analysis at the Nepal Police Central Forensic Science Laboratory and the National Forensic Science Laboratory in Humaltar area of Kathmandu Valley. The Indian experts are working with their counterparts to speed up the processing of DNA samples collected from flood-affected areas and help establish the identities of victims and missing persons. The deployment of Indian forensic team is part of ongoing efforts to support Nepal in the aftermath of the recent flash floods, which caused significant loss of life and left several people unaccounted for. India and the US have agreed to work more closely on critical minerals following a meeting between Finance Minister Nirmala Sitharaman and US Treasury Secretary Scott Bessent. The agreement aims to strengthen the long-standing economic partnership between the two countries. The two leaders met on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, North Carolina, yesterday. Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will be on a three-day visit to India beginning today. During the visit, he will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi to discuss the entire spectrum of bilateral relations and regional and global issues of mutual interest. The India Meteorological Department, IMD, has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand today. The IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi today. Amid the threat of flooding in Bihar's border districts following floods in Nepal, severe erosion along the Ganga in Bhagalpur has raised concern. In Shankarpur of Kharik block, the situation remains sensitive due to the strong current and pressure of the river. More from our correspondent.
5: Severe erosion along the Ganga has washed away an old Durga temple, a Hanuman temple and around 500 meters of Zamidari embankment in the Navgachia block. People from the affected areas have been shifted to safer locations. Teams of the Water Resources Department are working on a war footing to control the erosion. Senior officials and engineers are present at the site and are continuously monitoring the situation. Water Resources Minister Vijay Kumar Chaudhary said that the erosion has intensified due to an unexpected change in the course of the Ganga. He said all possible efforts are being made to check the erosion and situation is being closely monitored. Meanwhile, a rise in the water levels of major rivers has led to flooding at several places in Saran, Vaishali, Begusarai, Buxar, Jahanabad, Nawada and Aurangabad districts. The administration and Water Resources Department are maintaining close vigil in vulnerable areas. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
0: In badminton, India's leading shuttler Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma will begin their campaigns today at the China Masters Super 750 in Shenzhen, Guangdong Province. Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in action in men's doubles. Earlier, Unnati Hooda has made an early exit from the tournament yesterday after she lost to South Korea's Kim Jae-yeon in straight games in the opening round of the women's singles. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
6: Thank you, Shagun. Prime Minister Narendra Modi asks SCO member nations to unite and fight against terror, shun double standards, resolve conflict via dialogue, respect sovereignty, leads the Asian age. All systems are go, stormproof economy, August queues lead to growth. Headlines the Economic Times, adding several macro indicators bring further economic cheer. GST mop-up grows 15%, car sales zoom, and other signals stay green on resilient strength. In a historic milestone for the Indian Air Force, Air Vice Marshal Shakti Sharma has become the first woman officer, non-medical, in the country's armed forces to attain the rank of Air Vice Marshal or equivalent, informs the Pioneer. And finally, scientists from the Zoological Survey of India, in collaboration with ICAR, Center Marine Fisheries Research Institute, and international experts, have discovered a new species of deep sea skate in the Arabian Sea off India's southwestern coast, informs the Pioneer. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shufflers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Masters Super 750 in Shenzhen today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आपसे बस थोड़ी ही देर में।
8: वेक्टर जनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
9: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
8: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जलशक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता सूची पर रांची में आज से दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निर्वाचन प्रबंधन और अकादमिक शोध को एक मंच पर लाने का प्रयास। रांची नगर निगम में संचालित बिना ट्रेड लाइसेंस वाले 18 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई, सील करने की प्रक्रिया शुरू। चतरा पलामू पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में अतिवृष्टि का रेड अलर्ट, अन्य जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और खूंटी के अजीत नाग अंडर 18 रग्बी टीम में तीसरी बार शामिल, चीन में होने वाली एशिया रग्बी अमीरात चैंपियनशिप में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। यह शिखर सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेगा और समयबद्ध कार्य योजनाएं विकसित करेगा। शिखर सम्मेलन चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: जल अवसंरचना परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन, जल संचय, जन भागीदारी कैच द रेन, पेयजल प्रणालियों के स्रोतों की स्थिरता तथा जल जीवन मिशन 2.0 शामिल है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में आज से वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्टर्स 2026 विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि सम्मेलन का आयोजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय झारखंड द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची प्रबंधन के प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।
11: पूरा स्क्रूटनी करने के बाद 58 पेपर्स फाइनल हुआ। ये सभी 58 पेपर्स का अभी दो तीन का कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन होंगी, वो भी दो वॉल्यूम में, दो बुक का माध्यम से भी कल रिलीज होगा। ये बेसिकली फ्यूचर में दुनिया में कहां पर भी इसी सब्जेक्ट में रिसर्च होगा, कुछ डिस्कशन होगा। ये बुक केवल आपको फिजिकल फॉर्म में हम लोग पब्लिश करेंगे, साथ में डिजिटली भी होगा।
10: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्र सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। यह नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
12: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
10: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कल प्रोजेक्ट भवन में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS और पलाश ब्रांड के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और पलाश को मजबूत ब्रांड के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। जन समस्या समाधान कार्यक्रम के तहत रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र के नागरिकों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था, यातायात, अतिक्रमण और असामाजिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में अघोरी आश्रम के पास बंद चीनी फैक्ट्री परिसर में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस पोस्ट स्थापित करने और 24 घंटे निगरानी और पेट्रोलिंग का निर्णय लिया गया। नागा बाबा खटाल सब्जी बाजार में अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए नगर निगम के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्र में बिना वैध म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विशेष जांच अभियान के तहत निगम की टीम ने विभिन्न वार्डों में संचालित कुल 70 कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी के ट्रेड लाइसेंस की जांच की। इनमें 18 संस्थान बिना वैध म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए। इन संस्थानों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां लेकर ही संचालन करने की अपील की है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2026-27 के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया कल पूरी हुई। कुल 86 नामांकन में 77 नामांकन कार्यकारिणी समिति के लिए और 9 नामांकन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए दाखिल किए गए। स्क्रूटनी में 2 नामांकन रद्द किए गए। देश के विभिन्न राज्यों में H1N1 सीजनल फ्लू को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इसे लेकर साहिबगंज के सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके लक्षण और बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बृहद कार्यक्रम आयोजित करेगा।
13: अभी तक कोई केस झारखंड से रिपोर्टेड नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है।

0: हैंड वॉश जो लोग कर सकते हैं और अपने को वो सुरक्षित करने के लिए, चूंकि उनका बहुत से लोगों का जब आता है इलाज के लिए तो संपर्क होता है, तो N95 मास्क लगाने के लिए कहा गया है, भीड़ भाड़ वाले इलाका में नहीं जाए।
1: और अब मौसम का हाल।

0: नदियों के बढ़े जलस्तर को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
1: जो स्वर्णरेखा और खरखाई के लो लाइंग एरियाज में बसे हुए लोग हैं वो खास ध्यान रख सकते हैं। उसी तरीके से दामोदर नदी के जो लो लाइंग एरिया में जो सेटलमेंट है वहाँ के लोग, पलामू संभाग में जो उत्तरी कोयल नदी है, अमानत नदी है, उसके लो लाइंग एरिया में जो लोग हैं वो थोड़ा सा खास ख्याल रखें। प्रशासन का जो भी अलर्ट या वार्निंग जाता है उसके हिसाब से आप काम करें।
0: झारखंड के उभरते रग्बी खिलाड़ी और खूंटी निवासी अजीत नाग लगातार तीसरी बार भारतीय अंडर 18 रग्बी टीम में शामिल होने में कामयाब रहे। अजीत नाग 5 और 6 सितंबर को चीन के चिंगदाओ शहर में आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अमीरात अंडर 18 चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड में लगातार भारी बारिश से प्रभावित जनजीवन की खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस रद्द, मुआवजा 3 माह में। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चांडिल डैम के सभी 13 कांके गेतल सूद के एक एक फाटक खुले। दैनिक जागरण लिखता है, थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर डीजीपी को नोटिस। हिंदुस्तान के शब्द हैं, गेतल सूद से राज्य को मिलने लगी सौर ऊर्जा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता सूची पर रांची में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, निर्वाचन प्रबंधन और अकादमिक शोध को एक मंच पर लाने का प्रयास। रांची नगर निगम में संचालित बिना ट्रेड लाइसेंस वाले 18 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई, सील करने की प्रक्रिया शुरू। चतरा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में अतिवृष्टि का रेड अलर्ट, अन्य जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और खूंटी के अजीत नाग अंडर 18 रग्बी टीम में तीसरी बार शामिल, चीन में होने वाली एशिया रग्बी अमीरात चैंपियनशिप में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के

0: प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत गुंजन।

इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। सुनते हैं सबसे पहले अनुराधा पटवाल और कुमार सानू की आवाज़। फिल्म है दिल है कि मानता नहीं। गीत के बोल फैज जानवर के हैं, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। अब आइए सुनते हैं एक बार फिर से अनुराधा पौडवाल की आवाज़। इनके साथ हैं उदित नारायण, गीत के बोल समीर के, और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद। फिल्म का नाम कुर्बान।

आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। मैं हूं संजय सिन्हा। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज़ों में राधा का संगम फिल्म का गीत। बोल हैं हसरत जयपुरी की और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: राधा का संगम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार थे हंसराज जयपुरी और संगीतकार अनु मलिक। तो इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन अब समाप्त होता है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं आज का सुविचार, स्थानीय खबरें, खेल और स्वास्थ्य संबंधी बातें। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं आज का विचार। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। अगर कोई हमारा भरोसा तोड़े तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। तो इस सुविचार के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक फिल्मी गीत।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहर पलामू और बातें करेंगे अब खेल जगत की। बंगाल की तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार की धारदार गेंदबाजी के बाद वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की तेज तराज पारी के दम पर पूर्व क्षेत्र ने मंगलवार को यहां सेमीफाइनल के तीसरे दिन गत चैंपियन मध्य क्षेत्र को 4 विकेट से हराकर दलीप ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम 8वीं बार फाइनल में पहुंची है। इसके पहले 2 बार खिताब जीता। पूर्व क्षेत्र के सामने फाइनल में दक्षिण क्षेत्र या उत्तर क्षेत्र की चुनौती होगी। फाइनल मुकाबला 6 सितंबर से चेपक चेन्नई में खेला जाएगा। शमी और मुकेश ने 7 विकेट आपस में साझा करते हुए मध्य क्षेत्र को दूसरी पारी में 158 रन पर समेट दिया। पूर्व क्षेत्र ने इसके बाद 6 विकेट गंवाने के बावजूद 159 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। स्पिनरों के लिए लगातार मददगार होती जा रही पिच पर 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूर्व क्षेत्र के लिए ठोस शुरुआत करना बेहद जरूरी था। मेसी की विदाई के लिए कोलकाता तैयार नहीं है। अच्छे दिन आए, बुरे दिन भी आए और फिर एक ऐसा बदनाम दिन भी आया जिसे कोलकाता शायद भूल जाना चाहेगा। इन सब के बीच लियोनेल मेसी किसी न किसी तरह इस शहर के फुटबॉल प्रेम के करीब बने रहे हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और कोलकाता में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ हाथ से फिसल रहा हो। मेसी शहर के लिए कभी सिर्फ एक और सुपरस्टार नहीं रहे जो आए, खेलो और चले गए। मेसी के पहली बार सॉल्ट लेक स्टेडियम में कदम रखने के भी अब ठीक 15 साल हो गए। 2 सितंबर की उस शाम शुरू हुआ 90 मिनट का जादू गहरे जुनून में बदल गया। वर्षों की दूरी के बावजूद यह जुनून कायम रहा और आखिरकार पिछले साल एक कड़वे अनुभव के बाद बदल गया। मेसी से पहले डियोगो माराडोना थे, माराडोना से पहले पेले थे और 1977 में न्यूयॉर्क कॉसमॉस की ओर से कोलकाता में खेले गए थे, लेकिन मेसी ने अपना अलग ही जुनून पैदा किया। मार्श और डेड की ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में वापसी। मिशेल मार्श और उनके साथ ही सलामी बल्लेबाज ड्रेविस हेड को इस महीने के आखिरी में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की 17 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है, जबकि शीर्ष क्रम में बल्लेबाज मार्शल लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है। मार्श और हेड इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान और बांग्लादेश में वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे। यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के वनडे विश्व कप खेला जाएगा। तो ये तो हो गई कुछ खेल संबंधी बातें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, हम डालते हैं एक नज़र स्थानीय खबरों पर। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मेदिनीनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कार्यक्रम करने का आयोजन किया है। पुलिस स्टेडियम में 5 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर डांडिया का आयोजन होगा। ये बातें जो हैं कही हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विकास सेठी ने। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के बड़ंगा बरवाड़ी गांव निवासी मजदूर महेंद्र विश्वकर्मा, जिनकी आयु 50 वर्ष है, नेपाल में आई बाढ़ के बाद पिछले 6 दिनों से लापता हैं। करीब 2 माह पूर्व नेपाल के बानेश्वर स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए गए थे। 25 अगस्त के बाद से परिजन ने उनका संपर्क नहीं हो सका था। लगातार संपर्क टूटे रहने के कारण परिवार के लोगों में चिंता बढ़ते जा रही थी। महेंद्र की पत्नी कलावती देवी ने बताया कि उनके पति प्रतिदिन फोन के माध्यम से परिजनों से बातचीत करते थे। नेपाल में बाढ़ आने के बाद अचानक उनका संपर्क टूट गया, लेकिन वे सकुशल लौट गए हैं। 6 दिनों से लापता ये महेंद्र सकुशल हैं। महेंद्र की पत्नी कलावती देवी के सकुशल होने को लेकर आश्वस्त हैं। नेपाल में हुई त्रासदी के बाद लगातार संपर्क टूटने से बेहद वे चिंतित थीं। भावुक होकर उन्होंने कहा था कि पति से अचानक संपर्क टूटने के बाद पूरा परिवार परेशान है, और ये खबर उन्हें सुकून दिया कि उनके पति जीवित हैं और सकुशल परिवार से मिलने जरूर आएंगे। मंडल डैम में कचरा फंसने से बहारू का डूब क्षेत्र में जल जमाव 700 परिवारों पर संकट गहराया है। मूसलाधार बारिश एवं मंडल डैम में फंसे मलबे से अचानक जल स्तर बढ़ गया है। जल स्तर में अचानक हुई अप्रत्याशित वृद्धि से तटीय गांवों के दर्जनों घरों में पानी घुस गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कम से कम 700 परिवार से अधिक इससे प्रभावित हो रहे हैं और खतरे जो है उन पर मंडरा रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों को डूब वाले इलाकों से दूर रहने के लिए सख्त हिदायत दी है। रात में अचानक जलस्तर बढ़ने के खतरे से निपटने के लिए इको विकास समितियां जमीनी स्तर पर लगातार मुस्तैद है और प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी एवं जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। आपदा के बीच पलामू टाइगर रिजर्व PTR उत्तरी पनमंडल ने तत्परता दिखाते हुए मंगलवार को सर्वाधिक प्रभावित कुटकू, भजना और खुरा गांव के 36 परिवारों के बीच युद्ध स्तर पर राहत सामग्री का वितरण किया। सुदूरवर्ती होने के कारण ये गांव पहले से ही मौलिक संसाधनों से महरूम है, जिससे इस आपदा से ग्रामीणों के जीवन स्तर को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ के इस अस्थायी खतरों को टालने के लिए डूब क्षेत्र में आने वाले 7 गाँवों के स्वैच्छिक पुनर्वास की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। प्रभावित परिवारों को विश्रामपुर में पुनर्वासित करने के लिए तैयार किया गया है। परिवारों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा और भविष्य में ऐसी जल प्रलय की विभीषिका से उन्हें अस्थायी मुक्ति मिल सकेगी। PTR के उप निदेशक ब्रजेश कांत जेना ने उनके निर्देश पर मदगढ़ी स्थित कुटकू वन प्रक्षेत्र कार्यालय में आपात राहत शिविर लगाया गया है। लातेहार की बातें करें, उपायुक्त संदीप कुमार ने मंगलवार को रजहरा स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर धर्मपुर स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई की अंतर्गत संचालित बाल गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को दी जा रही सुविधाओं, सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को संवेदनशीलता के साथ त्वरित सहायता उपलब्ध कराने तथा सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जोहार पलामू कार्यक्रम। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्मी गीत।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

अब झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है। रबर की व्यावसायिक खेती से झारखंड की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यह जानकारी केरलम के कोटायाम स्थित भारतीय रबर बोर्ड मुख्यालय में प्रेजेंटेशन में दी गई है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया के सभागार में झारखंड से गए पत्रकारों के दल को संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस वसंत गेशन ने प्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने बताया कि झारखंड में कई जिलों की लाखों हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती संभव है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों खासकर त्रिपुरा का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ल्ड बैंक की मदद से 1990 के बाद से ही वहां व्यापक पैमाने पर इसका प्लांटेशन शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20 एकड़ जमीन पर इसकी खेती विकसित संभव है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय आदिवासी और युवाओं को रोजगार और आय का एक अस्थायी जरिया देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। ज्ञात हो कि पेड़ों से मिलने वाले लेटेक्स से टायर, कन्वेयर बेल्ट्स, जूते और ऑटोमोबाइल्स पार्ट जैसे रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाले 40,000 से ज़्यादा उत्पाद और औद्योगिक रबर पार्ट्स का व्यापार होता है।

पलटते हैं इतिहास के पन्नों को, जानते हैं क्या कहता है आज का इतिहास, यानी 2 सितंबर का इतिहास क्या कहता है। 2 सितंबर 1573 ईस्वी को अकबर ने गुजरात फतह किया था। 1666 में लंदन में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हुई थी और 10,000 इमारतें नष्ट हो गई थी। 1775 की बातें करें तो आज ही के दिन पहले अमेरिकी युद्ध पोल आना का जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने जलावतरण किया था। 1926 में इटली और यमन में हुए समझौते के तहत लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम हुआ था। 1930 में क्वेश्चनर मार्क्स नामक विमान ने यूरोप से अमेरिका के लिए बिना कहीं रुके पहली बार उड़ान भरी थी। 1945 में जापान द्वारा हर स्वीकार कर लिए जाने के बाद 6 साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। आज के दिन 1945 को हो ची मिन्ही ने स्वतंत्र वियतनाम गणराज्य की स्थापना की। 1946 में आज के दिन जवाहरलाल नेहरू के उप सभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन किया गया था। 1956 में हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर जडचेराला और महबूब नगर के बीच पुल ढहने से 125 लोगों की मौतें हो गई थी। हम उन्हें याद कर लें जिनका आज जन्म हुआ था। 1941 में साधना, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, इनका जन्म हुआ था आज के दिन। 1965 में पार्थो सेनगुप्ता, भारतीय फिल्म निर्माता थे, इनका भी जन्म आज के दिन हुआ था। पवन कल्याण भारतीय सिनेमा अभिनेता हैं और राजनीतिज्ञ हैं, इनका जन्म 1971 में आज के दिन हुआ था। उदित गोस्वामी, भारतीय मॉडल और अभिनेत्री, इनका जन्म हुआ था। हम उन्हें याद कर लें जो आज के दिन हम समय को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहा था। 2022 में रामवीर उपाध्याय उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास स्थान रखने वाले राजनीतिज्ञ थे, इनका निधन हुआ था। YS राजेश्वर रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे और आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री रहे, इनका निधन आज के दिन 2 सितंबर 2009 को हुआ था। हबीब उर रहमान

0: श्रोताओं, इसी कहने के साथ ही हमारा आज का जोहार पलाम कार्यक्रम समाप्त होता है। आगे दीजिए नमस्कार।
1: जोहार पलामू।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
2: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
2: श्रोता, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी

0: उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहाँ के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
0: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
0: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
0: जी।
1: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
0: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
1: जी हाँ श्रोताओ, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
0: जी,
1: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओ, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
0: जी।
1: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
0: जी हाँ श्रोताओ, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
1: जी श्रोताओ, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
0: जी,
1: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
1: तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
0: जी,
1: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
0: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
1: श्रोताओ, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
0: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: जी, तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: CIET NCERT presents the program द स्मार्ट मंकी।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. they sat on a bench under a tree to

मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा।

0: और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बता देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
4: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
5: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
4: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
6: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
7: भारत माता की
6: जय,
7: भारत माता की जय।
4: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
5: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
4: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई

0: ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
1: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
0: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
1: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
0: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
1: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
0: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं? यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
1: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों, इसे ट्रक से बांध कर घसीटो।
1: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
0: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
1: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
0: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
1: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
0: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
1: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
0: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
1: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
0: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
1: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
0: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ, घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
1: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहां ले जा रहे हो?
0: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
1: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
0: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।

0: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ काली बाई।
1: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
0: और बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
1: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही।
0: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
1: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
0: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
1: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई, भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है।

0: FM 103 MHz पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुबह के 10 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहाँ से आप सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
2: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जतलाई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3rd दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की तैनाती के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गई है और बाद में इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली NCR क्षेत्र में वितरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंची और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में

0: बात करते हैं लेट 90s की, जब आप मुंबई में आ चुके थे, तो उसी दौरान आप हम दिल दे चुके सनम, वो आपकी पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से, और एड की दुनिया, ये दोनों कैसे चली? पहले क्या शुरुआत हुई और फिल्म में कैसे जाना हुआ?
1: देखिए, जब थिएटर कर रहा था तो इस बात का एहसास हो गया कि सिर्फ थिएटर से गुजारा तो नहीं हो पाएगा,
0: बिल्कुल,
1: और ये रियलिटी चेक मुझे यहां आने के बाद हुआ कि भाई ये गुजारा नहीं हो पाएगा, इससे तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा। तो जो भी चीजें इससे जुड़ी हुई थी उसकी तरफ नजर किया मैंने, जैसे कि मैं डबिंग्स करता था अंग्रेजी फिल्में या जो फॉरेन लैंग्वेज फिल्में हो या अदर लैंग्वेजेस टू हिंदी, और मेरी पकड़ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों पर खासी पकड़ है, तो वो आसानी मुझे हो गई डबिंग करने में, और डबिंग के साथ साथ एड्स में भी वॉइस देने की, वॉइस ओवर्स जो होते हैं, तो वो शुरू किया मैंने कमाई के नजरिए से, और वो यही आता था तो मैंने कहा कि इसी में ही जुड़े हुई चीजें जो हैं उसमें से ही कुछ आमदनी का जरिया देखा जाए। और उसके अलावा फिर थिएटर करता था मैं, और लोगों से काम मांगना आता नहीं था, वो शायद अपब्रिंगिंग कह लीजिए, तरबियत जो है अपनी, या आई डोंट, मैं ईगो तो नहीं कहूंगा उसको, लेकिन एक हिचक आज तक है मुझे,
0: आज भी नहीं है,
1: आज भी वो हिचक है मेरे अंदर की लोगों से काम मांगने का।
0: जी,
1: इशारतन बोल देता हूँ लोगों से कि भाई आपके साथ काम जरूर करना चाहूंगा मैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कि आपका काम पसंद करता हूँ और आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा मैं। बुला लिया लोगों ने तो अच्छी बात है, भूल गए तो भूल गए। खैर, तो थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो, तो वो सब थिएटर में शोज करते वक्त लोगों ने मुझे वहां देखा, समझा, बुलाया, और काम से काम मिलने लगा। तो मैं कहूंगा कि थिएटर ही वो बुनियादी चीज है जिससे मेरे लिए और रास्ते खुले।
0: बिल्कुल,
1: तो मैं तकरीबन पूरा जो श्रेय है वो थिएटर को दूंगा अपने

0: करियर
1: बिल्कुल, वो एक नींव है
0: जी
1: जहां से सब चीजें
0: जी
1: शुरुआत
0: जी
1: होती
0: जी
1: है
0: जी
1: और मजबूत पकड़ लिए हुए हैं।
0: जी तो हाँ वही एक शुरुआत और बहुत सारे ब्रांच आउट जो हुए, जो आमदनी के जरिए बने, वो सब थिएटर के जरिए बने। लोगों ने खुद ही मुझसे, इनफैक्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एड्स में वॉइसेस दे पाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि भाई आप करिए, आपकी जबान अच्छी है, आप उच्चारण जो है आपका अच्छा है, क्लियर डायलॉग्स हैं आपके,
1: जी
0: तो करना चाहिए थिएटर में। उन्होंने देखा सुना मुझे, तो एज एन एक्टर बुलाया, एज अ वॉइस बुलाया, तो वैसे ही शुरू, और फिल्मों में भी उसी से ही
1: वहीं
0: रास्ते
1: से
0: खुले।
1: रास्ता खुला।
0: हाँ
1: अभी आपकी पसंद का दूसरा गाना जो आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को।
0: इजाजत नाम की एक फिल्म है जिसमें मेरे ख्याल में सारे ही गाने बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा है वो है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
1: क्या बात है, क्या पसंद है।
0: जी
1: सुनवाते हैं गीत।
0: जी

0: अभी हम बात करते हैं फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है
1: जी
0: बेबी, टाइगर जिंदा है और चलते चलते, इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात तो होनी जरूरी है।
1: जी
0: तो ये जो एक लंबी फहरिस्त है, अब हर एक फिल्म का तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे,
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग छोर लेती हूं मैं।
1: जी
0: एक तो जहां से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म से,
1: जी
0: हम दिल दे चुके सनम,
1: रामलीला
0: भी उनके साथ हुई, और दूसरा गैंग्स ऑफ वासेपुर।
1: जी
0: बिल्कुल अलग किरदार,
1: जी
0: और एक कलाकार के लिए अलग अलग किरदार करना आसान है और वो एक अच्छी बात है, वो तो है ही,
1: जी
0: लेकिन दो अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स, दोनों
1: जी
0: का काम करने का तरीका एकदम अलग,
1: जी
0: तो क्या डिफरेंस है, और कुछ दिलचस्प किस्से दोनों के सेट से, कुछ ऐसा जो याद रह जाए, कुछ ऐसा आप साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, संजय भंसाली जो हैं वो बहुत ही बारीकी में घुसने वाले डायरेक्टर हैं, और उनका विजन बहुत बड़ा और बहुत रिच होता है, बहुत

0: ग्लॉसी, बहुत ही ग्लैमरस। गुर्बत भी जो है ना, गरीबी जो है वो भी उनके फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश दिखेगी,
1: बिल्कुल जी,
0: तो
1: लार्जर देन लाइफ
0: लार्जर देन लाइफ।
1: जी।
0: तो वो आदमी पिक्चर फ्रेम्स बनाता है, खूबसूरती तो भर भर के होती है उनकी फिल्मों में,
1: जी
0: और उनका तरीका जो है वो वही उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरीका का कैनवस वो पेंट करते हैं, वो हर चीज में उनका दखल होता है। उनके साथ काम किया हुआ आदमी उनके साथ जब काम करता है तो वो अलग दिखता है, और किसी और के साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। उसकी
1: बिल्कुल
0: वजह यह है कि वो डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन उनका हर चीज में होता है, और उनका दखल इस हद तक होता है कि भाई वो कोई चीज बिगड़ने देना नहीं चाहते। वो म्यूजिक
1: बिल्कुल
0: कंपोज भी करते हैं अब तो,
1: बिल्कुल हाँ
0: और बाकी तमाम चीजें तो हैं ही। तो उनका जो अंदाज है वो काफी नपातुला है, और उनको जो चाहिए वो ढूंढते हैं और वो पा लेते हैं। उसको पाने में चाहे वो 2 टेक लगें चाहे 200 टेक लगें,
1: अच्छा
0: जब तक वो पाते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ते।
1: जी
0: और इसलिए वो अच्छे एक्टर भी ढूंढते हैं कि
1: जी
0: जो उनको वो चीज दे सके, और जो वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं या विजुलाइज कर रहे हैं उसको वो एक्टर उसी तरीके से दे सके। और अपने एक्टरों से बेनतहा मोहब्बत करते हैं वो। वो बात अलग है कि अगर आप एक्टर अच्छे नहीं है तो जाहिर है फिर डांट भी पड़ेगी आपको, जायज भी है वो।
1: बिल्कुल
0: और अनुराग का जहां तक ताल्लुक है, अनुराग बहुत ही फ्री फ्लोइंग डायरेक्टर है। अनुराग कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, वो एक्टर को खुली छूट देता है, और वो रियलिज्म में ज्यादा घुसता है। तो अनुराग उस लिहाज से अच्छा है कि वहां पर भी आपको अच्छे एक्टर की जरूरत पड़ेगी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि एक्टर अगर इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहा है तो फिर अनुराग के लिए वो बेमानी है, क्योंकि वो
1: स्पॉन्टेनियस
0: हाँ
1: स्पॉन्टेनियस
0: स्पॉन्टेनियस बिल्कुल, और किरदार बगैर छोड़े हुए या बगैर उलझे हुए। कुछ अच्छी अच्छी मैजिकल चीजें भी मिल जाती हैं उसमें, कभी कभी अच्छी चीजें नहीं भी होती तो अगला टेक कर लेता है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तो फर्क बेसिक यही है कि वो बहुत ही रियल रस्टिक अनुराग का फील होता है, और बहुत ही इम्प्रोवाइजेशनल तरीका है उसका काम करने का।
1: कोई चैलेंजिंग रोल ऐसा जिसके लिए तैयारी तो खैर हर रोल हर कैरेक्टर के लिए चाहिए, पर कोई ऐसा चैलेंजिंग रोल कैरेक्टर जिसके बारे में आप बात करना चाहें जिसको बहुत तैयारी की जरूरत पड़ी और इस तरह का कुछ अनुभव?
0: फिल्मों में मुझे इतनी दुश्वारी पेश नहीं आई कभी भी।
1: श्रीकांत में आपने काम किया?
0: श्रीकांत, हाँ श्रीकांत,
1: श्रीकांत
0: श्रीकांत मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा
1: हाँ
0: टफ था,
1: जी
0: क्योंकि एक तो उम्र ज्यादा, और क्या कहते हैं, ऐसी शख्सियत
1: जी
0: जो बहुत ही अजीम, बहुत ही महान शख्सियत, और अब भी सबने देखा है,
1: हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: सुना
1: बिल्कुल
0: है, देखा है,
1: बिल्कुल
0: तो उसको उतारना थोड़ा चैलेंजिंग था और मुश्किल आई पेश। लेकिन उसमें जो डायरेक्टर थे तुषार, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए उस बात की,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे कंफर्टेबल कर। मैंने कहा यार भाई ये बड़ा मुश्किल काम है,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: तो साउथ इंडियन, और अच्छी बात ये हुई कि वो मुझे उसमें अंग्रेजी भी, क्योंकि वो हिंदी इतनी अच्छी तरह जानते नहीं थे
1: बिल्कुल
0: तो अंग्रेजी का इस्तेमाल भी था, तो उस तरीके से थोड़ा सा बच गया। और बहुत ज्यादा लंबा रोल नहीं था, मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो ये मैनेज हो जाएगा।
1: जी
0: लेकिन हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि वो थोड़ा चैलेंजिंग था, और थोड़ा मुझे डराया भी उसने
1: अच्छा,
0: ये
1: ज्यादा
0: सही।
1: तैयारी के साथ
0: हाँ
1: उतरे
0: हाँ
1: आप। आपकी पसंद का कौन सा गाना अब हम सुनवाना चाहेंगे?
0: चिंगारी कोई भड़के
1: क्या बात है, आपकी पसंद। बिल्कुल सुनवाते हैं ये गाना।

0: आज अब बातचीत के दौरान जब बात गुल्लक की ना हो तो भाई इनकम्प्लीट है, बिल्कुल अधूरी है।
1: जी
0: गुल्लक जिससे बहुत ज्यादा प्यार मिला, संतोष मिश्रा का किरदार। अब मैं पूछना चाहूंगी कि कितना संतोष मिला आपको वो किरदार करके या वो सीरीज करके, कैसा लगता है, कैसा अनुभव है,
1: बहुत ज्यादा संतोष मिलता है मुझे संतोष मिश्रा का किरदार अदा करके।
0: कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना उसके नजदीक हैं, तैयारी कैसी है, सेट का माहौल कैसा, क्योंकि हमने तो बहुत मजे से देखी है और आगे भी जो आएंगे उसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो
1: जी
0: एपिसोड्स आएंगे।
1: जी दो चीजें देखिए, उसमें शुरू में मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, अब तो वो हिस्सा हो गया है किरदार का,
0: घर घर का हिस्सा हो गया, ऐसा
1: घर घर
0: लगता
1: का
0: है
1: हिस्सा
0: हमारे
1: हो गया।
0: घर के
1: और मेरे
0: मेहमान।
1: लिए भी एज ए कैरेक्टर
0: जी
1: अब वो आसान हो गया क्योंकि 5 सीजन कर लिए हम लोगों ने। लेकिन शुरुआती दौर पे जो दुश्वारी पेश आई या जो चैलेंजिंग लगा मुझे उसमें, वो एक तो थी उसकी जबान, ये मेरी नॉर्मल जबान
0: बिल्कुल
1: है ना, बातचीत की जबान, लेकिन उसमें मुझे अपना उच्चारण बिगाड़ना पड़ा,
0: जी
1: स श
0: हाँ।
1: ज, और
0: बिल्कुल
1: मेरे नुक्ते सटीक लगते हैं, मेरी जाती जिंदगी में बिल्कुल सटीक नुक्ते लगते हैं, कहीं गड़बड़ नहीं होती, लेकिन इसमें वो नुक्ते हटाने थे तो वो दुश्वारी आती थी हमेशा शुरू शुरू में। और उसके अलावा मिडिल क्लास की जिंदगी देखी है मैंने अपने इर्द गिर्द, लेकिन उसको महसूस नहीं किया था। एक लिहाज से कहूँ कि काफी समृद्ध परिवार से हूं और किसी तरीके की कोई पैसे की कमी कभी मेरे माँ बाप ने नहीं रखी,
0: जी
1: लेकिन तरबियत जो थी ना वो ऐसी थी कि पैसे की अहमियत को समझना, वो उसका एहसास कैसे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आ गया था वो। तो वो एहसास जब आदमी ऊपर होता है ना, जब बहुत कुछ होता है और फिर उसके बाद जब नीचे आता है, तब समझ में आता है कि भाई एक्चुअल जिंदगी क्या है,
0: क्या है, बिल्कुल क्या
1: क्या
0: चुनौतियां
1: क्या
0: हैं,
1: चुनौतियां हैं। तो
0: बिल्कुल
1: उतार में वो उसका एहसास हुआ, खास तौर पे जब मैं खुद अपने पैरों पर आया, जब घर से पैसे लेने बंद किए, तब एक एक पाई की अहमियत समझ में आई।
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए जो शुरुआती दौर मेरा बॉम्बे का रहा है, जो मुश्किल दिन रहे हैं, वो एहसास वो इमोशन वहां से आता है। और किरदार

0: के अंदर कैसे क्या डाला गया, वो बहुत सारे मुख्तलिफ रिश्तेदार हों या दोस्तों के माँ बाप हों या मेरे अपने माँ बाप हों, वहाँ से उठाई हुई चीज़ें हैं। और एहसास तो जो है वो, जब आप एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि अगर आप हसास नहीं हैं तो अच्छे एक्टर मेरे ख्याल में नहीं हो पाएंगे आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बहुत ही जरूरी बेसिक चीज है।
0: जी, और आंख कान खुले रखना ताकि जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको देखते रहें आप और उसको जज्ब करते रहें, अपने अंदर बिठाते रहें। वो जखीरा बनता है आपका, कब क्या चीज़ की जरूरत पड़ जाएगी
1: जी,
0: आप वहां से निकाल के अपने किरदार में डालते हैं।
1: और यहां पर मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने पिता का किरदार निभाया है, तो आपके पिता के साथ आपका कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसा साझा करना, एक अलग तरह का रिश्ता, कुछ ऐसी इमोशनल बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख मिली है? क्योंकि ये जो कहानी है, धारावाहिक है गुल्लक, ये भी एक सीख देता है, तो ऐसी कोई सीख जो आप देना चाहते हैं या फिर जो आपको अपने पिता से मिली है?
0: बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि
1: जी
0: मेरे फादर से मेरा बहुत गहरा लगाव है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इंसान को कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है, मैं घर गया हुआ था, बॉम्बे आने की तैयारी में था, सामान वामान पैक कर रहा था, तो ट्रेन का टाइम हो गया था। तो अब्बू आए कहने कि अरे जल्दी करो जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। और मेरे, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, अम्मी भी थी, पैक करवा रही थी, ये वो ये रख लो वो रख लो अम्मी, तो कुछ मुंह से मेरे ऐसे निकल गया कि अब्बू पगलवाई मत, मैं कुछ भूल जाऊंगा। तो पगलवाइए मत, वो जो शब्द था ना,
1: बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए बात करते वक्त, वो कहीं ना कहीं सिखाता है।
0: तो मैं यही कहूंगा कि इज्जत से पेश आना चाहिए माँ बाप से हमेशा।
1: बिल्कुल
0: और जितनी मोहब्बत आपको आपके माँ बाप दे सकते हैं उससे ज्यादा मोहब्बत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो यही सीख है। और मैं यही कहूंगा कि माँ बाप आपकी तरबियत, आपकी करियर, आपके किरदार को बनाते हैं। और अच्छे माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों की ज़रूरत, उनकी एम्बिशंस को सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं हर लिहाज से।
1: बिल्कुल। एक और आपने फिल्मों की बातें की, फिल्म एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपने किया, बीनीथ अ सी ऑफ लाइट्स, उसके बारे में कुछ बताइए, वहां का माहौल अलग है, किस तरह से अलग था?
0: अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। देखिए वहाँ पर ये बड़ा इंडिपेंडेंट फिल्म थी एक तरीके से, और जो तरीका है उनका शूट करने का वो बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही प्रिसाइस, जिसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में बमुश्किल 25-30 लोगों का यूनिट रहा होगा, और बहुत शांति से, बहुत सुकून से काम हुआ। हर आदमी अब काम से काम रखता था और वक्त पर पहुंचता था, वक्त से काम होता था और वक्त पे ख़त्म भी हो जाता था।
1: जी
0: तो वो एक एक जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो वहाँ पर ज़्यादा दिखी मुझे। तो फ़र्क ये इतना सा है। और बेसिकली परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
1: जी और कोई, अभी हमने थिएटर की बात की, हमने एड्स की बात की, फिल्मों की बात की, और कौन सा रास्ता जहां पर अभी आपको जाना है कि ये भी ट्राई करना है, इस तरफ भी जाना है, और आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें?
0: कोई ऐसा, मतलब थिएटर वापस करना चाहूँगा मैं, कोई कमाल की चीज़ आई मेरे सामने। तो उसके अलावा किरदार बहुत सारे हैं हमारे समाज में भी और हमारी कहानियों में भी, जिनको मैं करना चाहूँगा, जो कि अब गुल्लक से बेहतर फादर तो मुझे नहीं लगता, फादर का रोल मुझे शायद मिल पाएगा।
1: जी
0: अगर कोई लिख पाए उससे बेहतर तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ बाप के रोल तो मुझे नहीं करने हैं कि भाई फलां के बाप है कर लीजिए। मैं सैकड़ों मना कर चुका हूँ, मना करता रहूँगा उसको,
1: जी
0: लेकिन उससे अलग कलर कुछ हो, कुछ अलग जॉनर के किरदार हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मच्योर लव स्टोरी मैं करना जरूर चाहूँगा। तो हाँ, वो एक डेफिनेटली मेरे बकेट लिस्ट में है।
1: बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो चीज की ख्वाहिश आप कर रहे हैं वो जरूर आपको मिले। अभी क्या आने वाला है, किसका इंतजार हम करें?
0: अभी कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक फिल्में हैं सूरज बढ़ जाते।

0: साहब के साथ एक फिल्म है, उसमें एक गेस्ट अपियरेंस किया है मैंने, और एक फिल्म जो कर रहा हूँ जुगाड़ू नाम की एक फिल्म है, वो बावेजा फिल्म्स और टिप्स की है। और अभी बाकी जो वेब शोज में से तो कुछ एक तैयार हैं, लेकिन वो कब आएंगी मुझे नहीं मालूम, वो डेट्स अनाउंस होंगे तभी पता चलेगा।
1: जी
0: और कुछ एक इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं जो मैंने की हैं, एक अंग्रेज़ी में भी की है, तो वो हैं दो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, एक अंग्रेज़ी फिल्म है इंडिपेंडेंट फिल्म, और बाकी कमर्शियल फिल्म्स भी हैं। और वेब शोज में से तो गुल्लक सीज़न 6 आएगा अगले साल।
1: उसका इंतजार
0: हाँ,
1: रहेगा हमें
0: वो साल के आखिर में वो शूट करेंगे हम लोग, अभी लिखा
1: जी
0: जा रहा है वो।
1: जी
0: तो यही सब है, और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छे अच्छे किरदार आएँ। आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह
1: हमें भी इंतजार
0: ज़रूर
1: रहेगा।
0: ज़रूर।
1: तो आपका कोई पसंदीदा गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं उस बारे में बताइए।
0: मेरे बचपन में एक गाना मैं ऐसे शौकिया तौर पे बहुत गाया करता था, बच्चन साहब मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं, तो वो फिल्म मैंने न जाने कितनी बार देखी है, अमर अकबर एंथनी।
1: जी
0: तो उसका अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा होती नो, अमर अकबर एंथनी।
1: बिल्कुल सुनवाते हैं गीत।

0: बच्चन साहब की बात निकली है तो एक वाक्य मुझे याद आता है कि आप एक ही स्कूल से हैं बच्चन साहब, जहां से पढ़े हैं, उस बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपकी मुलाकात भी हुई है आपकी मुंबई में, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा है।
1: जी, बच्चन साहब शेवर्ड कॉलेज नैनीताल से वो भी पढ़े हुए हैं और मैं भी।
0: जी
1: उनसे मुलाकात मेरी चीनी कम नाम की एक फिल्म थी जो मैंने की थी, उसमें हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और कमाल की बात है कि वो भूलते नहीं।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद एक ऐड भी किया हमने साथ में और उन्होंने पहचान लिया, जबकि अलग गेटअप में था मैं। और फिर उसके बाद हमने एक फिल्म की थी गणपत, अभी जो आई थी कुछ साल पहले,
0: जी
1: उसमें वो भी थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं भूल भाल गए होंगे, लेकिन उन्होंने, उनका बड़प्पन कि डायरेक्टर से बात हो रही थी वो गणपत के सेट पर भी, तो तपाक से गले लगाया उन्होंने मुझे कि यू डूइंग वंडरफुल वर्क, सो प्राउड ऑफ यू। तो जाहिर है बच्चन साहब हैं, तो बच्चन साहब से जाहिर है एक, क्योंकि स्कूली नाता भी है और उनको आइडियलाइज भी किया है, उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं,
0: जी
1: तो एक तरीके से बहुत बड़े आइडल हैं हमारे। उनकी तमाम फिल्में देखी हैं मैंने और बच्चन साहब से मिलके हमेशा अच्छा लगता है। बच्चन साहब, जैसा कि मैंने कहा कि वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो रूम में दाखिल होते हैं तो हर आदमी न चाह के भी खड़ा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और लेजेंड हैं वो, तो बच्चन साहब बहुत कमाल के इंसान भी हैं, तो उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है।
0: उसके अलावा शूटिंग के दौरान बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हुए होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एक सीन है जहां पर आप जख्मी भी हो गए थे, एक किस्सा ऐसा कुछ था
1: जी,
0: वो बताना चाहेंगे। तो शूटिंग के दौरान ये जो चुनौतियां आती है
1: जी,
0: कभी कभी मजेदार भी होती है,
1: जी जी,
0: उस बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, वो चोट मुझे आई थी, दरअसल एक सीन था जिसमें एक ठेला सा खड़ा हुआ है, वो तीन पहिए के रिक्शे वो होते ना सामान रखने वाले, तो वो एक रखा हुआ था। तो कुछ बात हुई कि भाई इन दोनों रिक्शों के बीच में से निकल के जाना है, तो एक टेक हो गया। फिर उसके बाद वो रिक्शा वहां पर पड़ा, मैंने कहा यार मैं रिक्शे के ऊपर जाके और वहां से छलांग मार के निकलता हूँ। तो अनुराग ने कहा कि सर देख लीजिए मतलब, तो मैंने कहा हाँ यार करते हैं, मजा आएगा। तो एक टेक किया मैंने, तो कहता सर बढ़िया लग रहा है, एक और करते हैं। वो लालची डायरेक्टर है ना, उसको चीज अच्छी लगती है तो फिर वो आगे बढ़ता है,
0: एक और।
1: हाँ तो सर एक और करते हैं
0: जी,
1: मतलब मुझे ऐसा मजा आ रहा है, कुछ एक और करते हैं। तो अगले वाले टेक में वो इधर उधर लोग पीछे पड़े हुए मेरा पीछा करने मारने के लिए, अब क्यों मुझे भी हौसला मिल गया, तो मैंने छलांग और ऊंची लगा दी। और जब मैं लैंड किया, मैं चप्पल पहने हुए था, जब लैंड किया तो वो पसीने से पांव थोड़ा सा स्लिप हुआ और
0: फिसल गया
1: और मेरे एंकल जो है उसमें मोच आई तगड़ी। लेकिन मैंने वो शॉट कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि वहां मोच आई तो मैं वहीं बैठ गया, वो शॉट कंप्लीट किया और एक चढ़ान था ऊपर, टीला सा था, उस पर चढ़ के दूसरी तरफ कूदना था और वहां शॉट खत्म था। तो उस टीले पर चढ़ के मैं नीचे छलांग भी मार दी। फिर जब मैं वापस आ रहा था वहां से, तो उसने तो देख लिया था शॉट मॉनिटर में, आके मैं जब पूछा उसने कि भाई आई ओके, मैंने कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं बैठा नीचे, बैठते बैठते मैं बेहोश हो गया।
0: बेहोश हो गया
1: कुछ, मेरे ख्याल एक मिनट के लिए बेहोश रहूंगा मैं, फिर होश आया तो कह रहे सर, उसने मुझे फिर उसके बाद लिटाया वटाया सब, तो पानी वानी जो कुछ भी है, फिर वो शॉट दिखाया उसने कि सर देखिए ऐसे हुआ था ये, वो जो आपका पाँव है ऐसे स्लिप हुआ चप्पल से। तो उसके बाद के सीन्स हमारे कुछ एक, क्योंकि चोट लग गई थी लोगों को शायद पता ना चले, लेकिन एक हल्का सा एक लिम्प है।
0: अच्छा।
1: हाँ, कुछ कुछ एक सीन में,
0: अब हम देखेंगे फिर से गौर से उसे।
1: और कुछ एक सीन में फिर नहीं रखा था मुझे, क्योंकि भाई चोट लगी हुई थी।
0: जी जी जी।
1: तो वो मनोज भाई के साथ जो मोटरसाइकिल पे पीछे बम फेंक रहे हैं वो सब मुझे होना था, लेकिन चोट की वजह से वो नहीं कर पाया था। और उसके अलावा एक और किस्सा था जिसमें कि जीप में हम लोग पहलवान का पीछा कर रहे हैं मारने के लिए।
0: हाँ।
1: और वो ऐसे क्या कहते हैं, सरिये निकले हैं और बांस वांस निकला हुआ है दुकानों का।

0: का,
1: बिल्कुल
0: और जीप जा रही है और मैं बाहर निकल के ऊपर जगह चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ उसको, पहलवान को, और मुझे दिख रहा है कि ऐसे बांस और ये सब सलिए वगैरह निकले हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये मुझे लगेगा मेरा सर फटेगा या कुछ होगा, तो सामने दिख रहा है मुझे जैसे जीप जाती गई, वो इंस्टेंट जो दिमाग में आता है कि मैं फौरन जीप के अंदर घुसा वापस, और फिर जब वो गुजर गया फिर वापस आया, तो वो
1: वो एक रिफ्लेक्स,
0: हाँ रिफ्लेक्स एक्शन जो है उससे जान बची। लेकिन ये है कि वही है कि यू गॉट टू बी अवेयर एंड अलाइव टू द सिचुएशन, कि आप एकदम टू बी इन द मोमेंट, कि आपको जैसा जो आ रहा है उससे डील करिए रियल टाइम में,
1: बिल्कुल,
0: और एकदम रियल तरीके से, कि अगर एक्चुअली अगर होता तो यही करते ना आप,
1: बिल्कुल।
0: अब उसकी शॉट रोक नहीं दिया कि नहीं, अरे ये वहां से रोको यार भाई, नहीं आ रहा है तो ठीक है डील करो ना उससे,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वही है सही तरीके की एक्टिंग मुझे लगता है,
1: बिल्कुल। कोई एक तरह का मेथड आप फॉलो नहीं करते जिस तरह से जो आ रहा है उस तरीके से?
0: बेसिकली देखिए, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, जो स्क्रिप्ट है वो बहुत कुछ बोलती है, और डायलॉग्स बहुत कुछ देते हैं मुझे
1: जी।
0: अब एक अच्छा एक्टर जो होता है डायलॉग्स के बीच में जो होता है ना, कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें कन्वे करता है, तो न बोल के भी कन्वे करना, और एज एन एक्टर मुझे शब्द जो हैं, जो अल्फाज हैं, वो बहुत कुछ देते हैं अपने किरदार के बारे में और अपने रिस्पॉन्स के बारे में, तो मैं बहुत कुछ उनसे लेता हूँ। और जहां तक ताल्लुक है कि अलग अलग तरीके यूज करने का, तो वो जिस सीन में जो सही बैठता है उसको इस्तेमाल करता हूँ, और कोई एक मेथड नहीं है कि ये तरीके से ही मैं चलता हूँ
1: जी।
0: कुछ एक तरीके होते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरनल काम करना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो मैं दुनिया को नहीं पता है, डायरेक्टर को नहीं पता है कि मेरी मेरी तैयारी क्या है, और उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है
1: जी।
0: और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नली आप काम करते हैं, कि आप अपनी जबान पर या आप अपने बॉडी लैंग्वेज में या आप जो पहनावा है आपका, उससे आपकी चाल बदल जाती है।
1: आजकल वर्कशॉप्स भी होते हैं फिल्मों से पहले या सीरीज से पहले,
0: जी, जी,
1: तो गुल्लक की तैयारी के लिए भी ऐसा कुछ वर्कशॉप हुआ?
0: जी, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं, और पहले सीजन के पहले कुछ एक चीजें, कुछ एक एक होता है ना कि केमिस्ट्री बनाने के लिए
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए हमने, क्योंकि नए नए थे सारे, और चलिए गीतांजलि और मैं तो पुराने एक्टर्स हैं, किया हुआ है काम, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं अमन और अनु, इनके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है उस लिहाज से, तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड ईच अदर, अपने आप एक दूसरे को समझना
1: जी,
0: क्योंकि एक परिवार है, तो अच्छे से समझना और अच्छे से वो केमिस्ट्री बनाना, वो उस चीज की वर्कशॉप जो पहले सीजन के पहले हुई थी
1: जी,
0: वो वहीं से वो सुर बैठ गया,
1: और
0: फिर शूट करके टाइम तो और ज्यादा बैठ गया, फिर उसके बाद तो फिर दौड़ने लगा,
1: बिल्कुल दौड़ने लगा, और हम देख ही रहे हैं कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पर एक गीत आपकी पसंद का,

0: गुल्लक में कितना स्क्रिप्ट का योगदान है, कितना इम्प्रोवाइजेशन है?
1: गुल्लक में स्क्रिप्ट, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा योगदान स्क्रिप्ट का ही है। अगर वो बुनियाद हमें नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो स्क्रिप्ट का तो बहुत ज्यादा योगदान है। और जहां तक पर्सनल टचेस की बात है तो कुछ एक चीजें हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं
0: जी,
1: कुछ एक डायलॉग्स भी इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ एक मोमेंट्स भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो एक मिली जुली एफर्ट है। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पे स्क्रिप्ट नहायत ही अच्छी होती है गुल्लक की। और मुझे लगता है कि इसी वजह से भी, मैं ये तो नहीं कहूँ इसी वजह से ही, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है वो स्क्रिप्ट को जाता है गुल्लक के कामयाबी में।
0: और गुल्लक ने घर घर में जो आपको पहचान बनाई है आपकी, उसके बाद ऐसा कुछ फैन मोमेंट जो आपको याद आता है, संतोष मिश्रा के नाम पर आपको पहचाना गया कहीं, इस तरह का कुछ फैन मोमेंट?
1: हाँ, देखिए बहुत सारा काम रहा है मेरा। थिएटर में जो पहली पहचान थिएटर से मिली, लेकिन वो आपको मास पहचान नहीं मिलती है बॉम्बे के बाहर या थिएटर सर्किट के बाहर। कुछ एक फिल्में आई उसके बाद जो बहुत मकबूल हुई, लोग उससे याद करते थे, इज्जत भी करते थे, और काम के लिहाज से कि भाई ये एक मजबूत एक्टर है, वो एक इमेज बन गई थी। लेकिन गुल्लक से मुझे जो फर्क जो महसूस होता है वो है पॉपुलैरिटी के अलावा एक जो मोहब्बत मिलती है ना, और जो इज्जत मिलती है, और जो अपनाइयत मिलती है, और दिल से बनावटी नहीं, वो गुल्लक ने जरूर दिया है मुझे। और इसको लेके जो भी मिलता है बड़ी मोहब्बत से मिलता है, और वो ऐसा मिलता है जैसे संतोष मिश्रा उनके अपने हों।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो भाई के तौर पे मिले, चाहे बेटे के तौर पे मिले, चाहे बाप के तौर पे मिले। बहुत सारे बुजुर्गवार हैं जो देख के मिलते हैं, या कभी ऐसा तो कहते हैं यार किरदार हो तो ऐसा हो।
0: एक एयरपोर्ट का किस्सा आपने साझा किया था, इस बारे में कुछ बताएं।
1: हाँ, वो भी देखिए ये बेइंतहाई मोहब्बत की बात है कि एयरपोर्ट पे मैं था और एक शख्स सामने से आए वो, और मेरे पांव छूने लगे, तो मैंने उनको उठाया। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा मत करिए आप, तो वो गले लग गए, और गले लगे रहे काफी देर तक। और फिर उसके बाद जैसे ही अलग हुए वो हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम थी और बस थैंक यू कह के चले गए।
0: मुझे लगता है ये अवार्ड से भी कहीं गुना ज्यादा ये नवाजा जाता है इस प्यार
1: जी से। जी जी, और कमाल की चीज है वो। वो कभी ऐसा एहसास मुझे नहीं हुआ कि यार ये तो एक एकदम स्ट्रेंजर, एक अजनबी शख्स आपके गले लग जाए और फिर उसके बाद इतना इमोशनल हो जाए और कुछ बोले नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह के चला गया वो।
0: बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि संतोष मिश्रा स्क्रीन पर और आप में कितनी कितना मिलता जुलता है, आप घर पे कैसे हैं?
1: देखिए मैं मस्तीखोर तो हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये राइटर्स भी जो है मुझे देख के काफी कुछ लिखते हैं कि किरदार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है।

0: जी
1: लेकिन संतोष मिश्रा और जमील खान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो बर्ताव है संतोष मिश्रा का,
0: जी
1: बहुत ही सेंसिटिव आदमी हूँ मैं, तो मैं हर इंसान को लेके कोशिश करता हूँ कि उसको समझूं, जटिल न रहूं इस बात का कि मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं वही सही है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नजरिया और दूसरे की जगह खड़े होके या दूसरे की जगह अपने आप को डाल के रख के इस
0: उस
1: बात को समझना कि
0: दृष्टिकोण से देखना।
1: हाँ, कि ये जो सोच रहा है या कह रहा है या कह रही है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: और मस्ती खोरी तो भरी है मेरे अंदर, मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ और मैं सीरियस कम रहता हूँ लाइफ में, और जिंदगी को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली, स्ट्रेस नहीं लेता मैं और स्ट्रेस देता भी नहीं। मैं बहुत सादगी से और बहुत ईमानदारी से और इस तरीके से काम भी करता हूँ कि किसी को मेरी वजह से कोई दुश्वारी पेश ना आए,
0: बिल्कुल
1: कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो, या कोई कोई एज नहीं रहते मेरे कि कोई होता है ना कि भाई एक एरोगेंस हो या कोई ऐसा, भाई कम में भी काम हो जाता है, इतना
0: जी
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है।
0: जी
1: स्टारपना नहीं दिखाता मैं कभी भी, सादगी से
0: चलते चलते हमारे श्रोताओं को प्यार भरा संदेश जो आप देना चाहते हैं।
1: यही कहूंगा कि भाई दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जितना अमन से, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो दुनिया हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सहारा बन के, कभी छोटा भाई बन के तो कभी बड़ा भाई बन के, एक दूसरे को हौसला देते हुए आगे बढ़ें,
0: जी
1: इसी में हम सबकी भलाई है।
0: बहुत ही सुंदर संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता जमील खान से अनुराधा उपाध्याय की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है।

0: इससे क्या बनने वाला है?
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रंग तरंग
2: कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा।

मीरा भाई का लिखा ये पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ उषा मंगेशकर की आवाज में फागुन फिल्म से। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बेला संदे की आवाज में आप सुन रहे थे जोधा अकबर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, ए आर रहमान का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना गम किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे
1: जहां
2: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: हनुमान अंश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साधु एस तिवारी की आवाज, उन्हीं के बोल और उन्हीं का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

इला अरुण और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे वेल डन अब्बा फिल्म का गीत, इला अरुण और डैनियल जॉर्ज के बोल, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।

0: लव शवते चिकन खुराना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। दिल बहार और रेणु जगोत्रा की आवाजें, शैली के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती कैसेट लेने।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

आपकी पसंद इस एल्बम से मनहर उदास की आवाज में आप सुन रहे थे शेख आदम अबूवाला की लिखी गजल, अर्जन दासवानी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

लकी अली की आवाज में आप सुन रहे थे सिफर। इस एल्बम से गीत सईद असलम ने से लिखा, लकी अली का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कव्वाली, कल्लन खान कव्वाली और पार्टी की आवाज में।

अदनान सामी और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे कौसर मुनीर के बोल, प्रीतम का संगीत, फिल्म बजरंगी भाईजान से ये कव्वाली आपने सुनी। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग, और अब आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में निदा फासली के बोल, एमएम क्रीम का संगीत है, सुर फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरी मैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अपना देश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और आज है विश्व नारियल दिवस, तो इस मौके पर यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं समुद्र नदी के किनारों पर फिल्माए कुछ गीत या उनसे संबंधित कुछ गीत जिसमें नावों का जिक्र हो।

मुकेश और साथियों की आवाज में उपहार फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: बंधे हाथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज
2: कहीं बेख्याल
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
5: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
6: प्यार का राग सुनो रे
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
7: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज सागर तट और नदी के किनारों की बातें हो रही हैं। तो सुनते ही ये गीत।

0: खुशबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: रिश्ता कागज का। फिल्म से गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सागर। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज सागर, सागर तट की बातें और मांझी नैया की बातें भी हो रही हैं, उन्हीं से संबंधित गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म से ये गीत, जिसे गाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने, सावन कुमार टाक ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, सावन कुमार टाक के बोल और राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, यादों की महफिल।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे विश्वात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और वीजू शाह ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम में विद भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: उड़ जा काले कावा,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी।

0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्लू इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के साथ साथियों की आवाजें, मयूरपुरी के बोल ए आर रहमान का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्डिस दोम्ब्रोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी

0: साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। भारत का पांचवा विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों के बचाव दल, विशेष उपकरणों और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 3rd दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घंटों में रामगढ़, बोकारो, चतरा समेत कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, नदियों का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। और अब समाचार विस्तार से। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नवीनतम विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा मजबूती को दर्शाते हैं। श्री बंगा ने कहा कि भारत सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, बिजली, जल और डिजिटलीकरण पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता पंजी विषय पर रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। सम्मेलन में नामचीन शिक्षाविद, चुनाव प्रबंधन विशेषज्ञ, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और निर्वाचन संबंधी मास्टर ट्रेनर हिस्सा ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 सत्र होंगे, जिसमें 58 रिसर्च पेपर पर चर्चा होगी। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। भालुकपातड़ा मौजा में बने इस अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।
1: डुमरिया के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है, चाहे वो जिला हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो पंचायत हो। मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करना, सरकारी विभाग को मजबूती प्रदान करना, इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं।
0: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रोजेक्ट भवन में कल झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और पलाश ब्रांड के कार्यों की समीक्षा की। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और पलाश को मजबूत ब्रांड के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने पलाश को एक सशक्त, विश्वसनीय और बाजार में पहचान रखने वाले ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। लातेहार जिले के नेतरहाट की नाशपाती अब स्थानीय बाजारों से निकलकर देश के बड़े और संगठित बाजारों तक पहुंच रही है। JSLPS के SETU सेल की पहल से महिला किसान उत्पादक संगठनों को बड़े खरीदारों से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत अब तक करीब 5 मीट्रिक टन नाशपाती भेजी जा चुकी है और 10 मीट्रिक टन की एक खेप गुवाहाटी भेजने की तैयारी है। इस प्रक्रिया में उपज की ग्रेडिंग, छटाई, क्वालिटी जांच और आधुनिक पैकेजिंग के बाद प्रीमियम बाजारों तक आपूर्ति की जा रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भारतीय रक्षा सेवाओं में पहली महिला गैर चिकित्सा अधिकारी के रूप में 2 सितारा रैंक प्राप्त करने पर एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए यह ऐतिहासिक गौरव का क्षण है। असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एजुकेशन की जिम्मेदारी संभाल कर उन्होंने देश की बेटियों के लिए प्रेरणा का नया दीप जलाया है, जो हमारी बेटियों को उनके भविष्य की रोशनी दिखाएगा। यह के सामर्थ्य, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में आकाशवाणी का 37वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी क्लब की ओर से जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय ने कहा कि सभी ने आकाशवाणी से जुड़े अपने अनुभव और पुरानी यादें साझा की।
2: हमने यहाँ जो अपने सेवानिवृत्त सहकर्मी थे, साथी थे, उनको भी आज हमने आग्रह किया कि आप भी आएं और हमसे अपना विचार साझा करें। जो स्थानीय थे या जो झारखंड के आसपास के आए, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। आज का अवसर था, आपस में अपने विचार को साझा किया, पुराने दिनों को ताजा किया।
0: राजधानी रांची के कई सरकारी जगहों में बने अवैध मकानों और अन्य निर्माणों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि सड़क

0: करण के साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।
1: राजधानी में बहुत सारे सरकारी जगह है, तो ऐसे में 4-5 जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। सबसे पहले तो डेली मार्केट उसे चुना गया है, आपका न्यू मार्केट चौक है, शनि मंदिर के पास से जब हम लोग गुजरते हैं, पार होते हैं, तो आप देखते होंगे कि वहाँ बहुत सारे लोग बस गए हैं। वैसे लोगों को भी हम लोग आवाज देने का काम करेंगे और उस रोड को हम लोग स्मूथ करना चाहते हैं ताकि वो रोड चौड़ीकरण हो।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की कमी देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,44,000 रुपए प्रति किलो है। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार बारिश के बाद उफनाई खरकाई नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। हालांकि नदी अभी भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि नदी का जलस्तर फिलहाल डाउनफॉल में है, जिससे राहत की उम्मीद जगी है। इधर गाजिया बराज के 15 गेट अभी भी खुले हुए हैं। इधर कोडरमा जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई इलाकों में जलजमावों की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तिलैया डैम, खेरो डैम समेत सतगावा के सकरी नदी और चंदवारा के गौरी नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है। पलामू जिले का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: बंगाल की खाड़ी और उत्तरी तटीय ओडिशा के ऊपर बने निम्न दबाव के असर से झारखंड में मॉनसून फिर सक्रिय है। इस सिस्टम के प्रभाव से पलामू जिले में रविवार से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुधवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर बारिश के कारण जिले की प्रमुख नदी सोन, कोयर और अमानत उफान पर है। इन नदियों के तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों को माइकिंग कर प्रशासन अलर्ट कर रहा है। आवश्यक नदी, तालाब एवं जल स्रोत के किनारे नहीं जाने और प्रशासनिक गाइडलाइन को मानने का आग्रह किया गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: मौसम विभाग ने तत्कालीन चेतावनी जारी करते हुए बोकारो, चतरा, देवघर और रामगढ़ समेत कई जिलों में 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघगर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवा भी चल सकती है। खूंटी के डुमरदग्गा गांव निवासी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के छात्र सुधीर सांगा का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण हजारीबाग के लिए हुआ है। सुधीर ने वर्ष 2025 में आंध्र प्रदेश में आयोजित अंडर 13 राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा, भारत में वर्तमान 7 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता, नवीनतम विकास आंकड़े दर्शा रहे अर्थव्यवस्था की मजबूती। मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची पर रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, देश विदेश के विशेषज्ञ, शिक्षाविद और शोधार्थी शामिल। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात, स्वास्थ्य मंत्री ने 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। जमशेदपुर में आकाशवाणी का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। जोहार कार्यक्रम में पूर्व कर्मचारियों को किया गया सम्मानित, सभी ने साझा की पुरानी यादें। और अगले कुछ घंटों में रामगढ़, बोकारो, चतरा समेत कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। नदियों का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: कि अगर हमें सोचें कि नहीं, धन बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें कमाने की इस तरह से जरूरत नहीं है, जो भी मिल रहा है छोटा मोटा उस पर हम संतोष करें, तो ये भी एक मुश्किल घड़ी पैदा कर सकता है। तो अपनी आवश्यकता अनुसार तो कमाने की कोशिश करना ही चाहिए और साथ ही साथ कुछ बचत भी करें, और ऐसा ना करें कि हर वक्त धन के पीछे भागें, लेकिन कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, जो हमारे साथी ने कहा। हमारे एक साथी कह रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजी में अपना कमेंट लिखा है जिसे हम हिंदी में पढ़कर आपको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अंदर बचत करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे माता पिता ने मुझे एक, हमें गुल्लक लाकर दिया था दोनों के लिए, और जो भी पैसे हमें मिलते थे गिफ्ट में, जो भी लोग आते थे या त्योहारों के समय जो भी पैसे मिला करते थे, उसे हम इसमें जमा करते थे और कुछ समय के बाद उसे खोलते थे। वो जब भी खोलते थे तो हम देखते थे कि उसका क्या परिणाम होता है। तो जब भी जो बचत का परिणाम देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है और ऐसा लगता है कि और भी

बचाना चाहिए। वहीं हमारे का साथी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी अमीरी बैंक खातों में जमा अंकों से नहीं बल्कि मन के संतोष से तय होती है। संत कबीरदास जी का ये दोहा केवल दो पंक्तियां नहीं बल्कि इंसानियत, करुणा और मर्यादा का सबसे खूबसूरत आईना है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, साधु ना भूखा जाए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चाणक्य की नीति के अनुसार कह सकते हैं कि पुस्तकस्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न सा विद्या ना तद्धनम। सरल हिंदी अर्थ है, विद्या यदि केवल पुस्तकों में रखी रहे यानी कंठस्थ ना हो तो उपयोग में ना लाई जाए, और धन यदि दूसरों के हाथों में चला जाए तो जरूरत पड़ने पर ना वो विद्या किसी काम की रहती है ना ही वो धन। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसे की कमी के कारण मुझे कॉलेज पढ़ाई के दौरान ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। मुझे याद है पहले ट्यूशन 1978 में 10 रुपए माह में शुरू कर दिया था। उच्च शिक्षा तो नहीं पा सका किंतु बच्चों को उच्च शिक्षित कर इंजीनियर बनाकर वो सपना पूरा किया। तो कई बार हमें इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, पर यकीन मानिए जब हम ऐसे अपने पैसे खुद कमाते हैं, अपनी पढ़ाई खुद करते हैं, तो जो आत्मविश्वास हमारे अंदर आता है वो एक अलग किस्म का आत्मविश्वास होता है जो सभी के पास नहीं होता। तो अब हमारे साथी ने चाय पर भी एक कहानी लिख भेजी है, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। और इसको किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा, क्योंकि जिस फिल्म का जो नाम है उस पर भी बात करेंगे हम इस गीत के बाद।

0: कर्ज। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और हमने कहा था कि इस फिल्म के नाम से कुछ तो बात करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब पैसे कम होते हैं और जरूरत नहीं भी होती है, तो भी बहुत से लोगों की आदत होती है कि कर्ज लेकर, उधार लेकर अपने मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जीते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि जितने पैसे हैं उसके हिसाब से वो खर्च करें। तो उधार लेने की आदत तो बड़ी ही खतरनाक होती है, ऐसा कहा जाता है, और उधार देने की आदत में भी कई बार हम फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो तो आप हमें बता सकते हैं कि कर्ज आपने दिया हो और उसे वसूलना बड़ा मुश्किल हुआ हो, या आप कभी खुद कर्ज लिए हो और आपको देना मुश्किल पड़ा हो। वैसे हमारी एक साथी ने चाय की कहानी लिखी है कि एक महाशय रोज अपने दोस्त से घर पर चाय पी लेते, ठीक चाय के समय आते, बेचारे शिष्टाचार वश उन्हें चाय भी देते। रोज उन्होंने अपनी आदत बना ली। एक दिन चाय पत्ती चीनी में कुछ कमी थी, चाय थोड़ी बनी थी और पत्नी खींची हुई थी। उसमें धीरे से उसने पति को बुलाकर चाय पिला दिया। परिवार के सदस्य बारी बारी से उठकर अंदर जाकर चाय पी लिए थे और पीकर बाहर आ जाते तो महानुभाव समझ गए कि आज चाय मिलने के आसार नहीं है। वो भी उतने ही ढीठ बोले, भाभी जी मुझे भी भीतर से बुलाकर कुछ बातें कर लीजिए, तो बातें पूछ लीजिए। तो वो शर्मा गई और उन्हें पता चल गया कि भाई इन्हें तो चाय पिलानी ही पड़ेगी। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है मगर पैसा बहुत कुछ है। वहीं एक साथी का कहना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यही आशा, इसी आशा से अपने मन को संतुष्ट कर लेता हूं, क्योंकि धन से तो कभी मन संतुष्ट नहीं होता। जितना धन होता होगा उतनी बेचैनी होती है। सुकून उसी में है जो उसके पास है, उसमें ही उसे खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना ही सुकून का सबसे बड़ा धन माना जाता है। तो वाकई एक सुकून का धन तो एक अलग ही चीज होती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो और दिक्कत। बस मन में संतुष्टि होनी चाहिए और कोई अंत नहीं है इस चीज का, बस खुशी भरा अपनों का साथ होना चाहिए। और एक साथी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप से भले ही धन को माया या मिथ्या कहा जाए, लेकिन सांसारिक धरातल पर ये बहुत जरूरी है। मन, मैं तो संतोषी लेडी हूं, ऐसा हमारे एक साथी कह रही है कि पैसे आज के टाइम पर बहुत जरूरी हैं। हम तो पूरी बचत करते हैं, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां खर्च करते हैं। पैसा कमाना मुश्किल भी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि महमूद जी की फिल्म सबसे बड़ा रुपया आई थी, उसमें यही दिखाया गया था कि पैसे की कीमत क्या होती है। विलेन का रोल महमूद जी ने जरूर किया, लेकिन एक सबक देने का प्रयास किया है। और एक साथी कहते हैं कि धन बढ़ाने के ऊपर मेरी अपनी निजी राय ये है कि हर धन हर कोई बचा सकता है, लेकिन रिश्ते बचाना बहुत बड़ी बात होती है। धन आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन रिश्ते आपके हमेशा आपका साथ देंगे और आपके साथ रहेंगे। आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाएगा। धन से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन धन से आप सब कुछ नहीं ले सकते। रिश्ते, जिसके बच्चे हैं अच्छे हैं, वही सबसे बड़ा बचत है, वही सबसे बड़ा धन है। और एक और साथी कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे की अहमियत सब समझ में आती है। जब कोई बीमार होता है तब पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, या कहें कि जब पैसा होता है तो इलाज के लिए हम पानी की तरह पैसे बहा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बड़ी गंभीर बातें हो गई। तो कुछ एक बात ऐसी करते हैं जो काफी दिनों से की नहीं, यानी कि आपको सुनवाते हैं एक गीत का शुरुआती अंश। आपको पहचानना है गीत, तो पहले ध्यान से सुनिए ये अंश।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या।
0: तो आपको ये बताना है कि किस गीत का शुरुआती अंश है ये। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, और साथ ही भी बताइए कि किस फिल्म का है।

खींच बैठ के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना

भैया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

आया ये हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन, आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे

सबसे बड़ा रुपया फिल्म का गीत आपने सुना महमूद और साथियों की आवाज में, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो गीत हमने शुरुआती अंश सुनवाया था आपने बिल्कुल सही पहचाना, लावारिस फिल्म का गीत, काहे पैसे पे इतना गुरूर करी है। ये गीत तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि तिजोरियां तो भर गई पर रूह भूखी रह गई, और ये आगे की बातें तो हमने पढ़ ली है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और एक और साथी का कहना है कि वाकई दोस्तों पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। और हमारे एक और साथी का कहना है, क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे रोड पे 15,000 रुपये मिला था एक पर्स में, मैं उसे मोबाइल नंबर खोज कर दिया, जब मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे अपशब्द कह रहे थे, लेकिन जब पैसे की बात की तो भाई बाप कहने लगे। तो यानी उनकी पूछ उन्होंने की, अगर उनके पास पैसे थे और पैसे गिरने पर वो बड़े परेशान थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसा दोस्ती प्यार और खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन ये वो चीज़ें खरीद सकता है जिससे हमें खुशी मिल सकती है। और इसका पैसे को बचाने के लिए हमें, मतलब सीक्रेट इज टू आइडेंटिफाई दोज थिंग, तो हमें का ये सीक्रेट है कि हम उन चीज़ों की पहचान करें। और कुछ चीज़ें तो हमें फ्री में भी मिल जाती हैं, जैसे कि लिसनिंग टू एयर विविध भारती, ऐसा इनका कहना है। अंग्रेजी में इन्होंने अपना कमेंट लिखा जैसे हमने हिंदी में सुनाया, और विविध भारती को सुनना तो फ्री में हो जाता है ऐसा इनका कहना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरह से सुनते हैं, हालांकि इंटरनेट पैक तो लगता ही होगा इसके लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए जो ये मनोरंजन का खजाना है हम बिल्कुल मुफ्त में लाना चाहते हैं और लाते भी हैं। और आप भी हमसे जुड़ते हैं उसी मित्रता से, अपनत्व से, जो कि हमारे लिए अनमोल पूंजी है, जो हमें मिल जाती है मुफ्त में ही, लेकिन आप सभी हमसे जुड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।

0: लावार इस फिल्म का गीत क्यों ना सुने इस वक्त? सुनते हैं और आपको ये बताना है कि संगीत किसका है इस गीत में।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब

लेते थे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे की पावर कोरोना काल में सबने देख ली, पैसा जरूरी नहीं, स्वास्थ्य जरूरी है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मर जाने के बाद कोई रुपया पैसा साथ लेकर नहीं जाता, बात तो 16 आने सच है, मगर जीते जी यही पैसा दुनिया का हालचाल बता जाता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन जीवन की सांसें चलाने के लिए जरूरी तो नहीं, जरूरी तो है, पर दिल को मुस्कुराने की वजह सिर्फ वही दे ये मुमकिन नहीं। सिक्कों की खनक जेब को भारी तो करती है, लेकिन आत्मा को खाली नहीं करती, वही हमारे आत्मा की खाली जगह को नहीं भरती, ऐसा कह रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुबह की चाय के लिए दूध, चाय पत्ती, शक्कर रोज कमा कर रोज दुकान से लाते थे, उसके बाद चाय बनती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितना भी हो सके कर्जा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कम खाएं पर उधार नहीं लेना चाहिए, फालतू के खर्चे ना करें, हमारा ये मानना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल तो ये सिस्टम चल रहा है कि चीजें पहले ले लो और धीरे धीरे करके पैसे चुकाते रहो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई लॉटरी तो छोड़िए, मुझे कभी रास्ते में पड़ा रुपया भी नहीं मिला, मुफ्त का पैसा मेरे पास कभी टिका ही नहीं। इस संबंध में मेरा अनुभव हास्यास्पद रहा है। एक बार हम झांसी से ग्वालियर आए तो वहां सासू माँ ने 100 रुपए दिए और मौसी सास ने भी 100 रुपए दिए। वहां से हमें आगरा जाना था, देर हो रही थी, टिकट ले लिए, लेकिन सुपरफास्ट की टिकट खिड़की से उठाना भूल गया। ट्रेन जैसे ही आगरा पहुंची तभी टिकट चेकर आ गया, टिकट तो ठीक थे पर सुपरफास्ट के सप्लीमेंट्री टिकट न होने के कारण 220 रुपए पेनल्टी देनी पड़ी। इस तरह से मुफ्त में मिले नेक के 200 रुपए ग्वालियर से आगरा 2 घंटे भी नहीं टिके। भाई ये तो बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है कि आपके पास इतनी जल्दी जो भी पैसे ऐसे मिलते हैं वो यूं ही उड़ जाते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे पास यदि लाखों रुपए आ जाए, ये हमने ही पूछा था कि भाई अगर आपके पास लाखों रुपए आ जाए, लाखों तो नहीं कहा था कि जितने आपको मर्जी है उतने पैसे अगर आ जाएं तो क्या करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अगर लाखों रुपए आ जाएं तो सबसे पहले आलीशान घर बनवाऊंगा, उसके बाद एक लग्जरी कार खरीदूंगा, बस दिन भर इधर उधर घूमूंगा, जो दुखिया रहे हैं उनको थोड़ी मदद दूंगा। जिस गांव में यदि पानी की व्यवस्था नहीं होगी उस गांव में सबसे पहले पानी की टंकी और पानी की व्यवस्था करूंगा, जिस गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही उस गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात निराली, खाली जेब तो दुनिया खाली। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि धन बचाना अच्छा है लेकिन सबसे अच्छी बचत है अपने पूरे जीवन में कितने रिश्ते आप बचा पाए, अगर अपने रिश्ते ज्यादा बचा पाए तो वही सबसे बड़ी बचत है। धन तो आएगा चला जाएगा लेकिन जो अपने रिश्ते लोगों की भावनाएं बची वही सबसे बड़ी बचत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैसा कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो दिक्कत, मन में संतुष्टि होनी चाहिए। एक और साथी कह रहे हैं कि जब वो काम करते थे तब उन्होंने, इनका कमेंट अंग्रेजी में है, हम हिंदी में पढ़कर सुना रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब वो काम करते थे तो उन्होंने कुछ पैसे इस तरह से बचत कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे किसी स्कीम में, और उसके बाद वो उसे भूल गए और अपने काम में बिजी रहते थे तो भूल गए, और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें एक लेटर आया और उसमें लिखा था कि कुछ अमाउंट पेंडिंग है उनके लिए, और जब उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज उसकी निभा दी तो उन्हें पेपर वर्क करने के लिए बुलाया गया, और पेपर वर्क के बाद उन्हें जो पैसे मिले वो 10 गुना ज्यादा थे, जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उससे 10 गुना ज्यादा थे, और इन्हें उस वक्त लगा कि उनकी तो लॉटरी लग गई। तो भाई ऐसी लॉटरी भी होती है जिसके लिए हमने ही मेहनत की होती है, लेकिन जब भूल जाते हैं और पैसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पर्स में या जेब में पैसे रख के भूल गए और बहुत दिनों के बाद जब आपने उसे निकाला और पहना और वो पैसे आपको मिले तो कितना आनंद मिलता है? ऐसा कुछ हुआ तो हमसे साझा कीजिए, और ये भी बताइए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम। अरे बम बम नाचे किशोर कुमार रम बम को बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को।
1: आंसू और मुस्कान फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने उस समय समय समय पर धन का साथ हमेशा दिया है। श्रीमती कॉलेज में प्राध्यापक रह चुकी हैं, हम दोनों को पेंशन मिलती है, मेरा लड़का सीए और अच्छे पोस्ट पर कार्यरत है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि उनका लिखा गीत तो नहीं आया अब तक, हम तुम और वो, ऐसा हमारे साथी ने फिल्म का नाम बताया, लेकिन आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, ये गीत भी बड़ा ही अच्छा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं सच्चा झूठा फिल्म का गीत, उन्होंने कहा लेकिन ये तो नहीं है। दीवार फिल्म का संवाद एक अंगल की जुबानी, मेरा लड़का तो ऐसा नहीं था, शायद हमारी भूख देखी नहीं गई होगी, मगर देखा जाए तो देश में लाखों लोग भूखे मरते हैं, तो क्या सभी चूर बन जाएं? पैसे की नैतिक शिक्षा का पूर्व उदाहरण है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल दोपहर से हमारे प्रांत में बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश, सावन नहीं बरस रहा है, भादो बरस रहा है। और हमारे कह रहे हैं कि काली घटाओं और बारिश की बात आज नहीं हुई, पैसों की बारिश की बात यहां हो रही है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं मोबाइल डिस्प्ले पर वीडियो और चला करें साथ में तो अच्छा रहेगा, पूरा गाना देखा भी करो, विविध भारती के स्टूडियो को देखते रहो, अपना कमेंट करते रहो। भाई ये तो कह सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं चाहत है उनका तो कोई सानी नहीं है, उनका ना कोई अंत है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, एक पैसा दो वो 10 लाख देगा, ऐसा उनका कहना है, गीत उन्होंने बताया ये। और हमारे एक साथी कह रहे हैं घर मुझे मिल जाए एक कप चाय और ना रखे जाए मेरे सामने ढेरों तरह के पकवान तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा, और अगर मेरे सामने ढेरों पकवान रखे जाए और एक कप चाय ना पिलाया जाए तो मैं कभी भी खुश नहीं हूंगा। तो चाय वाला गीत तो सुनवाना ही पड़ेगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कल्याण जी आनंद जी इसके संगीतकार हैं, जो कि हमारा सवाल का सही जवाब है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं मेरे गुरुदेव किशोर कुमार की आवाज जैसा किसी की आवाज नहीं है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं अलग अलग बातें हमारे साथी बता रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि हमारे एक रिश्तेदार मुसीबत में थे, रिश्ता ऐसा कि 25 लाख की मदद की, फिर क्या था, समय बदला, जब रुपए देने का समय आया तो लालच मन में आ गया, पहले टालते रहे, बाद में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, रुपए तो आज तक नहीं दिया पर भरोसा और रिश्ता खो दिया, अब हम किसी को हेल्प करने के पहले कई बार सोचते हैं। ये बात तो होती ही है। तो चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुन लेते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जब होती हैं तो मन को शांति देने के लिए एक गीत तो सुन ही लेना चाहिए। आपको ये बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है।

0: बॉबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मन्ना डे, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाए उससे पहले हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान 1:20 को समाचार आते हैं और उस दौरान के गीत और बातें सुनने नहीं मिलती, प्रोग्राम का मजाक किरकिरा होता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप सुन सकते हैं निर्विघ्न ये कार्यक्रम ऐप के जरिए, न्यूज ऑन AIR ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप सुन सकते हैं लगातार कार्यक्रम जो भी है, बिना समाचार के जो एक बीच में आपको लगता है कार्यक्रम के दौरान जो आता है उसे आप इस तरह से टाल सकते हैं और पूरा कार्यक्रम एक साथ सुन सकते हैं। तो ये जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप, और बड़ा ही आसान है इसे हैंडल करना या इसे चलाना, आप खुद ही समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन अब आपको तो ये समझना है कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो कौन से फिल्म का गीत है।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है।

दे दनादन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हालांकि उन्होंने अपना जवाब शायद के साथ लिखा, पर शायद नहीं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पैसों के बारे में क्या कहना, मैं तो अपने पैसों को ऐसे पुराने कपड़ों में भी छुपा कर रखती हूँ। एक बार मैंने पूरे पुराने कपड़ों की बैग एक लड़की को देख कर कहा कि इसको बेचकर आज यहाँ जिसको पहनना है दे देना। थोड़ी देर में वो वापस आ गई, मुझे लगा सारे कपड़े बिक गए, लेकिन कुछ पैसे उसने लाकर मेरी हथेली पर रख दिए कि ये आपके उस बैग से मिले हैं। कपड़ों के बीच में मैं इतना खुश हो गई उन पैसों को देखकर, जैसे मानो मेरे हाथों में खजाना लग गया हो। तो पुराने कपड़ों के बैग में कुछ चीजें दी थी इन्होंने और इस तरह से इन्हें वो मिल गई। और खजाना तो इस तरह से मिलता ही रहता है, जैसे आपके प्यार का खजाना हम तक पहुंचता रहता है। और हमारे कुछ साथियों का कहना है कि बहुत से गीत उनकी पसंद के तो आज सुनाए नहीं गए, और बहुत से साथियों का ये भी कहना है कि उनके लिस्ट के गीत शामिल हुए। तो भाई ऐसा होना तो संभव है, क्योंकि एक घंटे के कार्यक्रम में सभी की पसंद या सारे गीत शामिल करना तो मुश्किल है। लेकिन आप सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती पर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी पसंद के गीत जरूर सुनने मिलेंगे। तो आज के सुरीला सफर कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है स्वर पर। स्वर केवल कंठ से निकलने वाली ध्वनि भर नहीं है, ये मन के भावों का वो सेतु है जो भीतर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। कभी यही स्वर खुशी के पलों में खिलखिलाहट बन जाता है, कभी पीड़ा में सिसकी, और कभी उम्मीद की किरण बनकर किसी उदास मन को सहारा देता है। शब्द भले ही मौन हो जाएं, लेकिन स्वर अक्सर दिल की कहानी कह देता है। संगीत में स्वर सुरों का आधार है, तो जीवन में स्वर हमारे व्यक्तित्व की

किसी की मधुर आवाज सुनकर मन में अपनापन उतर आता है और किसी के कठोर स्वर से रिश्तों में दूरी पैदा हो सकती है। इसलिए स्वर की मिठास केवल संगीत में नहीं, हमारे व्यवहार में भी उतनी ही आवश्यक है। एक माँ की पुकार में ममता का स्वर होता है, पिता की आवाज में विश्वास और शिक्षक के स्वर में मार्गदर्शन। प्रकृति भी अपने अनगिनत स्वरों में जीवन का संगीत रचती है। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव, बहती नदी की कलकल और वर्षा की रिमझिम, हर ध्वनि अपने भीतर एक अलग अनुभूति समेटे हुए है।

स्वरों को सुनने के लिए केवल कान नहीं, संवेदनशील मन भी चाहिए। हमारे जीवन में भी अनेक स्वर साथ साथ चलते हैं। सफलता का स्वर, संघर्ष का स्वर, उम्मीद का स्वर और कभी कभी मौन का स्वर भी। मौन भले ही निशब्द हो, लेकिन उसमें छिपे भावों का स्वर बहुत गहरा होता है। स्वर भावनाओं की भाषा है, रिश्तों की गर्माहट है और जीवन के संगीत की पहली धुन है। जब हमारे शब्दों में संवेदना और स्वर में मिठास होती है, तब साधारण सी बातचीत भी किसी सुंदर कविता की तरह मन में उतर आती है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और

0: देशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का पांचवां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
3: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री रादोस्वाफ शियोर्सकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
5: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
6: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के

0: जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसू डैम के साथ साथ तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले तीन दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गाँवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहाँ कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चूस को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ पांचवा विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

परख। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: हम दोनों फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

तुमसा नहीं देखा। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: किशोर कुमार की आवाज में मुसाफिर फिल्म से गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल सलिल चौधरी का संगीत। टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुँचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: फागुन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, कमर जलालाबादी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य सचिव अविनाश कुमार से मुलाकात की। भाजपा ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई है। प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सरकार 48 घंटे के भीतर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे 1000 छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेती है तो भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे।
1: जेल जाता है लेकिन उसके मेंबर बाहर घूमते हैं, स्पष्ट है इनकी नीति। इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट मांग किया है कि 24 घंटे के अंदर जिन छात्रों पर मुकदमा किया गया है, 1000 से अधिक बच्चों पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उनके मुकदमे वापस हो, सीबीआई जांच की अनुशंसा हो और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा, प्रदर्शन करने का काम करेगा।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मान्यता प्राप्त दलों के बीएलए अब प्रतिदिन अधिकतम 10 मतदाता आवेदन सामूहिक रूप से बीएलओ को सौंप सकते हैं। इसके लिए लिखित घोषणा अनिवार्य होगी। उन्होंने सभी दलों से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में सहयोग की अपील की है। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि झारखंड के गोड्डा जिले में एसआईआर के तहत फॉर्म 7 का उपयोग कर अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है। प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि वे बिहार की तरह यहां भी वोट चोरी का झूठा दावा कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले पर 5 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। सीआईडी ने ख्यांगते पर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी टीडीपीएल से कथित तौर पर 2 करोड़ रूपये कमीशन लेने का आरोप लगाया है, जबकि बचाव पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में 10-10 बेड का आइसोलेशन वार्ड आरक्षित करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आम जनता से पैनिक न होने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है।
1: झारखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर हम लोग अलर्ट मोड में हैं। हमने एडवाइजरी जारी भी किया है और खास करके आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हटिया वगैरह जहां लोग जाते हैं वहां पे हमारी डॉक्टर्स की टीम लगी है, मेडिकल टीम लगी है। जो बाहर से आ रहे हैं उसका पहले स्क्रीनिंग होता है। नॉट ओनली रांची, सभी डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने एहतियातन मैंने निर्देश दिया है।
0: हजारीबाग में सड़कों की जर्जर स्थिति और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद के निर्देश पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निजी कोष से गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर बुनियादी सुविधाएं न देने का आरोप लगाया। चतरा शहर के केशरी चौक पर जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने एक महिला ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। महिला को बचाने के प्रयास में उनका बेटा और एक पुलिस एएसआई भी झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसी महिला को प्राथमिक उपचार के बाद रांची रिम्स रेफर किया गया है। लोहरदगा में आजीविका कैडरों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर सांसद सुखदेव भगत के आवास पर महाजुटान किया। सदस्यों का कहना है कि वे साल 2016-17 से जेएसएलपीएस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। सरायकेला खरसावां में खाद और बीज की कथित कालाबाजारी के खिलाफ आदिवासी किसान मजदूर पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील गगराई के नेतृत्व में आज एसडीओ को मांग पत्र सौंपकर यूरिया और डीएपी की तय कीमत से अधिक वसूली पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सुनने वाली सभी सखियों श्रोताओं को और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: हेल्दी नमस्कार से मुझे बात याद आई कि आज आप मिलते ही मुझे कुछ हेल्दी चीज खिलाई थी, वो थी नारियल की बर्फी।

0: दारिल में बहुत गुण होते हैं। आप कुछ कह रही थी?
1: यही कहने वाली थी कि आप हेल्दी नमस्कार के साथ साथ जो अपना आहार होता है उसमें भी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करती है, ये बहुत अच्छी बात है।
0: भाई अगर बोलेंगे और अगर उसको नहीं पालन करेंगे उन बातों का तो कहने का कोई मतलब नहीं है। और हमेशा एक उम्मीद यहाँ पे रहती है कि कोई ना कोई एक सखी या हमारे श्रोता भाई अपने आदतों में या स्वास्थ्य में कहीं पे कुछ भी एक अच्छे सुधार लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया या करते हैं तो थोड़ा सा समय बढ़ाया या 5 मिनट 10 मिनट के लिए ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहते हैं और उसको समय देते हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। तो इंतजार है शायद कभी कोई ना कोई एक कमेंट आए हमें
1: जी। और आज के जो खास दिन है, आज विश्व नारियल दिवस है, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और भी श्रोतागण लिखे कि नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से नारियल का इस्तेमाल करते हैं। रही बात व्यंजन की, तो आज हमने नारियल के व्यंजन ही चुने हैं और हमारे बहुत सारी सखियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने नारियल के व्यंजन भी लिखकर हमें भेजे।
0: हाँ, वो भी लिख के भेजे हैं। और भाई देखो, त्योहारों का बिल्कुल एक के बाद एक त्योहार लगातार है, ऐसे में अलग अलग प्रकार के हम साड़ियों को ढूंढते रहते हैं कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने। आजकल वैसे सलवार सूट वगैरह भी बहुत कुछ पहनने लगी हैं हमारी सखियां, लेकिन फिर भी त्योहारों में साड़ियों का जो रुतबा और जो रौनक उसको आके जो ग्रेस आती है पहनने पर, वो एक अलग ही है। इसलिए इसी आज के दिन हम साड़ियों का संसार लेकर आते हैं। आज हम बताने वाले हैं मंगलगिरी साड़ियों के बारे में, उसकी क्या विशेषता है, कैसी बनती है और
1: किस राज्य की है।
0: किस राज्य की है
1: जी।
0: बिल्कुल।
1: और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने चुना है प्रसन्नता, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, पर अगर हम प्रसन्नता को अपनाते हैं तो दुख के दिन भी बड़े आराम से निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये असली जीवन का आधार है प्रसन्नता। और हम श्रोताओं से चाहते हैं कि आप और संदेश हमें लिख के भेजिए, कुछ ऐसी बात भी लिख के भेजिए, क्योंकि आया तो है, कुछ कमेंट्स आए तो हैं, पर इंतजार है कुछ और उनके संदेशों का। और साथ में जानकारियां भी देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो फूड पैकेट्स पर जो जानकारी लिखी होती है वो पढ़ना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर परिवार को, बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या चीज हम तैयार बाजार का अगर उन्हें खिला रहे हैं तो उसमें क्या उनके खान पान में जा रहा है, ये चीज के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है।
1: यानी आंख मूंद के पैकेट वाला खाना नहीं खाना है।
0: बिल्कुल,
1: उसकी हमें एक्सपायरी डेट चेक करना है और भी अन्य सारे उसमें कितने क्या क्या कंटेंट्स मौजूद है वो सारे पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। और अभी क्या जरूरी है?
0: गीत बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: सुनते हैं गीत।

0: आज विश्व नारियल दिवस है और नारियल हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा फल है जिसे हम स्वाद के साथ साथ कई उपयोगों के लिए जानते हैं। नारियल का पेड़ इतना उपयोगी है दीपा कि इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फल, पानी, तेल, छिलके और पत्तों तक का उपयोग अलग-अलग कामों में किया जाता है और नारियल के इसी महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है।
1: हाँ जी, और विश्व नारियल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नारियल की खेती और इसके उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है, साथ ही नारियल की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करना और नारियल उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारत दुनिया के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक है। हमारे देश में केरल जो राज्य है, जो कि केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, ये सभी राज्य जितने भी हैं ना, इनमें बड़ी मात्रा में नारियल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में लाखों किसान नारियल की खेती से अपना जो जीवन चलाते हैं।
0: और नारियल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। नारियल पानी गर्मी में शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। नारियल की गिरी से तेल और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नारियल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ बालों और त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है।
1: नारियल की खास बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा काम में आता है, सोनाली, है ना। नारियल के छिलके और उसके जो जटा से रस्सियां, चटाइयां, है ना, कई सारी उपयोगी चीजें बनती है। यहाँ तक कि सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं, इसके खोल से सजावटी सामान बनते हैं, घरेलू वस्तु भी तैयार की जाती है। और नारियल किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करता है।
0: साथ ही दीपा, नारियल का पेड़ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर समुद्र के किनारे और तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ये पेड़ हमारे आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाते हैं।
1: जी, और
0: ये दिवस जो है ना,
1: जी
0: हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल संसाधन दिए हैं। जरूरत है तो बस उन्हें समझने, बचाने और सही तरीके से उपयोग करने की है। नारियल वास्तव में प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो हमें पोषण भी देता है और रोजगार भी देता है।
1: बिल्कुल। और इस विश्व नारियल दिवस पर सखियों, हम नारियल की उपयोगिता को समझना चाहिए हमें, और नारियल की खेती करने वाले किसानों का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के इस अनमोल उपहार को सहेजने का संकल्प लेना।

0: चाहिए। तो देखिए ना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और प्रकृति तीनों का साथी है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, देखो, ले लो रे बाबू पी लो नारियल पानी, 1 रुपया दाम है, हजारों का काम है, सैकड़ों बीमारियों की दवा है, पिलाओ तो मिलेगी आपको दुआ। आज विश्व नारियल दिवस है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। हमारे यहाँ गुजरात में भावनगर जिले के महुआ शहर में, जिसे मिनी कश्मीर कहा जाता है, वहाँ नारियल का विशाल उत्पादन हो रहा है। कच्चे नारियल को गुजराती में त्रोफा कहा जाता है, जिसका पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, बीमार लोगों को अक्सर पिलाया जाता है। पक्के नारियल पूजा पाठ के अलावा भगवान के चरणों में भी धराया जाता है। पक्के नारियल से निकले खोपरा से खोपरा पाक जैसी विविध स्वादिष्ट पौष्टिक मिठाई
0: कई घरों में कई लोगों को। और इसी तरह से एक सखी ने लिख भेजा है कि कौन नारियल के पानी में जादू सा कर जाता है, बंद कटोरी में मीठा जल चुपके से भर जाता है। क्या खूब है। तो ये प्रकृति की सुंदरता है ना, कि
1: जी
0: पता ही नहीं चलता अंदर पानी कैसे आ जाता
1: हम
0: है।
1: कितने समृद्ध हैं ना
0: जी
1: इस प्रकृति के साथ। एक साथ ही लिखते हैं, इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में से श्रीफल यानी देवताओं का फल माना जाता है। नारियल का छिलका इतना हल्का और वाटरप्रूफ होता है कि समुद्र की लहरों पर 100 दिनों तक तैरने के बाद भी जीवित रह सकता है और किनारे पर पहुंचकर नया पौधा उगा सकता है। इतिहास में दुनिया के कुछ हिस्सों में नारियल का इस्तेमाल सामान खरीदने, व्यापार करने, यहां तक कि टैक्स चुकाने के लिए करेंसी के यानी मुद्रा के रूप में किया जाता था। दुनिया के कुल नारियल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा केवल 5 एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत से आता है।
0: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि नारियल दिवस, इसके स्वास्थ्य वर्धक लाभ और उसके महत्व और नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। साथ में ये भी बताते हैं कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ICC, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। और ये बात तो एक और हमारे जो साथी, उन्होंने भी लिखा है कि इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं।
1: और आप गाना सुन ले,
0: चलिए।

0: दीपा, अगर कोई हमें साड़ी गिफ्ट कर दे तो हम भी झूमने लगते हैं।
1: शायद फिर उसको पहन के कुछ इसी तरह से गाएंगे ना, ये वादे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं। और साड़ी के गिफ्ट की तो हमेशा चाहत होती है हर महिलाओं को, है ना? और क्या आप भी बताइएगा, चाहत होती है या नहीं, सही कह रहे हैं या नहीं?
0: हाँ बिल्कुल, लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी ने साड़ी गिफ्ट करी तो आपको कैसे लगता है। या फिर कुछ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है दीपा, जिन्हें ऐसा लगता है अरे ये इस तरह के तो हम नहीं पहनते, इतनी भारी भरकम तो हम नहीं पहनते, या फिर ये कलर तो हम कभी नहीं पहनते, ये तो हमें जचता ही नहीं है, पर मुझे तो अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट करे तो। और आपको?
1: बिल्कुल, हमें क्यों नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आता है।
0: तो चलिए फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि खुशी है ना, उसी से मिलती है ना।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और भाई ये गिफ्टिंग का तो दौर चलता रहेगा, आंध्र प्रदेश चलते हैं, क्योंकि वहां से लेनी है मंगलगिरी साड़ी।
0: मंगलगिरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध और सुंदर पारंपरिक हथकरघा साड़ियों में से एक है। साड़ी आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर से संबंधित है और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय से हथकरघा उद्योग से जुड़ा हुआ है। यहाँ अनेक पीढ़ियां बुनाई के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके हाथों की कला और वर्षों का अनुभव मंगलगिरी की साड़ियों को विशेष पहचान प्रदान करते हैं।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ जो खास तौर पे हथकरघा यानी हैंडलूम्स पर बुनी होती हैं, बुनकर बहुत बारीकी और धैर्य के साथ धागों को जोड़कर साड़ी तैयार करते हैं। इस कार्य में सिर्फ तकनीक नहीं हो लगती है, बल्कि अनुभव और कलात्मक दृष्टि की भी आवश्यकता होती है सोनाली। और इन साड़ियों की एक विशेषता है, ये पहचान इसमें होती है कि साड़ी का मुख्य भाग अक्सर एकदम सरल डिजाइन वाला होता है और इसके विपरीत बॉर्डर और पल्लू पर भरपूर डिजाइन होते हैं, जरी का काम किया जाता है। और यही जो बैलेंस है, ये जो संतुलन है ना, मंगलगिरी साड़ी को एक सरल और बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक साड़ी बनाता है। फिर मंगलगिरी साड़ी की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी है, इसमें बहुत अधिक भारी कढ़ाई या चमक दमक नहीं होती है। तो किसी को कोई अगर एलिगेंट साड़ी पहनना पसंद हो ना, तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वो सखी खरीद सकती हैं। और ये बहुत आकर्षक लगते हैं, ये बिल्कुल कम चमक दमक वाली साड़ियाँ, और इन महिलाओं के लिए विशेष पसंद है जिन्हें एकदम, जो बात हम कह रहे थे ना कि शालीन और पारंपरिक पहनावा अगर आपको पसंद आता है कि मैं सोबर कलर, सोबर डिजाइन, सोबर साड़ी पहनना पसंद करती हूँ, तो वो मंगलगिरी साड़ी को बिल्कुल खरीद सकती हैं।
0: और इन साड़ियों के बॉर्डर बहुत सुंदर होते हैं। कई मंगलगिरी साड़ियों में जरी के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, कुछ में चौड़े बॉर्डर होते हैं जबकि कुछ में पतले और आकर्षक किनारे बनाए जाते हैं। और साड़ी का पल्लू भी इसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रंगों और पारंपरिक डिजाइन के सुंदर मेल से पल्लू को आकर्षक बनाया जाता है।
1: मंगलगिरी साड़ियाँ हल्की और आरामदायक होती हैं, गर्म मौसम में इन्हें पहनना बहुत सुविधाजनक होता है, और इसीलिए ये साड़ी आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी पहन सकते हैं। साथ साथ में जब खास अगर आपके घर में कोई खास प्रोग्राम हो रहा है, कोई त्योहार सा है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियाँ अलग अलग प्रकार के कपड़ों से

0: बनाई जाती है, कॉटन की भी बनती है जो कि बहुत एकदम कंफर्टेबल होती है, सरल होती है, और सिल्क या सिल्क कॉटन वाला जो मिश्रण वाला जो फैब्रिक होता है वो साड़ियाँ दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत हैवी हमें नहीं खरीदनी, क्या करेंगे इतना पैसा लगा के, तो सिल्क कॉटन वाला जो मिक्स वाले जो फैब्रिक
1: जी
0: होती है वो वाली साड़ी भी आप ले सकते हैं। और मंगलगिरी साड़ियों के रंगों की भी विशेष भूमिका होती है, पारंपरिक रंगों के साथ साथ इसमें आधुनिक हल्के रंगों का भी प्रयोग होता है। पारंपरिक हो गए जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सफेद सफेद जैसे रंग, और इसके साथ साथ में कुछ वेस्टर्न और ईस्टर्न कलर भी ऐसे होते हैं जैसे कि भूरा भी कलर आने लग गया है,
1: जी
0: अब तो कत्थई कलर भी आने लग गया है आजकल, ये अपना बैंगनी और मोव जो हल्का जामुनी कलर होता
1: जी
0: है ना वो भी चल रहा है बहुत ज़्यादा इन दिनों, तो वो कलर में भी ये साड़ियाँ उपलब्ध है। फिर इन साड़ियों की खासियत ये है कि इनका रंग और बॉर्डर एक दूसरे के साथ सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं, इसलिए ये साड़ी पहनने वाले व्यक्तित्व में सादगी और गरिमा दोनों जोड़ देती है। अब अनेक अवसरों पर उपयुक्त मानी जाती है, जैसे सोनाली।
1: जैसे त्योहारों में पहन सकते हैं, पारिवारिक समारोह में पहन सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहन सकते हैं, और हल्की कॉटन मंगलगिरी साड़ी दिन के कार्यक्रमों के लिए बहुत अच्छी लगती है, जबकि जरिया सिल्क वाली मंगलगिरी साड़ी विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त होती है। मंगलगिरी साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होती, इसके पीछे अनेक बुनकरों की मेहनत, धैर्य और वर्षों पुरानी कला छिपी होती है। हथकरघे पर तैयार होने वाली प्रत्येक साड़ी में हाथों की मेहनत और परंपरा का स्पर्श होता है।
0: बिल्कुल, अब आज का जैसे जमाना हो गया ना कि मशीनों पे भी कपड़े बनते, ऐसे में अगर आपको हैंडलूम की साड़ियां पसंद है और भारतीय कारीगरों की कला और उनके महत्व को अगर आप याद करके रखना चाहते हैं तो मंगलगिरी साड़ी बिल्कुल वैसी ही है। और इन साड़ियों को अपनाना केवल सुंदर पहनावे को चुनना नहीं है, ये हमारे देश की हस्तकला और बुनकरों की परंपरा को सम्मान देना भी होता है।
1: यानी मंगलगिरी साड़ी केवल धागों से नहीं बनती, उसमें बुनकरों के हाथों की मेहनत, पीढ़ियों की कला और आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत भी बुनी होती है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये साड़ी लगती है और एक बार पहन के जरूर देखिएगा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनाली, हमारी एक सखी का ये मैसेज आया है कि जो नारियल है, नारियल दिवस के बारे में उन्हें याद आ रहा है कि मुझे तो बहुत पसंद है कच्चा नारियल, और चटनी भी बनाती हूँ और खूब मजे में हमारे घर में खाते हैं। इसका पानी बहुत फायदेमंद होता है पेट के लिए, खासकर बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और उनके शहर में एक डिश है भुट्टे का किस, उसके ऊपर कच्चे नारियल को डालकर सजाया जाता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। व्रत में भी नारियल पानी मैं पीती हूँ, ऐसा हमारी सखी ने लिखकर भेजा है। एक हमारे सखा, जब हमने पूछा ना कि आप क्या क्या करते हैं सुबह, किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, तो एक हमारे श्रोता भाई ने लिखा है कि हर जनवरी में और अगस्त में मैं टेस्ट करवाता हूँ, फुल बॉडी चेकअप, जिसमें बिल्कुल हमारा नॉर्मल आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर कहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल भाई, लेकिन बस अपने जो है खाने का कंट्रोल कहीं बाहर ना रह जाए ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन 60 मिनट तक वॉक करना का पालन करता हूँ, और 60 साल की उम्र में 60 मिनट का वॉक, तो ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। एक हमारे श्रोता का भी मैसेज है, वो कहती है कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे रोज उठता हूँ।
6: अब हम वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं ब्रेक।
5: चलिए

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। और दीपा, कहाँ खो गई हो आप?
1: मैं तो हमारे जो श्रोता और सखियां हैं उनके संदेशों में खो गई थी कि क्या क्या संदेश आए, वो चुन रही थी। तो चलिए, आज भाई संदेश पढ़ना है तो ये भी तो बताना होगा कि किस बारे में हम बात करेंगे।
0: खाद्य पैकेट्स पर लिखी जानकारी, जो हम अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आंख मूंद के उन पैकेट को खोलते हैं और खा लेते हैं उसकी चीजें बिना देखे, ना
1: बिना
0: अक्सर
1: देखे,
0: होता है
1: बिल्कुल।
0: ये, ना कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि पैकेट बना हुआ है तो ये अच्छा ही होगा।
1: अच्छा ही होगा। और जब सफर में जाते हैं तो देखो ना, एक ने पैकेट खोला तो सभी लोग खा लेते हैं। फिर भले हम कहते हैं कि अरे हम घर में नहीं खाते, बस ये तो क्या बाहर निकले ना तो खा लिया, लेकिन क्या खा रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है।

0: तो आजकल बाजार में मिलने वाले अधिकांश खाद्य पैकेट जो होते हैं बंद होते हैं, जैसे बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन, दूध, जूस, मसाले। इन खाद्य पदार्थों को खरीदते समय केवल पैकेट का रंग, आकर्षक चित्र या विज्ञापन देखकर खरीदना उचित नहीं, बल्कि पैकेट पर लिखी जानकारी को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: क्योंकि इनमें से इससे हमें उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, पोषण और सुरक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि उसमें पैकेट पे नाम क्या लिखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि पैकेट के अंदर वस्तु कौन सी है। फिर ये जानकारी उसमें दी जाती है कि खाद्य पदार्थ कब बनाया गया है, या कब बनाया या कब पैक किया गया है। इससे हमें उसकी ताजगी का पता चलता है। फिर एक होता है पैकेट पर एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर लिखा होता है, तो इसमें समाप्ति तिथि के बाद खाद्य पदार्थ का सेवन करना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए खरीदने से पहले उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।
0: साथ ही पैकेट पर लिखा होता है खाद्य पदार्थ को बनाने में किन-किन चीजों का उपयोग किया गया है, जैसे आटा, चीनी, नमक, तेल, मसाले आदि। जिन लोगों को किसी खाद्य पदार्थ की एलर्जी होती है उसके लिए जानकारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। साथ ही पोषण संबंधी जानकारी के पैकेट पर कैलोरीज लिखी होती है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, चीनी और नमक की मात्रा लिखी होती है। इससे हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है भी या नहीं भी।
1: बिल्कुल। अच्छा, शुद्ध वजन या मात्रा, उसमें कितना वजन है वो भी लिखा होता है कि 100 ग्राम है, 500 ग्राम है या 1 किलोग्राम है। इससे वस्तु की हमें सही मात्रा पता चलती है। और इसके अलावा हर पैकेट पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होता है। दुकानदार को इससे अधिक कीमत नहीं लेनी चाहिए और इसलिए खरीदते समय एमआरपी हमें देखना जरूर चाहिए।
0: साथ ही उसपे दो चिन्ह होते हैं दीपा। खाद्य पैकेट पर अगर हरे रंग का चिन्ह है तो ये शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, और अगर लाल रंग का चिन्ह है तो ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ हो सकता है। इससे उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं।
1: बिल्कुल। इसके अलावा पैकेट पर कंपनी जिसने बनाई है उसका नाम और पता भी दिया जाता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। फिर कुछ खाद्य पदार्थों में ठंडी और सूखी जगह पर रखना आवश्यक होता है, ऐसा लिखा रहता है, जबकि कुछ वस्तुओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। पैकेट पर दी गई भंडारण संबंधी जानकारी का हमें पालन करना चाहिए।
0: एक हमारे साथी कहते हैं कि फूड पैकेट्स पर लिखी जानकारी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल ताजा किस्सा बताना चाहूंगा। मेरी धर्मपत्नी का पीहर अजमेर में ही है और हम रक्षाबंधन के दिन मेरे ससुराल गए थे। धर्मपत्नी की भाभी ने मिठाई के साथ 2 कुकीज के पैकेट भी कॉलोनी के किसी दुकानदार से मंगवा कर दिए थे। मेरी नजर कुकीज के पैकेट पर पड़ी और मैंने देखा था उस पर यूज बाय डेट 26 अगस्त 2026, इन एक्सपायरी डेट के कुकीज थे। हाथों हाथ हमने दुकानदार को वापस भिजवाए। दुकानदार ने कहा गलती हो गई, सतर्कता से एक्सपायर्ड कुकीज उपयोग करने से हम बच गए।
1: बिल्कुल,
0: ये जागरूकता हर किसी को जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और एक संदेश आया है कि क्योंकि इसमें भले बुरे की पहचान होती है, सब जो सारी जानकारी लिखी होती है, फिर खाए जाने वाले पैकेट्स की जानकारी तो और भी अधिक आवश्यक है। तो इससे उसके गुणवत्ता का ज्ञान होता है। वैसे पैकेट्स की जगह प्रकृति पद्धत ताजे पदार्थ का सेवन किया जाए तो अधिक सेहतमंद होता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। भाई वो तो है, लेकिन अब स्कूल से निकलकर बच्चा अगर अटक ही जाए कि हमें तो ये खाना ही है, ये आलू के चिप्स हम लेके ही रहेंगे, तो अब क्या कीजिएगा। बच्चे मानते नहीं है, तो हर बार हमें उन्हें कभी कभी, भले चाहे आप कहिए कि 10-20 बार में से एक बार हमें दिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी पैकेट कितना स्वास्थ्यवर्धक है और कितना हानिकारक है, बच्चों को इसकी पूरी जानकारी देकर कि आप खरीदें।
0: कितनी भी जिद करें उसमें एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। हाँ, उसके अंदर के कंटेंट्स ठीक है कि बाद में चेक कर सकते हैं, पर एक्सपायरी डेट पहले चेक करना जरूरी है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि फूड पैकेट पर लिखी हुई जानकारी पढ़ना बेहद जरूरी है। हम सभी को घर में व्रत में राजगीरा के लड्डू खाए थे, एक ब्रांडेड कंपनी से रामदाना, हम राजगीरा को पूर्ण रामदाना कहते हैं, जो जागरी गुड़ से बना हुआ था, सभी ने खाया। जब पैकेट में पढ़ा गया उसमें सोडियम की भी मात्रा थी। हमारे घरों में व्रत में नमक नहीं खाते, व्रत में तो ये गलती हो गई, उसका निदान भी किया गया, पर मन में कहीं लग रहा था पैकेट पढ़कर ही खाना चाहिए। इसलिए फलाहार का भी पैकेट आप देख लीजिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं।
1: हाँ, बहुत सही जानकारी, कितना सही जानकारी कि अगर आप व्रत में है और अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हमारे मन में एक भ्रांति आ जाती है कि देखिए हम नहीं खाना चाहते, फिर भी नमक चला गया। अच्छा, इसके अलावा नूडल्स, सूप या रेडी टू ईट भोजन, ये सारे जो पैकेट होते हैं उन्हें बनाने का या उपयोग करने की विधि भी उस पर लिखी होती है जो पैकेट से उन पर। इससे खाद्य पदार्थ को सही तरीके से तैयार किया जा सकता है और खाद्य

0: पैकेट पर लिखी जानकारी हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सोनाली। हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले उसके निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, वजन और मूल्य आवश्यक अवश्य जांचना चाहिए।
1: एक हमारे साथी कहते हैं कि भाई चिप्स के पैकेट भूख लगने पर सभी बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, पैकेट पर सब कुछ लिखा रहता है, आपको इसमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना ट्रांस फैट है, कितना अनसेचुरेटेड है और कितना इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा है। कुछ विदेशी ब्रांड के चॉकलेट और बिस्किट पर वैसे खाद्य तेल रहते हैं जिसे हम खाना नहीं चाहते, तो उसके बारे में भी स्कैन करके सब जानकारी मिल जाती है। तो खाने का सामान और डेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए?
0: एक गाना तो सुनना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता वही है जो आकर्षक पैकेट के बजाय उसकी सही जानकारी को पढ़कर सोच समझकर उस चीज को खरीदता है।

0: दीपा, इस गाने को सुनकर मुस्कुरा रही थी या मुस्कुराहट का कोई और कारण है?
1: जब ये गाना सुन रही थी तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं ना सखियो, याद आते हैं कि नहीं, जब हम अपना घर बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, कहीं पे किसी ने अपना इंडिपेंडेंट घर बनाया हुआ है, कहीं किसी ने फ्लैट खरीदा है, तो जिस तरह से सजा

0: करते हैं तो नहीं, गीत सुनकर के हमारे अपने पुराने दिन याद आते हैं और फिर देखिए चेहरे पर एक प्रसन्नता यानी एक मुस्कान आ ही जाती है।
1: फिर वो छोटी छोटी खुशियों में भी क्यों ना हो, किसी ने कुछ साड़ी खरीद दी या फिर किसी ने कुछ खाने का सामान ही दे दिया, यानी जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं।

0: श्रोता भी कह रहे हैं बल्कि जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना है। ये विचार हमें सिखाता है कि प्रसन्नता कोई गंतव्य नहीं है बल्कि ये आनंद का क्षण है जिसे प्राप्त किया जा सके, बल्कि एक जीवन शैली है। प्रसन्नता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति है, हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक उपलब्धियों पर।
1: बिल्कुल। और आपने आसपास या परिवार में या हमारे परिजनों में देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको हमेशा चेहरे पर स्माइल रहती है, और अगर उनके स्थितियों को देखो, परिस्थितियों को देखो, तो बहुत कठिनाइयां चल रही है लेकिन एक सतत एक हमेशा मंद मुस्कान उनकी बनी रहती है, और फिर हम कहते हैं भाई जीना है तो इनकी तरह ही जीना चाहिए।
0: मेरे लिए तो नहीं कह रही आप
1: शायद हो भी सकता है
0: वास्तव में प्रसन्नता के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वभाव की बात है। यदि आप खुश नहीं है तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, पर होता इसके विपरीत है। प्रसन्न रहने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। भविष्य की चिंता भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को ही पीड़ा दे। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर प्राणी स्वयं में प्रकृति की विशिष्ट पहचान है। बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर बात की है कि भविष्य की चिंता नहीं, उस पर सोच और समझ रखनी चाहिए कि भाई हमें करना है क्या नहीं करना है। चिंतित हो करके हमारे बालों को सफेद कर लें और फिर चेहरे पे हमेशा एक उदासी उदासी लिए रहे ना, तो लोगों को लगने लग जाता है, परिवार को लगने लग जाता है, हमेशा ये इतना दुखी क्यों रहते हैं
0: और इनसे दूर ही भागते लोग।
1: हाँ, ऐसा भी होता है। और देखो एक और संदेश है, ये कहता है कि प्रसन्नता का पैमाना न धन है न पद, उसका पैमाना है कि रात को नींद कितनी गहरी आती है, सुबह मन कितना हल्का उठता है, और किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके भीतर जलन नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान आती है। जब छोटी छोटी बातों में भी दिल कहे कि जो है बहुत है और कल की चिंता आज की शांति को नहीं छीन पाती, तो समझिए आप सच में प्रसन्न है। भाई ये तो इतना प्यारा संदेश है, इसको तो ऐसा लगता है दो तीन बार पढ़ लेना चाहिए, है ना,
0: या फिर अपने पास रख लेना चाहिए।
1: हाँ,
0: है ना?
1: इसको सेव करके रखा जा सकता है। बिल्कुल।
0: एक साथी कहते हैं प्रसन्नता बांटने से नहीं बढ़ती, सॉरी, प्रसन्नता बांटने से बढ़ती है। प्रसन्नता केवल हंसने का नाम नहीं बल्कि मन के भीतर की वो शांति है जो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखाती है। जब अपेक्षाएं कम और कृतज्ञता अधिक होती है तो साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है। ये संदेश भी कितना सुंदर है।
1: बहुत सुंदर
0: जी।
1: एक संदेश कहता है कि खुश रहना, प्रसन्नता, प्रसन्न रहना जीवन का वो आंतरिक आनंद है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और संतोष पर निर्भर करता है। प्रसन्न रहना जीवन जीने का एक खूबसूरत तरीका है। ये तो हमारे मन के भीतर की भीतर ही निवास करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वही असली मायनों में प्रसन्न रहता है। अपनी मुस्कान की वजह खुद बनिए, किसी और का इंतजार मत करिए।
0: और अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बस जैसे है वैसे रहे, बस खुश रहे, मस्त रहे और गीत सुनते रहे।

0: दीपा कहाँ खो गई थी? व्यंजन में.
1: व्यंजन में बिल्कुल। तो आप पढ़ रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ।
0: जी, हमारे एक साथी ने नारियल का मैसूर पाक लिखने की रेसिपी लिखकर भेजी है. कहते हैं कि पानी वाला नारियल, शक्कर और घी, नारियल का कल वाला हिस्सा निकालकर सफेद वाले हिस्से को मिक्सी में डालकर बिना पानी के अच्छे से ग्राइंड कर ले. नारियल का बुरादा को कटोरी में भरकर नाप ले. अगर कटोरी नारियल का बुरादा है तो पौना कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी लगेगा. तीनों को मिलाकर कढ़ाई को मध्यम आंच पर एक ही डायरेक्शन में चलाते रहे. धीरे धीरे शक्कर घूमेगी और फिर घी बाहर आएगा. इस वक्त अपने हाथों को बचाकर रखना होगा क्योंकि घी उड़ता है. लगातार एक ही डायरेक्शन पर चलाते रहना है और कढ़ाई पर जब हल्का गुलाबी सा रंग दिखे तो इसमें पहले ही तैयार स्टील की छन्नी और इसके नीचे एक बर्तन रख दे. मिश्रण को इस पर फैला दे. घी पूरा नीचे आ जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो टुकड़े कर ले. बहुत स्वादिष्ट लगता है.
1: बिल्कुल। और ये एक रेसिपी है नारियल की बर्फी। तो इसके लिए आपको नारियल का बुरादा लेना है 2 कप, और चीनी 1.5 कप, दूध 1 कप या मावा भी ले सकते हैं यानी कि खोया 3/4 कप, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो थाली को चिकना कर लें पहले, और एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा देसी घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें। फिर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें। इसमें दूध और चीनी डालकर धीमी आंच पर चीनी घुलने तक पकाएं, और यदि आप मावा मिला रहे हैं तो इसे भी इसी समय दूध चीनी के साथ कढ़ाई में डाल दें। फिर इसमें आप नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर और लगातार चलाते रहें डालने के बाद, और जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो कढ़ाई में न छोड़ने लगे ऐसा देखना चाहिए आपको। और फिर आप इस पे आप इसको जो थाली आपने तैयार करी घी लगी उस पे बर्फी बना के बर्फी के लिए जमा सकते हैं, और बाद में जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो बर्फी के शेप में काट लीजिए
0: और खा लीजिए.
1: बिल्कुल।

0: अब मीठा हो गया तो एक नमकीन भी बनना चाहिए ना, तो दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और एक बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार डिश बनाते हैं, नारियली चावल। इसके लिए सामग्री आपको लेना है बासमती चावल 1 कप, नारियल का दूध लेना है 1 कप, पानी 1 कप, और बघार यानी छौंक के लिए लेना है राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, घी और काजू। बनाने की विधि कैसे होगी, कुकर में घी गरम करें, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और काजू डालकर भून लीजिए, जो धुली हुई बासमती चावल है वो डाल दीजिए, 1 मिनट तक चलाएं। अब इसमें 1 कप पानी और 1 कप नारियल का दूध मिला करके डालें और बाद में बिल्कुल आखिर में नमक डालें। कुकर का ढक्कन बंद करें, धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएं। आपके ये जो खिले खिले नारियल चावल हैं वो तैयार।
1: तो मैं तो आज घर में ये सारी रेसिपीज बनाने वाली हूं।
0: मैं भी यही सोच रही थी।
1: आप गाना सुन ले
0: चलिए।

0: तो श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने सुंदर सुंदर श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे, उनके कारण कार्यक्रम में बहुत बहुत हमें मजा आया
1: बिल्कुल,
0: और ऐसा
1: और
0: लग रहा था कि हमारे सारे श्रोता हमारे साथ में हैं।
1: और पौष्टिक जो आपने व्यंजन विधियां भेजी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब लेते हैं इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है साहित्यकार ज्योति जैन जी को, जो इंदौर से आई हैं। विविध भारती के स्टूडियो में ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये बताइए कि रेडियो में आज आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि रेडियो से आपका बड़ा गहरा नाता रहा है। कैजुअल अनाउंसर रही हैं और फिर परमानेंट अनाउंसर के लिए कॉल लेटर आया था जो ज्वाइन नहीं किया, तो क्या कहानी है ये बताइए आप।
2: जी ममता जी, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहां बैठी हूं ये जगह मेरे लिए अपरिचित नहीं है, क्योंकि आज से 40 वर्ष पूर्व जब मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया तो स्टूडियो का वातावरण मेरे लिए बिल्कुल सुपरिचित रहता है। मैंने कैजुअल अनाउंसर के तौर पर 3 वर्ष काम किया पढ़ाई के साथ साथ, फिर परमानेंट के लिए एग्जाम दी और जब उसका रिजल्ट आया तो मेरी नियुक्ति होने वाली थी, लेकिन उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया।
1: अच्छा।
2: और दरअसल उस वक्त क्या होता है, जब आप प्रेम में होते हैं ना तो प्रेम के अलावा और कुछ नजर नहीं आता।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो और चूंकि मैं जिस परिवार में आ रही थी वहां थोड़ा सा मारवाड़ी कल्चर है, तो नौकरी पेशा, और उस समय 40 साल पहले लड़कियां इतनी नौकरी नहीं करती थी बहुत ज्यादा, और ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे दोनों में से अगर किसी को चुनना है तो मैंने निश्चित रूप से अपने प्रेम को चुना।
1: जी।
2: और इस तरह से बस शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मैंने अपने दाम्पत्य और मातृत्व का आनंद लिया, और उसके बाद मैं आकाशवाणी इंदौर से अभी भी जुड़ी हूँ, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वार्ताओं के माध्यम से।
1: जी।
2: और कुछ प्ले में भी मैंने अपने स्वर दिए हैं।
1: क्या बात है।
2: जी जी।
1: तो बात कविताओं की चली है और इधर आप बता रही थी कि आपके पतिदेव ने प्रपोज किया तो कोई प्रेम कविता उनके लिए लिखी है?
2: हाँ, उनके लिए दरअसल जिस समय हम कोर्टशिप में थे तो बड़ी सारी कविताएं खूब लिखी। जब आप प्रेम में होते हैं ना ममता जी, तो
1: शब्द फूटते हैं, बहुत
2: शब्द फूटते, ऐसे झरना फूट पड़ता है शब्दों का। और प्रकृति में प्रेम ही प्रेम नजर आता है, तितलियों में प्रेम, फूलों में प्रेम, हर जगह प्रेम नजर आता है, और जो संवेदनाएं थी वो शब्दों में अभिव्यक्त हो गई।
1: जी।
2: और उस समय तो खूब सारी कविताएं लिखी, बाद में जब वो कविताएं पढ़ती थी तो लगता था अरे क्या लिखा है, ऐसी अनगढ़ कविताएं हुआ करती थी।
1: जी जी।
2: लेकिन बाद में, और शरद जी पर तो मैंने खूब प्रेम कविताएं लिखी हैं। एक दफा
1: शरद जी, यानी आपके पतिदेव?
2: जी, जी जी, मेरे पतिदेव। एक बार जनवरी में हमारी शादी की सालगिरह होती है और वैलेंटाइन डे फरवरी में आता है, तो उस समय मैंने उनके लिए कविता लिखी थी कि संत वैलेंटाइन क्या सचमुच होते हैं? हाँ, देखा है मैंने।
1: क्या बात।
2: मेरी कमजोरियों को थामते, मेरी भावनाओं को तराशते, सत्य शिव और सुंदरम की शाश्वत अभिव्यक्ति, हाँ वही है मेरी बेटियों के पिता।
1: क्या बात है।
2: जी, इस तरह से एक पूरी कविता शरद जी को समर्पित की थी।
1: तो बात कविता की चली है और पतिदेव की चली है, तो मुझे लगता है कि पतिदेव के लिए कोई गाना बनता है यहाँ पर, कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
2: पहला गाना मैं जो सुनवाना चाहूंगी, चूंकि आपने बात पतिदेव की कही है, तो जिस समय शरद जी ने मुझे प्रपोज किया उस समय दरअसल कैसेट्स का जमाना था, है ना, तो कैसेट में बड़े गाने भर भर के दिए जाते
1: और
2: थे,
1: ऑर्डर देके भरवाते थे।
2: हाँ,
1: ये वाला गाना,
2: ऑर्डर लिस्ट होती थी एक छोटे से। हाँ। तो शरद जी ने जो मुझे पहली कैसेट दी थी, हाँ, और उसमें जो पहला गाना था वो था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो लगता है, तो वो गाना सुनवा दीजिए
1: जी।

0: आप सुना है कि सिंथेसाइजर भी बजाया करती थी, और श्रोताओं को बता दें कि ज्योति जी के पास गुणों का खजाना है, उनके गुणों की चर्चा हम करते रहेंगे पूरे प्रोग्राम में। तो सिंथेसाइजर वाली बात बताइए, कब कहाँ से सीखा और कहाँ से विचार आया?
1: नहीं, दरअसल जब भी मेरी बेटियां छोटी थी, शिखा चानी, दोनों जब बच्ची छोटी थी, तो पहले एक छोटा सा सिंथेसाइजर हुआ करता था, कुछ 1 फुट का होता था, वो बहुत
0: जी
1: बड़ा नहीं होता था, तो वो हमने बच्चों को ला करके दिया और बच्चे बजाते थे।
0: जी
1: मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी अच्छी धुनें निकाल लेती थी मन से, कहीं विधिवत सीखा नहीं,
0: जी
1: तो मैं भी थोड़ा बहुत उस पर अपना ऐसे हाथ आजमा लिया करती थी।
0: जी
1: बाद में बच्चियां बड़ी हुई, मैं भी थोड़ा सा फुर्सत पाई, तो बच्चों ने मदर्स डे पर एक बड़ा सारा सिंथेसाइजर ला के दिया। मुझे लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और

0: मुझे ये भी महसूस होता है कि जब तक जीवन है तब तक आप सीखना चाहें तो सीखते रह सकते हैं। सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई कमी नहीं है। तो मुझे चूंकि संगीत का शौक है तो मैंने उस सिंथेसाइजर पर धुनें निकालना शुरू की, और बगैर सीखे जो पसंदीदा गीत होते हैं तो वो मैंने उस पर अपने आप से निकालना शुरू किया,
1: जी
0: और इस तरह से दो दो चार चार लाइनें बजा लेती हूँ शौकिया।
1: जी तो ज्योति जी, सिंथेसाइजर की बातें हुई और अब आपके लेखन की दुनिया में हम छलांग लगाना चाहते हैं, फिर बीच
0: जी
1: बीच में यादों के गलियारों में भी सैर करवाते रहेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: बताइए कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली?
0: जी, लेखन की शुरुआत में कहूंगी कि जब मैं चौथी पांचवी या छठी क्लास में थी। हम लोग मंदसौर से हैं मूलतः, मेरा जन्म स्थान जो है वो मंदसौर है, मालवा का एक छोटा सा कस्बा है,
1: जी
0: इंदौर से करीब 4 घंटे का रास्ता होगा।
1: जी जी
0: तो चूंकि मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे
1: जी
0: और जिस जगह हम रहते थे वहां पर मेरी जो माँ है वो सबसे पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा महिला थी।
1: क्या बात है,
0: हाँ जी, तो
1: क्या काम
0: हमारे
1: करती थी?
0: मम्मी, मेरी माँ नर्स रही हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी। और मैं यहाँ आपको एक लगे हाथों तो एक बात और बता दूं कि मेरी माँ नर्स रही और उन्हें अपनी नर्सिंग सेवाओं के लिए आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों वो सम्मानित भी हुई
1: क्या
0: है।
1: बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चूंकि घर में वातावरण ऐसा था, बाऊजी भी साहित्य प्रेमी थे, तो हमारे घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और अखंड ज्योति, ये चार पत्रिकाएं मुझे ध्यान है नियमित आती थी।
1: जी
0: और उसके थोड़े समय बाद बाऊजी को लगा कि ये पढ़ने की शौकीन है, तो हमारे यहाँ बाऊजी खरीद कर चंदा मामा, चंपक, नंदन, पराग, ये चार, देवकी नंदन जी उस समय शायद पराग देखते थे, तो
1: जी
0: ये पत्रिकाएं हमारे यहाँ आई। तो मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट रही, लेकिन घर में साहित्यिक पत्रिकाएं आती थी तो मैं वो जरूर पढ़ती थी।
1: जी
0: मुझे याद है कि मालती जोशी की धारावाहिक कहानियां इस तरह से धर्मयुग में लगातार आती थी, और हम
1: साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपी
0: साप्ताहिक
1: थी
0: हिंदुस्तान
1: जी,
0: में, तो
1: बिल्कुल
0: हम, मतलब मैं पढ़ती और फिर वो वहां क्रमशः में आती तो उत्सुकता रहती थी कि आगे
1: आगे
0: क्या
1: क्या
0: हुआ।
1: होगा, क्या बात
0: तो
1: है।
0: मुझे लगता है लेखन का बीज वहां पढ़ने से शुरू हुआ, वहां ये बीज पड़ा और फिर धीरे धीरे और अधिक, जहां जिन घरों में मैंने देखा है वाचन संस्कृति होती, वाचिक परंपरा जहां है वहां पर लेखन का बीज पढ़ने की संभावनाएं रहती हैं।
1: जी
0: तो बस इस तरह से वो पुस्तकें पढ़ने के बाद, और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अखंड ज्योति जो पत्रिका थी, और उन दिनों सारिका भी लघु कथाएं छापने लगी थी, तो अखंड ज्योति में छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग आया करते थे, तो शायद उन प्रेरक प्रसंगों को पढ़ पढ़ करके मेरे अंदर कहीं लघु कथा का बीज पनपा,
1: जी
0: छोटा छोटा लिखना शुरू किया। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में आई तो हमारे गुरु थे श्रीराम ताम्रकर सर,
1: जी
0: तो जब उन्होंने मुझे एंकरिंग दिया कि उनको लगा कि इसके अंदर कुछ लेखन क्षमता है, तो उन्होंने कहा ज्योति एंकरिंग करोगी? मैंने कहा जी सर बिल्कुल करूंगी। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दे दिया, तो प्रोग्राम आपको प्रस्तुत करना है तो लिखना पड़ेगा,
1: जी जी
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वहां से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, दो दो लाइनें ऐसे तुकबंदी की, तो सर ने मुझे कविराज कहना शुरू कर दिया कि अरे, तो बस वो एक कच्चा कच्चे, एक्चुअली बोलते कि वो एक पगडंडी थी कच्ची, सड़क पे आने में देर थी, लेकिन वो पगडंडी पे वहां चलना शुरू कर दिया था, यात्रा वहां से शुरू हो गई थी।
1: जी,
0: जी
1: तो या वो जो यात्रा शुरू हुई और यात्रा का पड़ाव जो सड़क पर पहुंची पगडंडी से, तो सड़क वाली यात्रा को याद कीजिए और कोई कविता सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
0: मुझे लगता है कि शादी के बाद मैंने फिर, मुझे लगता है कि विधिवत वापस से लिखना शुरू किया।
1: एक संग्रह हमें याद आ रहा है, दुनिया काठ की,
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: क्या इस संग्रह से कोई कविता सुनाएंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपने दुनिया काटकी का जिक्र किया है,
1: हाँ
0: तो दुनिया काटकी का विचार ऐसे मन में आया
1: हाँ
0: कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि उनको चौखट से ठोकर लग गई
1: हाँ
0: और वो लड़खड़ा के गिरने को हुए, लेकिन तत्काल उन्होंने हाथ में पकड़ी लकड़ी से, छड़ी से संभाल लिया अपने आप को।
1: अच्छा
0: तो बस एक बिजली की तरह एक विचार को औंधा कि जिससे ठोकर लगी वो भी लकड़ी,
1: जी
0: और
1: जी
0: जिसने सहारा दिया, संभाला, वो भी लकड़ी।
1: क्या बात है
0: तो बस ऐसा लगा कि लकड़ी पर क्यों ना कुछ लिखा जाए।
1: जी।
0: तो जब यादों को टटोलने लगी, अपने शब्दों के संग्रह को, तो जब अभिव्यक्ति वो डायरी में आई पन्नों पर, तो मुझे लगा कि बचपन से लेकर के

0: जीवन के अंत तक लकड़ी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहती है।
1: सही बात है, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये दुनिया काठ की का अस्तित्व आया सबके सामने।
1: वो तो अंतिम संस्कार में भी लकड़ी
0: जी
1: का
0: जी
1: प्रयोग
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल।
1: तो जन्म से मृत्यु
0: हाँ
1: तक।
0: जी, मैं इसकी पहली कविता सुनाती हूँ पहले आपको,
1: जी।
0: जिसका शीर्षक है पलना। गर्भ में मुलायम तरल में बहता शिशु बाहर आते ही माँ की हथेलियों में आ जाता है।
1: क्या बात है,
0: जो तरल तो नहीं लेकिन ममत्व उसे मुलायम ही बनाता है।
1: वाह।
0: देखिए, क्योंकि गर्भ में एकदम तरल है और फिर वहां से हथेलियों में आता है, लेकिन हथेलियां भी मुलायम है। लेकिन चंद पलों बाद ही लकड़ी का पलना उस शिशु का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है
1: जी
0: अगले चंद माहों के लिए।
1: वाह।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है कि आने वाले जीवन की कठोरता से।
1: क्या बात है।
0: तरलता कोमलता के पश्चात कठोरता जन्म लेते ही पाठ पढ़ा देती है आने वाले जीवन की कठोरता से लड़ने की ताकत देने का।
1: वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया
0: लकड़ी का पलना ऐसा होता है।
1: जी,
0: जी
1: बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ एक गाना सुनते
0: जी
1: हैं, फिर हम आगे और बातें करते हैं। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: गीत तो देखिए मुझे बहुत सारे पसंद है, क्योंकि मुझे संगीत पसंद है, गीत पसंद है, गुनगुनाना अच्छा लगता है।
1: जी
0: मैं आपको बता दूं कि एक बार ताम्रकर सर ने मुझे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया था जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो किचन में रख के विविध भारती सुनना मेरा प्रिय शगल रहा
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: तो यहाँ पर मुझे दरअसल जिंदगी में मुझे लगता है सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, और वैसे भी मैं ब्लड ग्रुप से भी बी पॉजिटिव हूँ। तो मुझे हमराज का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनील दत्त साहब की मूवी थी, और गीत के बोल है न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो,
1: क्या बात है,
0: गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के
1: मुस्कुरा
0: जियो।
1: के जियो।
0: जी
1: हमराज
0: जी
1: फिल्म का ये गाना
0: हाँ जी
1: सुनते हैं।
0: जी

0: हमराज फिल्म के गाने के बाद हमें बताइए कि ये नजर बट्टू क्या है। वैसे हमें पता है कि कहानी संग्रह नजर बट्टू, भोरवेला और सेतु, और नजर बट्टू पर शोध भी किया गया ऐसा कहीं हमने सुना और पढ़ा है,
1: जी
0: तो इसके बारे में बताइए क्या फिलाडेल्फिया में इसी के लिए यही
1: नहीं
0: शामिल हुआ था?
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, फिलाडेल्फिया में जो मुझे सम्मान मिला था, मतलब मैं तो फिलाडेल्फिया नहीं गई, वहाँ की जो संस्था है वो वर्ष में एक बार भारत आती है और
0: अच्छा
1: विभिन्न शहरों में ये साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न काम करने वालों को, उनके समग्र साहित्य पर ये सम्मान प्रदान किया जाता है हिंदी में काम करने वालों के लिए। तो वो फिलाडेल्फिया वाला सम्मान अलग है, लेकिन नजर बट्टू की जहाँ तक बात है, तो ये मॉरिशस की एक शिक्षिका है, वो इंदौर आई थी एक कार्यक्रम में, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो अपने साथ मेरी कुछ 3-4 किताबें ले गई। जब मैं मॉरिशस गई तो वहाँ पर महात्मा गांधी हिंदी शोध संस्थान है, वहाँ पर वो पढ़ाती हैं। तो वहाँ की एक विद्यार्थी है श्रावणी बिहारी करके, उसने शोध प्रबंध लिखने के लिए उनसे कुछ विषय चाहे।
0: जी
1: तो जो मैम थी उन्होंने उन्हें मेरी नजर बट्टू किताब दी और कहा कि तुम इसे पढ़कर देखो और फिर बात करते हैं। जब उस विद्यार्थी ने वो नजर बट्टू किताब पढ़ी तो उसे मेरी जो कहानियां उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, अपना पूरा परिचय दिया और फिर ये जानना चाहा कि मैडम नजर बट्टू किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन नजर बट्टू का मतलब क्या है। तो मैंने उसे बताया कि नजर बट्टू यानी कि जो नजर से बचा है वो, तो जो नजर बट्टू होता है वो नींबू मिर्ची भी होते हैं जो कि कई बार बड़े बड़े ट्रकों पर लगे रहते हैं, है
0: बिल्कुल,
1: ना,
0: गाड़ियों में
1: तो
0: लगे रहते
1: गाड़ियों
0: हैं,
1: में।
0: स्कूटर
1: ये
0: बाइक
1: बात
0: पे।
1: अलग है कि उनसे ब्रेक नहीं
0: हाँ
1: लगता लेकिन एक
0: बिल्कुल,
1: आस्था होती है,
0: हाँ
1: इसलिए वो
0: हाँ
1: नजर बट्टू गाड़ी पर
0: हाँ
1: टंगाया
0: और
1: जाता है
0: खेतों
1: और
0: में किसान,
1: खेतों में
0: कृषक भाई भी
1: किसान।
0: लगाते हैं।
1: और जो एक और नजर बट्टू है वो है काले धागे। तो जो मेरी जो नजर बट्टू कहानी है, उस कहानी संग्रह की जो शीर्षक कहानी है नजर बट्टू, वो काले धागे और नींबू मिर्च की थीम को लेकर ही वो कहानी है
0: जी
1: और कुछ मार्मिक कहानी है और लोगों को, पाठकों को वो बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने नजर बट्टू की सारी कहानियों पर शोध प्रबंध किया। इस तरह मॉरिशस की जो विद्यार्थी है उसका शोध प्रबंध मेरी ये कहानी संग्रह नजर बट्टू पर संपन्न हुआ है।
0: और फिलाडेल्फिया में जो आपका संग्रह गया था जो शोध के लिए, वो क्या कहानी है उसके बारे में बताइए।
1: वो समस्त समग्र साहित्य पर मिला है वो सम्मान मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हिंदी में कार्य करने वालों को ही वो दिया जाता है वो सम्मान।
0: तो
1: जी
0: कैसे वहां जुड़ी आप?
1: मुझे ना ममता जी एक चीज लगती है कि कोई अगर मेरी किताब चाहता है तो मैं हमेशा अपनी किताबें देना पसंद करती हूँ।
0: और ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: किताबें तोहफे में देना,
1: हाँ
0: और सबको ये सीखना चाहिए
1: जी
0: कि बड़े बड़े गिफ्ट की बजाय किताब तोहफे में
1: हाँ
0: दें।
1: मैं यहाँ आपको एक चीज और बताती हूँ। जब किताबों की भेंट की बात चली है तो मेरी एक कविता संग्रह है माँ बेटी,

0: वो मैंने माँ बेटी, सिर्फ माँ और बेटी पर कविताएं हैं उसमें। इंदौर के कई प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी में वो पुस्तक बारातियों को तोहफे में दी।
1: क्या बात है।
0: हाँ जी, मतलब 100-100 किताबें बल्क में खरीद कर और
1: हाँ
0: ये किताबें भेंट दिए। तो किताबें भेंट देना मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह जब मैंने किसी को भेंट की और मुझे पता नहीं चला कि वो उनके किन रिश्तेदारों के माध्यम से वो किताब फिलाडेल्फिया पहुंच गई, और जब फिलाडेल्फिया पहुंची, 2 या 3 पुस्तकें थी कुल,
1: जी
0: फिर उनका मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। आजकल ये सुविधा बहुत हो गई, पहले तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मेरा पूरा परिचय मांगा, मेरी बाकी किताबों की जानकारी ली, कुछ गूगल से प्रोफाइल लिया उन्होंने, और फिर इस तरह उन्होंने समग्र साहित्य का अध्ययन करके और फिर वो पुरस्कार मुझे प्रदान किया।
1: क्या बात है,
0: जी
1: बहुत बहुत बधाई हो इस बात के लिए और
0: जी
1: बहुत बढ़िया।
0: धन्यवाद।
1: और बात कविता की चली है, माँ बेटी कविता संग्रह, तो उस संग्रह से कुछ लाइनें सुनाएंगी हमारे श्रोताओं को,
0: हाँ जी, वो जो काव्य संग्रह है उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है।
1: कहानी है।
0: जिस समय मैंने अपने उम्र के 50 वर्ष पूरे किए, बच्चों ने मेरे को, मुझे दोनों बेटियों ने बड़े सरप्राइजेस दिए कि 7 दिन तक मम्मा का बर्थडे मनाएंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, खूब सरप्राइज दिए। तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो मैंने माँ बेटी, चूंकि मेरी माँ भी है, माँ का आशीर्वाद भी है अभी, तो माँ और बेटी को लेकर के एक एक मैंने कविताएं रच दी। इस तरह से वो, चूंकि 50 साल की हुई थी, तो 50 कविताएं आ गई माँ बेटी में। उसकी कुछ कविताएं हमारे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटी की पत्रिका में वो कविताएं छपवाई हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी,
0: और एक डॉक्टर साहब है वहाँ, डॉक्टर मोड़, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में उन कविताओं के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के रिसेप्शन हॉल में लगवाए।
1: क्या बात है भाई,
0: हाँ जी,
1: वाह।
0: माँ कभी मंदिर नहीं जाती थी,
1: माँ कभी मंदिर नहीं
0: माँ
1: जाती
0: कभी
1: थी।
0: मंदिर नहीं जाती थी। बाद में समझ में आया कि उन्होंने घर को ही मंदिर बना रखा था, वो मंदिर जाती किसके लिए,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: क्योंकि उनके लिए उनका कर्म ही उनकी पूजा थी। नजर से बचाने को माँ ने बांध दिए हाथ पैरों में काले धागे, मगर माँ नहीं जानती थी कि ताकत काले धागों में नहीं, माँ के हाथों में है।
1: वाह क्या बात है।
0: जी
1: मेरे हिस्से का आकाश, जिसका जिक्र भी किया, जेब में भरकर सपने सारे और चुस्कियां, तो ये सारी कविता संग्रह
0: जी जी
1: हैं। इनकी इनका भी जिक्र कीजिए, क्या इनके पीछे भी कोई प्रेरणा है, कोई कहानी
0: नहीं,
1: है, और कितने
0: दरअसल
1: कविता संग्रह आए ये भी बताइए।
0: हाँ, मेरे 5 कविता संग्रह आए हैं। लोगों के लेखन की अलग अलग शैली होती है।
1: जी।
0: तो पहले तो मेरे हिस्से का आकाश कविता संग्रह की बात करूं, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि हर स्त्री को अपना अस्तित्व, अपना आत्मबल बनाए रखना चाहिए। ठीक है, बेशक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन स्त्रियों का अपना अस्तित्व है। स्त्रियों ने अपनी बेटियों को उनके बेटी होने के गर्व के साथ परवरिश देना चाहिए।
1: जी।
0: मुझे हमेशा अपने स्त्री होने पर गर्व रहा, और मुझे लगता है कि अपने हिस्से का आकाश तो हमें ले ही लेना चाहिए। कोई कहता है एक मुट्ठी आसमान, भाई एक मुट्ठी आसमान क्यों, हमारे हिस्से का जितना आकाश है
1: सारा
0: पूरा
1: आकाश,
0: दीजिए
1: क्या
0: ना,
1: बात
0: है
1: है।
0: ना, सारा आकाश।
1: हाँ।
0: तो मेरे हिस्से का आकाश ये कविता संग्रह था। मुझे लगता है कि अमूमन जो स्त्रियों की स्थिति है
1: जी।
0: वो कैसी है, तो उसकी एक कविता है जाल,
1: जी।
0: शीर्षक है जाल। मैं चहचहाती थी, मैं मुखर थी,
1: क्या बात है।
0: उसने कहा तुम वाचाल हो। मैं चुप रही, कुछ ना बोली, उसने कहा गुन्नी हो।
1: ओ।
0: मैंने तिनका तिनका जोड़कर घर सजाना चाहा, उसने कहा खर्चीली हो। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा निकम्मी हो।
1: ओहो।
0: मैंने धरती चाही, उसने पिंजरा बना दिया। मैंने आकाश चाहा, उसने जाल बुन दिया।
1: क्या बात है,
0: तो क्या मेरा कुछ नहीं, तो क्या
1: मेरा
0: मेरा
1: कुछ
0: कुछ
1: नहीं।
0: नहीं,
1: जी।
0: उसने उदारता दिखाई और मुझे क्षितिज दे दिया, कहा
1: वाह।
0: जा पूरा क्षितिज तेरा, जो दिखाई तो दिया मगर हाथ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। तो हम जरा विराम देते हैं
0: जी,
1: बातचीत को और एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं।
0: सोनू निगम का जो अग्निपथ वाला गाना है,
1: हाँ।

0: तो शरद जी की आपके लेखन की दुनिया में क्या भूमिका रही है?
1: शरद जी से भी जब कोई ये सवाल करते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई मेरी भूमिका कुछ नहीं रही है, और इतनी भी नहीं है कि मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता हूँ, वो लिखा हुआ भी नहीं पढ़ते हैं, टीका टिप्पणी भी नहीं, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में कुछ आता है तो वो जरूर पढ़ते हैं, और कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है और ऐसा सब। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कुछ करने के लिए उनकी इजाजत लेना पड़ती है, मैं अपने कार्य करती हूँ, है ना, उनका अपना फील्ड अलग है, मेरा अलग है, लेकिन कभी उन्होंने किसी प्रकार की रोक ऐसी नहीं लगाई कि नहीं ये नहीं करो ये नहीं करो। और लेखन चूंकि मैं मुझे प्रिय रहा है और लेखन के लिए मैं हमेशा अपने आप को तैयार पाती हूँ, उनकी भूमिका इसलिए भी बहुत ज्यादा नहीं होती,
0: कि उनके
1: मेरा जो
0: अपने
1: लेखन का वक्त है वो दोपहर का है,
0: अच्छा जी
1: कभी कभी सुबह भी होता है, ये कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा।

0: कि अरे लेखन के लिए मुझे एकांत चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज आई कि मुझे ये लिखना है, तो अपने किचन में मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है, वो फिक्स है।
1: बढ़िया।
0: कभी कभी काम करते करते कोई विचार आया
1: तो नोट कर
0: तो
1: लेते।
0: आटा गूंद रहे हैं और फटाक से हाथ धोए और पहले उसके चार बिंदु लिख लिए
1: वाह क्या बात है।
0: जी, और फिर उसको विस्तार दे देती हूँ। क्योंकि कई बार कोई बिंदु आपके दिमाग में आता है, वो छिटक जाता है कई बार, तो वो लिख लेती हूँ। तो मुझे ये शिकायत कभी नहीं रही कि अरे मुझे
1: लिखने का वक्त नहीं
0: एकांत
1: मिलता।
0: नहीं मिला या लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त तो चुराना पड़ता है किसी भी काम के लिए, और वो वक्त चुराने में मुझे लगता है कि मैं माहिर हूँ, चुरा लेती
1: जी तो ये
0: हूँ
1: बहुत बढ़िया बात है।
0: जी
1: तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है कैसे शुरू हुई और कहाँ मुलाकात हुई वो एक दृश्य भी बताती चलिए।
0: मुलाकात हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, वो डॉक्टर थी। अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उनके उनके यहाँ मिले। उस वक्त मैं पढ़ रही थी, बीए कर रही थी, और शरद जी भी वहाँ आए अपने मित्र के साथ। तो बाद में उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मुझे तो ना इस लड़की से शादी करनी है, ये जो
1: अरे
0: येलो फ्रॉक वाली लड़की से। फिर उसके बाद हम काफ़ी समय तक नहीं मिले, लेकिन फिर इनकी एक और मित्र है, उनकी पत्नी के पड़ोस में हम रहने चले गए किराए
1: जी
0: से। तो जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने जाके पीसीओ से, वो एसटीडी पीसीओ होते थे उस समय, वहां से इनको फोन किया कि अरे आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो हमारे घर के बाजू में रहने आई है। तो शरद जी वहां आ गए
1: हाँ
0: और हमारी दो चार मुलाकातें हुई। तब तक मुझे इस चीज का
1: अंदाजा नहीं था।
0: अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इनके मन में है। फिर लेकिन इन्होंने होली वाले दिन जो है वो प्रपोज कर दिया,
1: होली के दिन।
0: होली के दिन प्रपोज किया। रंगे पूते थे बिल्कुल,
1: हाँ
0: और पहले उस समय ग्रीन और पिंक कलर चला करता था, उसमें रंगे हुए थे। लेकिन
1: हाँ
0: तो मैं थोड़ा सा चौंक गई कि अरे एकदम अप्रत्याशित था वो। तो उस समय तो मैंने, और मेरी चूंकि एग्जाम चल रही थी तो मुझे पूरा ध्यान उधर देना था, लेकिन पता नहीं फिर कुछ मेरे मन में भी कुछ तो अंकुरित हुआ होगा। तो फिर फाइनली हम लगभग 1 महीने के बाद में मेरी रजामंदी रही है।
1: ज्योति जी एक बार फिर हम आपके लेखन की दुनिया में लौटते
0: जी
1: हैं। आपकी जहाँ तक मुझे जानकारी है 17 किताबें हैं
0: जी
1: और बहुत सारी किताबों को पुरस्कृत किया गया।
0: जी
1: मध्य प्रदेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
0: जी
1: शब्द साधिका सम्मान से आपको
0: जी
1: सम्मानित किया गया।
0: जी
1: किस कृति के लिए मिला और वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका?
0: ये जो साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मुझे मिला है, ये मेरी पुस्तक यात्राओं का इंद्रधनुष के लिए मिला। इसमें मेरे सारे यात्राओं के वर्णन हैं,
1: जी
0: और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अखिल भारतीय पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान
1: गौरव
0: की
1: की
0: बात
1: बात है।
0: थी, गौरव
1: बिल्कुल।
0: की बात थी। यात्राओं के वृतांत का चलन अंग्रेजी में बहुत है, हिंदी में बहुत कम है।
1: जी
0: वो किताब जब चयनित हुई तो मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। हमको जब भी मैं यात्राएं करती हूँ तो आने के बाद में सब थक के सो जाते हैं, लेकिन मेरी आदत चूंकि सुबह जल्दी उठने की है तो 5 बजे नींद खुलती है और मैं डायरी लेके पिछले दिन की तमाम बातें नोट कर लेती हूँ।
1: बढ़िया।
0: तो जब हम यात्रा वृतांत लिखने लगते हैं तो वो सारी चीजें काम आती हैं। तो मैं जब भी बाहर से आती हूँ सारे यात्राओं के वृतांत लिखती हूँ। तो जब बात पहाड़ों की हो रही थी तो जितने भी कठिन यात्राएं हैं हम कर चुके हैं,
1: जी।
0: जिसमें सिक्किम के, लेह लद्दाख के, ये सब तो थे ही। इसके अलावा जो हमारी प्रमुख यात्रा है वो है कैलाश मानसरोवर की। वो अद्भुत यात्रा है। कैलाश मानसरोवर तो है ही, कैलाश पर्वत में एक चुंबकीय आकर्षण है। मुझे लगता है वो हमको अपनी ओर खींचता है। जब हम 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जब कैलाश के चरण स्पर्श को जाते हैं,
1: जी
0: तो मेरा अनुभव तो ये था कि मैं वहां से लौटना ही नहीं चाहती थी।
1: वाह क्या बात है।
0: और मुझे मालूम नहीं ये आस्था है क्या है, कुछ तो स्पिरिचुअल है। और वहां मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये भाव वहां पर आते हैं। और कठिन यात्राओं में 2 बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया है, क्योंकि मुझे मछलियों की तरह तैरना अच्छा लगता है।
1: कहाँ पर की है स्कूबा डाइविंग?
0: स्कूबा डाइविंग मैंने एक तो मालवण में की है और दूसरा स्कूबा डाइविंग मैंने किया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप वाला थोड़ा गहरे पानी में किया है, पर वो भी अद्भुत अनुभव रहा।
1: जी
0: और इसी तरह मैं

0: हवाई जहाज से कूदी मारी, स्काई डाइविंग हमने की दुबई में,
1: हाँ
0: और उसमें भी जो चिड़ियाओं की तरह उड़ने वाला था वो पैरासेलिंग और स्काई डाइविंग से पूरा हो गया सपना।
1: हाँ तो चलिए इस खुशी के नाम एक गाना सुनते हैं।
0: शान की आवाज में हम एक गाना सुन लेते हैं, चांद सिफारिश जो करता हमारी।

0: इस गाने के बाद अब आपके एक और हुनर की बात हमें याद आ रही है, वो है कला, मांडना आर्ट,
1: जी
0: जिसमें भी आप माहिर हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कहाँ से इसका बीज पड़ा आपके मन में?
1: तो दरअसल मेरा बचपन जहाँ बीता वहाँ पर बाड़ा होता था, एक गुआड़ी बोलते थे उसको मालवा में।
0: जी।
1: तो 16-17 घर थे और हर घर के आगे एक कच्चा ओटला हुआ करता था। वो ओटले का बनावट ऐसी होती थी, चौकोर होता था वो, हर घर के आगे एक ओटला। तो ओटला कैसा होता था कि वो पीली मिट्टी और गोबर से लीप के उसको बनाया जाता था।
0: जी जी
1: एक छोटा सा, समझ लीजिए, सिर्फ एक एक सीढ़ी ऊंचा होता था वो। तो जब उस पर पीली मिट्टी और गोबर का लेप हो जाता था तो बिल्कुल प्लेन होता। और चूंकि मालवा की संस्कृति है मांडना, तो उस पर गेरू और खड़िया यानी सफेद और लाल रंग से डिजाइन बनाई जाती थी।
0: जी
1: वो जो पुरानी परंपराएं हैं वही डिजाइन होती थी। तो ये हमने हमारी दादी से, बुआ से, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से, चाची भाभी, पहले तो ये रिश्ते होते थे ना, आंटी अंकल तो होते नहीं थे, तो कोई
0: काकी
1: भाभी,
0: चाची
1: चाची,
0: होती थी,
1: काकी, मामी, बुआ जी,
0: दादी
1: मामी
0: नानी।
1: जी, ऐसे होता था। तो वो लोग, चूंकि माँ नौकरी करती थी, तो जब सब महिलाएं मांडने बनाती थी तो चूंकि माँ नहीं है तो चलो भाई माँ की बेटी को पकड़ो, है ना। तो मुझे कहते चलो गुड्डी, गुड्डी मेरा बचपन का नाम था, गुड्डी चलो आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मांडनो बनाई ले। मालवी बोली में बोलते थे हमारे, आ जा तू भी। तो मैं अपना खेरू गड़िया एक कटोरी में लेके बैठ जाती थी, खड़िया, और उनके देखा देखी कुछ कुछ टिपकी लगा के गोला बनाया, ऐसे करके मैंने शुरू किया। तो बीज जो था वो वहां पड़ गया। फिर वो बनाती रही, फिर शादी होकर आए तो रंगोली बनाना घर में, घर के आगे ऐसे सब। उन दिनों हमारे यहाँ फर्नीचर का काम चल रहा था, तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े थे। चूंकि मांडना प्रेम था और मेरा कॉलेज में बीए में मेरा एक सब्जेक्ट पेंटिंग था,
0: जी जी
1: तो हाथ चलते थे, ब्रश चलता था, तो मैंने उसको टेराकोटा से पेंट करके और उस पर रेड व्हाइट कलर से अपना बना दिया, मरून कलर से उसको पोत लिया और व्हाइट कलर से उस पर डिजाइन बना ली, कुछ मिरर चिपका दिए छोटे छोटे ऐसे करके। तो मेरी जो छोटी बेटी है चानी, उससे बोला मम्मी बहुत सुंदर बना है, आप थोड़े ज्यादा बनाओ ना, अपन एग्जीबिशन करते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी। तो वो क्या है, थोड़ा बिजनेस फैमिली वाली है ना, तो चूंकि शरद
0: तो
1: जी बिजनेस में, तो उसके भी दिमाग में बिजनेस के आइडियाज आते रहते हैं। तो उसने बोला मम्मी एग्जीबिशन करते हैं। तो मैंने जो पहले जो मांडने बनाए वो करीब 300 के करीब मांडने बनाए मैंने,
0: वाह, क्या बात है।
1: वो फिर लकड़ियां प्लाई लिया ऐसे करके।

0: हूँ, हिंदी ही मेरा विषय रहा है, लेकिन जिस परिवेश में आप रहते हैं, जहाँ बोलियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि बोलियाँ बचाना भी बोलियों वालों का दायित्व है।
1: जी जी
0: तो चूंकि मैं मालवा से हूँ, तो मैंने एक पुस्तक मेरी मालवी बोली में मैंने निकाली है, तो एक लघु कथा संग्रह वो है, और मेरा जो पांचवा लघु कथा संग्रह है वो मेरे ख्याल से अगले महीने मेरे हाथ में आ जाएगा,
1: अच्छा
0: जो षष्ठी पूर्ति के नाम से आ रहा है, क्योंकि जब मैं मुझे लगा 60 बरस हुए, तो 60 बरस में 60 लघु कथाएं तो होनी चाहिए,
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: काफी
1: भाई,
0: समय से
1: वाह।
0: लिख रही थी, और इस तरह से वो तो मेरे कुल जमा भी 5 लघु कथा संग्रह है।
1: बढ़िया।
0: तो मैं, आप कहें तो एक लघु कथा यहाँ पर सुनाऊं मैं।
1: जी
0: दरअसल लघु कथा का शीर्षक है ढक्कन।
1: जी
0: ढक्कन। विष्णु जी और सरला जी दोनों ही उस सुबह अपने दैनंदिनी कार्यों में व्यस्त थे। जीवन की सांध्य बेला में भी उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे। विष्णु जी दिन भर में 5-10 दफा कोस लेते थे। उस दिन सुबह भी शहद की बरनी का ढक्कन खोलने का निरर्थक प्रयास करते हुए बड़बड़ा रहे थे। इस उम्र में आकर भी अकेलापन।
1: जी
0: अकेलापन कहाँ, उनसे 2 ही बरस छोटी सरला जी ने उनके हाथ से बरनी लेते हुए हंसकर कहा, मैं इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती आपको, अनजान मत बनो, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों की परवरिश, उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी क्या इसी दिन के लिए? उनके स्वर में नाराजगी थी। सरला जी ने मन ही मन सोचा, क्या सारी गलती बच्चों की ही है, क्योंकि वे अपने पति का स्वभाव भी जानती थी। लेकिन प्रत्यक्ष में बोली, यह लीजिए, पतले कपड़े की सहायता से ढक्कन खुल गया है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार थोड़ा ढीला छोड़ना होगा ढक्कन को भी और रिश्तों को भी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो एक मुकम्मल लघु कथा आपने
0: हाँ,
1: सुनाई,
0: लघु
1: और
0: कथा की विशेषता ही यह है
1: हाँ
0: कि उसके
1: जी
0: अंत में एक पंच होता है,
1: जी जी बहुत
0: और वो
1: बढ़िया
0: पंच जो है वो पूरी लघु कथा का सार होता है।
1: जी।
0: जी
1: ज्योति जी, लेखन की दुनिया में
0: जी
1: बहुत तरह के बदलाव आए हैं,
0: जी
1: लेकिन स्त्री लेखन आज कहाँ पर है? स्त्री लेखन में किस तरह के बदलाव आप महसूस करती हैं? किस तरह की चुनौतियां आज अभी भी कायम है?
0: चुनौतियां तो हैं।
1: जी
0: जब हम पुरुष प्रधान समाज में हैं, तो चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन स्त्री लेखन में एक जो बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है, वो है खुलापन अधिक हो गया है। मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ,
1: जी
0: क्योंकि मैं मालती जोशी की कहानियों को पढ़कर बड़ी हुई हूँ।
1: जी जी
0: उनकी कहानियों की नायिका स्वाभिमानी होती थी, लेकिन उनके लेखन में खुलापन कभी नहीं रहा। उनकी नायिकाएं दबी कुचली नहीं होती थी,
1: जी
0: उनकी नायिकाएं षड्यंत्रकारी भी नहीं होती थी, लेकिन अब खुलापन भी आ गया है, और महिलाओं को षड्यंत्रकारी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कई जगह।
1: जी
0: मुझे लगता है वो आवश्यक नहीं है। कई बार मुझे कुछ लेखिकाएं कहती भी हैं कि तुम्हारे लेखन में इतनी सात्विकता की क्या जरूरत है, मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ,
1: जी
0: और उससे मुझे सुख मिलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप लेखन कर रहे हैं, उससे आप सुख मिलता है और संतुष्ट हैं, तब तो आपका लेखन सार्थक है।
1: जी
0: तो बदलाव आया है। दूसरा ये कि कई बार ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी कि महिलाओं को, महिला लेखिकाओं को, मतलब संघर्ष अधिक करना पड़ता है,
1: जी
0: एक मुकम्मल स्थान उनको कई बार वो नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम अपना लेखन ईमानदारी पूर्वक करते रहें
1: जी बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: और अपने प्रयासों को जारी रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना स्थान बनाने से कोई रोक सकेगा।
1: बिल्कुल। हमें ये बताइए कि इतनी सारी किताबें हैं, तकरीबन 17 किताबें आपकी आ गई हैं,
0: जी
1: तो आपके मुख्य मूल रूप से विषय कहाँ से उठाती हैं, कौन से विषय होते हैं?
0: विषय आसमान से नहीं आते, है ना, विषय हमारे चारों तरफ होते हैं। मैं यहाँ इसको ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि देखते तो सभी हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने की और फिर अभिव्यक्ति की जो ताकत है, वो मैं मानती हूँ कि वो ईश्वर प्रदत्त है, जिसे लोग गॉड गिफ्ट कहते हैं। एक अखबार में खबर आई थी, एक बच्चे को, कोई शिशु था, वो झाड़ी में फेंक के कोई चला गया, नवजात शिशु।
1: जी
0: अब नवजात

0: शिशु झाड़ी में फेंक के गया तो पता चला कि वो तो लड़का है। तो एक कोई अम्मा ने बोला, अरे लड़क छोरो फेंक गई, छोरी होती तो बात थी। मतलब देखिए समाज की मानसिकता कैसी है कि अगर लड़की को फेंक दिया होता तो बात समझ में आती, लड़के को क्यों
1: क्यों
0: फेंका।
1: फीका।
0: तो ये बीज हो गया। अब इसको विस्तार दे करके कथा का रूप हो गया। एक बार मैं अपने एक्टिवा पे जा रही थी और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, तो मैंने बोला कि भाई रेड लाइट है, तो मैंने ऐसे इशारा किया कि ऊपर से निकल जा। हाँ ऊपर
1: अच्छा
0: से निकल जा भाई, तेरे को
1: हाँ
0: जल्दी।
1: जल्दी है तो।
0: लेकिन वहां उस उन 39 सेकेंड में खड़े खड़े दिमाग में आया, तो मैंने जाकर के एक व्यंग लिखा कि हवाई जहाज में चढ़कर हम जाएंगे दफ्तर,
1: क्या बात
0: है ना।
1: है।
0: तो इस तरह से विषय कब आ जाते। और इन सब विषयों के साथ साथ जनरली सामान्यतः लोग बोलते हैं कि राजनीति महिलाओं का विषय नहीं है, राजनीति पर महिलाएं नहीं लिखती। मन्नू भंडारी जी की महाभोज की हम बात करें तो बहुत कम है जिन्होंने, महिलाओं ने राजनीति पर लिखा है। तो मेरा एक उपन्यास है पार्थ तुम्हें जीना होगा, वो पूरा राजनीति पर है उपन्यास। और उसकी नींव ही पड़ी कि मुझे, मैं उन दिनों राजनीतिक परिदृश्य से बहुत विचलित थी और मुझे लगता था कि ऐसा कोई युवा और ईमानदार नेता होना चाहिए जिस पर जनता भरोसा करे, जो ईमानदार है, युवा है और अपने कार्य के प्रति समर्पित है।
1: जी।
0: तो वो अर्जुन के रूप में मेरे सम्मुख आकर के खड़ा हो गया। तो मैंने बस उसके बिंदु लिखे कि ये उपन्यास मुझे लिखना है, और वो मैंने लिखा। और हमारे आसपास जो सामाजिक विसंगतियां होती हैं
1: जी
0: वो आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं।
1: जी जी
0: और माँ के लिए ही बस दो लाइनें कहूंगी कि गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी,
1: वाह।
0: गरीबी में भी उसने कभी मेरी फ्रॉक नहीं फटने दी, संस्कारों का धागा जो था माँ के पास।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। अब चलते चलते कोई एक कविता और सुनाना चाहेंगी?
0: मैं अंतिम, इसकी अंतिम तो नहीं, अंतिम से एक पहले वाली
1: कविता
0: कविता
1: सुना
0: सुनाती
1: सकते
0: हूँ।
1: हैं।
0: उसका शीर्षक है अर्थी। पूर्ण हुआ है जीवन अब तो, विदा की बेला आई है, बांसों का ताना बाना बुन अर्थी आज सजाई है, जीते जी जो मिल ना पाए कांधे सारे आज मिले हैं, चला चली की इस बेला में किसी से भी ना शिकवे गिले हैं, जीवन भर जो इर्द गिर्द रही उसी काष्ठ की अर्थी सजी है, नया जन्म पाने को ही तो आत्मा ने यह देह तजी है। इसका शीर्षक है खिड़की। यह भी कविता है दुनिया काठ की किताब से ली है।
1: जी
0: वह लकड़ी की खिड़की शीशा भी नहीं है जिसमें, जब खुलती है तो भीतर आ जाते हैं सपने, हवा के साथ कभी कभी ले आती है मोगरे की सुगंध भी, और जब रहती है बंद तब भी रात में निकला चांद महसूस कर लेते हैं सपने सारे।
1: क्या बात है, बढ़िया कविता। बहुत ही दिलचस्प बातें आपने साझा की ज्योति जी,
0: जी
1: आपका
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मुझे
1: नमस्कार।
0: भी आपसे मिलकर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे लेखिका ज्योति जैन से ममता सिंह की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग मिला योगिता जाधव से, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के मेहमान कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा, पिटारा।

सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार।

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राज्य में डीजीपी की नियुक्ति मामले में अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट न मिलने की बात कहे जाने पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर तय की है। राज्य में स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 30 दिनों में राज्य के 36 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रांची के रिम्स और जमशेदपुर के एमजीएम जांच की विशेष सुविधा उपलब्ध है। रांची में कल महिला किसान खुशहाली योजना के अंतर्गत स्टेट लेवल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कार्यशाला दिन के 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें महिला किसानों की प्रगति और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर मंथन किया जाएगा। गिरिडीह के सवेरा सिनेमा हॉल में 4 से 6 सितंबर तक अखिल भारतीय नाट्य और नृत्य प्रतियोगिता द रंग राजन मेमोरियल महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव में झारखंड और बिहार समेत देश के 15 राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बंदनी गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एक घर की दीवार ढहने से मलबे में दबकर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार गंभीर हालत में उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और पलामू जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जल जमाव को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर कक्षा केजी से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल कल तक बंद कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इंसान के तमाम चेहरों में बस वही एक पहचाना सा चेहरा चारों ओर दिखाई देता है। जे चाहता है बस उसी का दामन थाम जिंदगी की राहों पर चलते रहें और जिंदगी का ये सफर कभी खत्म न हो।

किसे पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझीदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नरमो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा, कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं पता था दो दिलों का, दो मौसम का, दो शहरों का चांद एक ही होगा।

0: चांद के पार चल।
1: कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था। राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट जाता है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झड़ जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर। लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन जंगल सी हो जाती है।

जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहां छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। चर्चा होगी खेतों को परती न छोड़े किसान, साथ ही चर्चा में सुनिएगा कम पूंजी में सागों की खेती। वार्ता आप सुनेंगे पारंपरिक खेती का तात्पर्य। वार्ताकार हैं संध्या चंद्रा। कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा शाम 6:30 से। चर्चा होगी महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र, आज की बात में दीदी बाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। वार्ता आप सुनेंगे मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण। विपहेट वार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी पलामू से भेंट करता है संतोष कुमार। आज का मौसम, आज का बाजार भाव और आज की नसीहत में आप सुनेंगे प्राकृतिक खेती। शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता स्वस्थ पोषण खुशहाल जीवन। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार फिजिशियन पलामू। भेंट करता है संतोष कुमार।

शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेज़ी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागिनी कुमारी का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: बहनों, घर आंगन कार्यक्रम में हम आज सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को क्या लाभ है। स्वयं सहायता समूह बहनों ऐसे छोटे छोटे समूह होते हैं जिनमें महिलाएं नियमित रूप से बचत करती हैं, आपस में सहयोग करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर कम ब्याज पर ऋण भी प्राप्त करती हैं। इससे वे छोटे व्यवसाय शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकती हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं सिलाई बुनाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, लाख उत्पादन, हस्तशिल्प और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। इससे उनके परिवार की आय बढ़ती है और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: बहनों, स्वयं सहायता समूह महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति भी विकसित करते हैं। आज अनेक महिलाएं अपने गांव और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को बहुत सारे लाभ भी हैं, जैसे महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, नियमित बचत की आदत बनती है और आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है, कम ब्याज पर ऋण मिलने से साहूकारों पर निर्भरता कम होती है, छोटे छोटे स्वरोजगार शुरू करने और आय बढ़ाने का अवसर भी मिलता है, सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और अनुदान की जानकारी और लाभ आसानी से मिलते हैं, महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त होता है जिससे रोजगार के नए अवसर मिलते हैं और परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी और सम्मान भी बढ़ता है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है।
0: समूह के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे की सहायता और समस्याओं का समाधान मिलकर करती हैं। सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता बढ़ती है, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की जानकारी और उपयोग बढ़ता है, गांव में महिलाओं की सामाजिक पहचान और सम्मान में वृद्धि होती है, महिलाओं में समय प्रबंधन और कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, समूह के माध्यम से बाजार तक पहुंच आसान होती है जिससे उत्पादों की बेहतर बिक्री होती है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं जिससे पलायन कम हो सकता है, महिलाएँ ग्राम सभा और पंचायत की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने लगती हैं, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे कार्यों में समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफल महिला उद्यमियों से प्रेरणा लेकर अन्य महिलाएं भी नए व्यवसाय शुरू करने का साहस जुटाती हैं, परिवार का जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, महिलाओं में कानूनी अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है, समूह के माध्यम से सामूहिक खरीद और बिक्री करने से लागत कम होती है और लाभ बढ़ सकता है, महिलाओं में संचार कौशल और व्यक्तित्व का विकास होता है, समाज में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत पहचान बनती है। हम बातें कर रहे थे स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को लाभ की। आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

जिला पलामू सत्र न्यायालय डाल्टनगंज से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे वकील के रूप में प्रैक्टिस करती हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों से जुड़ी कानूनी मामलों पर कार्य कर रही हूँ। आज आकाशवाणी दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम कानूनी जागरूकता जाने महिलाओं से संबंधित कानून में मैं आप सभी को आपके अधिकारों, उपलब्ध कानूनी उपायों और न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में जानकारी दूंगी। हमारा उद्देश्य है कि हम हर नागरिक, विशेषकर महिलाओं, अपने अधिकारों को समझें, कानूनी सहायता का सही उपयोग करें और उसके अन्याय के विरुद्ध आत्मविश्वास के साथ आगे देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज मैं आप सभी के सामने महिलाओं से संबंधित कानूनी जागरूकता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हमारा संविधान हर महिला को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। फिर भी आज कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होने के कारण अन्याय और शोषण का शिकार बन जाती हैं। बहनों, महिलाएं समाज की आधारशिला हैं। एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में वे परिवार और समाज को मजबूत बनाती हैं। ऐसे में कानूनी जागरूकता सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि घरेलू हिंसा, दहेज, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध के खिलाफ हमारे देश में सख्त कानून बने हुए हैं। अगर कोई महिला हिंसा का शिकार होती हैं तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं, महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती हैं और न्यायालय की शरण ले सकती हैं। एक समय था जब महिलाओं की आवाज़ घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। आज की नारी अब सिर्फ सहन नहीं करती है बल्कि अपने अधिकारों को पहचानती है और उनके लिए खड़ी रहती है। परंतु यह शक्ति तभी आती है जब हमें अपने कानूनों की जानकारी होती है। आज बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए अन्याय सहती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन बहनों, मुझे आपसे पूछना है कि अगर आप चुप रहेंगी तो न्याय कौन मांगेगा? सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कई सुरक्षा कानून बनाए हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक हमें इनकी जानकारी नहीं होगी तब तक ये कानून सिर्फ कागजों में बने रह जाएंगे। बहनों, हम सब मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, परिवार को जोड़ कर रखती हैं, लेकिन कई बार हमारे समाज में हमारे साथ गलत होता रहता है। कभी घर में मारपीट, कभी दहेज की मांग, कभी गाली गलौज, कभी जमीन या संपत्ति में हिस्सा न देना, कभी बाहर किसी का छेड़ना या साइबर क्राइम द्वारा परेशान करना। याद रखिए, यह सब अपराध है और इसके खिलाफ हमारे देश में कानून बनाए गए हैं। हमारे संविधान ने हमें कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, शिक्षा और रोजगार का अधिकार। अगर किसी महिला को उसके घर में मारा पीटा जाए, तंग किया जाए तो वह 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, 112 पुलिस नंबर या नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। कानून कहता है दहेज मांगना अपराध है, घरेलू हिंसा अपराध है, किसी महिला को सड़क या खेत में छेड़ना अपराध है, मोबाइल पर धोखा देना अपराध है, मोबाइल पर किसी का वीडियो गलत तरीके से वायरल करना अपराध है। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विधवा पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना। अर्थात मैं यह कहना चाहूँगी, जागरूक महिला ही सशक्त महिला है और सशक्त महिला ही परिवार और समाज को बदल सकती है। श्रोताओं, मैं आपको आज कानूनी तरीके को कैसे अपने जीवन में अमल लाएं और उसके क्या क्या तरीका है ये बताना चाहूंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम की। घरेलू हिंसा अधिनियम केवल शारीरिक हिंसा नहीं है बल्कि मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, भावनात्मक अत्याचार और सामाजिक अपमान, इन सभी को अपराध की श्रेणी में ही माना जाता है। इस कानून के तहत महिला को पति या ससुराल से होने वाले हिंसा को रोकने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसे प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं। महिला को उसके घर में रहने का अधिकार दिया जाता है, जिसे रेसिडेंस ऑर्डर कहते हैं। महिला और बच्चों के लिए खर्च के लिए प्रावधान है, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं। काउंसिलिंग और शेल्टर होम की भी सुविधा है। यदि किसी महिला को घर में किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़े तो वह महिला हेल्पलाइन 181 में कॉल कर सकती हैं, अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहती हैं सूचना को गुप्त रखकर आपके काम को आगे बढ़ाया जाए तो वहाँ पे ये भी होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आपसे तुरंत संपर्क करते हैं, थाना में भी आप कॉल कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करके उसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं। दूसरा बड़ा कानून है दहेज निषेध अधिनियम। भारत में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही एक गंभीर

0: अपराध है। अगर किसी महिला पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाए, शादी टूटने की धमकी दी जाए, तो वह कानून का मदद ले सकती है। इस कानून में कैद, भारी जुर्माना और दहेज की वस्तुओं का वापस मिलना सब शामिल होता है। महिला को यह जानना चाहिए कि दहेज मांगना शुरू से ही अपराध है, चाहे वह शादी में हो या शादी के बाद हो। 498A IPC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पति या ससुराल द्वारा क्रूरता के अंतर्गत इस सेक्शन में काम होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जिसमें महिला को मारपीट, दहेज की मांग, मानसिक उत्पीड़न या आत्महत्या के लिए मजबूर करना, इसके अंतर्गत आता है। इस धारा के तहत आप FIR दर्ज करा सकती हैं। यह कठोर दंडनीय अपराध है जिसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पॉश एक्ट, ये 2013 में आया है। महिलाएं अक्सर गांव में या शहर में अपने घर की जीविका चलाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, दो चार पैसे कमाती हैं ताकि उनके घर को, उनके बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। मगर जब कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ही होने लगे, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें होने लगे, गंदे इशारे करने लगे वहां के अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी, इशारों भरी बातें करने लगे, उनके गंदी संदी फोटो भेजने लगे, तो वहां का माहौल असुरक्षित हो जाता है। इन सभी की शिकायत के लिए महिला को शिकायत दर्ज करना चाहिए, जो 3 महीने के अंदर कर लेना चाहिए, और शिकायत मिलने पर संस्था को 90 दिनों में जांच पूरी करनी होती है। इसके लिए हर कंपनी या समिति के लिए ICC एक आंतरिक शिकायत समिति होना अनिवार्य है। आजकल महिलाएं जब काम करती हैं तो अगर उनकी प्रेगनेंसी की पीरियड है, अगर वो गर्भाधान की है या फिर उनका बच्चा होने वाला है, तो उस टाइम भी उनको सही न्याय दिलाने के लिए या उनके कार्य व्यवस्था को आसानी करने के लिए उनको अधिकार सुनिश्चित करती है। इसमें हमारा ये कानून कहता है कि 26 सप्ताह का वेतन, अगर आप काम नहीं कर रही हैं तब भी आपको अवकाश के समय लेने का अधिकार है, और उस समय आपको उसका पैसा भी मिलेगा। आपको चिकित्सकीय सहायता मिलेगी, नौकरी से नहीं निकालने की सुरक्षा मिलेगी, और प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह पर यह कानून लागू होता है। एक अधिकार है बेटी का संपत्ति में अधिकार। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त है, चाहे बेटी विवाहित हो या अविवाहित। पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा है। पैतृक संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है, और अन्य पारिवारिक अधिकार भी उसे वैधानिक रूप से मिलते हैं। यह महिलाओं के समानता की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अर्थात बेटा हो या बेटी, सभी को अपनी पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार है। हमारे कानून में हर जगह कोर्ट है, और कोर्ट के अंदर एक डालसा DLS से मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है, जो नेशनल लेवल पर नालसा का रूप ले लेती है। अगर किसी महिला के पास वकील करने की आर्थिक क्षमता नहीं है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLS से उसे मुफ्त वकील उपलब्ध कराता है। जिला न्यायालय परिसर में ही डालसा का कार्यालय होता है। यहाँ पे जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। आपसे पैसे नहीं लिए जाएगा, ये निःशुल्क सहायता होता है, और हर महिला को यह सहायता पाने का अधिकार है। आज के टाइम में साइबर अपराध वो जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के टाइम में हर इंसान के पास फोन है, और फोन से वो कई लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, मगर ये जान नहीं पाते हैं कि उस इंसान का इंटेंशन क्या है, उसकी सोच क्या है, वो क्या चाह रहा है। आपके कुछ फोटोज लेगा, उसे नेट के थ्रू वायरल करेगा, उसको गंदे संदे मैसेज के साथ सेट करेगा, और उसे वायरल करके आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे उससे पैसे की डिमांड करेंगे या फिर आप स्टॉक करेंगे। तो इस टाइप के साइबर अपराध के लिए महिलाएं साइबर सेल में जा सकती हैं। 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और भी बहुत सारे कानून हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने अधिकारों की आप रक्षा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी से आपको बहुत ही लाभ मिला होगा, और आपको कानूनी अधिकारों के बारे में बहुत ही स्पष्ट जानकारी मिली होगी। गांव घर में लोग अक्सर घर के चार दीवारी में ही रह जाते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर हम कानून का सहारा ले या कोर्ट कचहरी जाएंगे तो गांव के लोग क्या बोलेंगे। मगर आपको जागरूक होना है, क्योंकि आप अपने बारे में खुद ही वो निर्णय ले सकती हैं कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अर्थात याद रखिए, कानून हर महिला की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बना है। यदि आपके आसपास कोई महिला किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या शोषण का सामना कर रही हैं, तो उसे कानून का मदद लेना अवश्य सिखाएं। इसी संदेश के साथ मैं अधिवक्ता सुप्रिया रंजन बस आपसे 2 लाइन और कहना चाहूँगी कि सशक्त महिला वह है जो अपने हक को जानती भी है और मांगती भी है। अर्थात एक सशक्त महिला न्याय की सबसे बड़ी वकील होती है, और कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। और मैं अंत में कहना चाहूँगी, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ है औरतों के दम से हैं। धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: अब ये हमारी बहनें सुन रही थी सुप्रिया रंजन की वार्ता, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। और अब आइए बात करें महिलाएं बचत की आदत कैसे डालें। बहनों, छोटी बचत भविष्य में बड़ी सुरक्षा बनती है। यदि हम अपने आय का थोड़ा सा हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं तो जरूरत पड़ने पर किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नियमित बचत करने से आर्थिक अनुशासन विकसित होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भविष्य की आवश्यकताओं जैसे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, खेती या छोटे व्यवसाय के लिए धन उपलब्ध रहता है। आप कुछ बचत के आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे अपनी आय का कम से कम 5-10% हिस्सा हर महीने बचत के लिए अलग रखें। सबसे पहले बचत करें, फिर खर्च करें।
3: और बहनों, अनावश्यक और दिखावे वाले खर्चों से बचें। रोज़ाना होने वाले छोटे छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वयं सहायता समूह की नियमित बचत बैठक में समय पर अपनी बचत जमा करें। बचत की राशि को बैंक खाते में सुरक्षित रखें और हर महीने अपनी आय और खर्च का लिखित हिसाब रखें। अचानक मिलने वाली अतिरिक्त आय यानी बोनस, लाभ आदि का कुछ हिस्सा भी बचत में जोड़ें। बिजली, पानी और ईंधन का सही उपयोग करके होने वाली बचत को भी जमा करें। बचत का उपयोग भविष्य की ज़रूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे व्यवसाय में निवेश के लिए भी आप करें। छोटी छोटी बचत से बड़े सपने पूरे होते हैं और आज की बचत कल की खुशहाली है।
2: साप्ताहिक बजट भी आप बना सकती हैं बहनों। सप्ताह की कुल आय लिखें, आवश्यक खर्चों की सूची बनाएं जैसे राशन, सब्जी, दूध, बच्चों की पढ़ाई, दवा और यात्रा वगैरह। प्रत्येक खर्च के लिए पहले से राशि तय करें। सप्ताह की शुरुआत में ही बचत की राशि अलग रख दें। केवल जरूरी वस्तुओं पर ही खर्च करें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। हर दिन के खर्च को एक कॉपी या डायरी में लिखें। सप्ताह के अंत में आय और खर्च का मिलान करें और देखें कि कहाँ बचत की जा सकती है। अगले सप्ताह की बजट में पिछली गलतियों को सुधारते हुए बेहतर योजना बनाएं। याद रखें कि योजनाबद्ध बजट और नियमित बचत से आर्थिक सुरक्षा और खुशहाल भविष्य की नींव मजबूत होती है। सप्ताह शुरू होने से पहले पूरे परिवार के साथ बैठकर खर्च की योजना बनाएं। अनावश्यक, महत्वपूर्ण और गैर जरूरी खर्चों को अलग अलग सूची में रखें। बाजार जाने से पहले खरीदारी की सूची तैयार करें और उसी के अनुसार सामान खरीदें।
3: और बहनों, नगद खर्च के लिए अलग अलग लिफाफे या पर्स रखें जैसे राशन, सब्जी, यात्रा और बचत। सप्ताह के बीच में एक बार बजट की समीक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर खर्च में सुधार करें। बच्चों को भी बचत और बजट का महत्व समझाएं ताकि उनमें भी अच्छी आदत विकसित हो। और हर सप्ताह बचत की राशि स्वयं सहायता समूह या बैंक खाते में जमा करें। यदि किसी सप्ताह खर्च कम हो जाए तो बची हुई राशि को अगले सप्ताह खर्च करने के बजाय बचत में जोड़ दें। अचानक आने वाले खर्चों के लिए थोड़ी राशि आपातकालीन निधि के रूप में भी अलग रखें और हर महीने यह देखें कि किस खर्च में कटौती करके बचत और बढ़ाई जा सकती है। सही बजट, नियमित बचत और समझदारी से किया गया खर्च ही आर्थिक आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। तो बहनों, इसी चर्चा के साथ अब हमारा समय भी घर आंगन कार्यक्रम से समाप्त हो चला है। तो इसी के साथ कार्यक्रम घर आंगन से अब दीजिए रागनी कुमारी और
2: प्रतिमा वर्मा को
3: अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम क्रिकेटा। रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL में वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्टर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले दिन पैनल चर्चा और 6 तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने मतदाता जागरूकता, निर्वाचन समावेशन और ऑनलाइन पंजीकरण पर विचार विमर्श किया। दुमका के प्रमंडलीय आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने आज पाकुड़ जिले का दौरा कर SIR कार्य का जायजा लिया। उन्होंने लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जामजोड़ी पंचायत भवन में अनमैप्ड मतदाताओं के दावा आपत्तियों के चल रही सुनवाई प्रक्रिया का निरीक्षण किया। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने PCPNDT एक्ट के तहत जिले के सभी 55 अल्ट्रासाउंड केंद्रों की सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। लिंग जांच के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने सदर अस्पताल में बन रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉक का कार्य 1 सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया। गुमला में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें उपायुक्त दिलेश्वर महतो और SP हारिस बिन जमा शामिल हुए। न्यायाधीश ने लंबित सुलह योग्य मामलों की पहचान कर लोक अदालत में उनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए हैं। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में भारी बारिश के बीच हथियारबंद 3 अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की। SDPO विजय कुमार ने घटना की पुष्टि की है। और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने गौरवशाली 70 वर्ष पूरे किए हैं। बीमा कर्मचारी संघ के महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल ने हजारीबाग में बताया कि LIC की कुल संपत्ति 59 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीण भाइयों बहनों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे खेतों को प्रति ना छोड़े।
1: किसान भाइयों, खेत हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि खेतों को लंबे समय तक प्रति छोड़ दिया जाए तो खरपतवार बढ़ते हैं, मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो सकती है और खेत की उत्पादकता घटने लगती है। इसलिए खेतों का साल भर सही उपयोग करना आवश्यक है। मुख्य फसल की कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ने के बजाय दलहनी, तिलहनी, चारा फसल या हरी खाद वाली फसलें उगाएं। इससे मिट्टी की सेहत बेहतर रहती है, खरपतवार कम होते हैं और अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलता है। समय समय पर मिट्टी की जांच, जैविक खाद का उपयोग और फसल चक्र अपनाकर खेत की उर्वरता बनाए रखें। उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं का बेहतर उपयोग करें और कम पानी वाली फसलों का चयन करें जहां उपयुक्त हो। यदि किसी कारण से पूरे खेत में खेती संभव ना हो तो कम से कम उसके एक हिस्से में कोई उपयोगी फसल अवश्य लें ताकि भूमि सक्रिय और उपजाऊ बनी रहे। खेत को प्रति नहीं उपजाऊ बनाएं, हर मौसम में उचित फसल अपनाएं, मिट्टी बचाएं, उत्पादन बढ़ाएं और अपनी आय में वृद्धि करें।
0: ग्रामीण भाइयों, फसल कटाई के तुरंत बाद आप खेत की सफाई करें और फसल अवशेषों का उचित प्रबंध करें। मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक जुताई करें और सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाएं। प्रत्येक 2 से 3 वर्ष में मिट्टी की जांच करवाएं। जांच रिपोर्ट के अनुसार ही खाद और उर्वरक का उपयोग करें। उसके बाद आप फसल चक्र अपनाएं, एक ही फसल बार बार ना बोएं। अनाज के बाद दलहनी या तिलहनी फसलें लें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। और खाली खेत का उपयोग करें, यानी हरी खाद, चारा फसल, सब्जियां या कम अवधि वाली फसलें उगाएं। इससे अतिरिक्त आय के साथ भूमि का बेहतर उपयोग होता है। सिंचाई की योजना बनाएं, उपलब्ध पानी को सोच समझकर उपयोग करें। जहां संभव हो टपक यानी ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी जल बचत सिंचाई पद्धतियाँ अपनाएँ। खर पतवार और कीट नियंत्रण, जिसमें आप खेत खाली ना छोड़ें ताकि खर पतवार कम पनपे, नियमित निगरानी करें और आवश्यकता होने पर उचित नियंत्रण का उपाय अपनाएं।
1: जैविक पदार्थ बढ़ाएं, गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट या हरी खाद का उपयोग करें। इससे मिट्टी की संरचना और जलधारण क्षमता बेहतर होती है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर खेत खाली पड़ा रहेगा तो उसमें खरपतवार उगेंगे, खेत का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए फसल कटने के बाद खेत को खाली न छोड़ें। कितो किसान भाई करें क्या? फसल कटते ही खेत की सफाई करें, अगली फसल की तैयारी समय पर शुरू करें। धान के बाद चना, मसूर या मटर जैसी दलहनी फसलें बोएं। जहां पानी कम हो वहां सरसों, तिल या अन्य कम पानी वाली फसलें लगाएं। अगर तुरंत फसल नहीं बो सकते तो ढांचा या सनई जैसी हरी खाद की फसल उगाएं। खेत में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट डालें, इससे मिट्टी मजबूत बनेगी। खेत में खरपतवार ना पनपने दें और समय समय पर उनकी सफाई करें। मिट्टी की जांच कराकर उसी के अनुसार खाद का उपयोग करें। कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से सलाह लेती रहें। खाली खेत नहीं, हर मौसम में फसल सही। खेत रहेगा हरा भरा तभी किसान का घर होगा खुशहाल। हम बातें कर रहे थे ग्रामीण भाइयों, खेतों को प्रति ना छोड़ें। आइए संध्या चंद्रा की वार्ता सुनवाते हैं, पारंपरिक खेती का तात्पर्य।
2: किसान भाई, कृषि जिसे आम तौर पर खेती के रूप में जाना जाता है, एक प्राथमिक गतिविधि है जो खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल और कई अन्य लाभ पैदा करती है। भारतीय संदर्भ में पारंपरिक खेती से तात्पर्य ऐसी खेती से है जो कई पीढ़ियों के अनुभव से संचित ज्ञान और बुद्धि के साथ की जाती है। अधिकांश जानकारी दृश्य और श्रव्य निर्देशों के माध्यम से दी जाती है। इसे अक्सर क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है। जिस जीन पूल का उपयोग किया गया था वह घर में ही विकसित किया गया था और स्थानीय वातावरण के अनुकूल था। इसे अधिक आत्मनिर्भर कहा जाता है। दूसरी ओर, पारंपरिक कृषि पद्धतियों को दस्तावेजीकरण के मामले में कम ध्यान दिया गया है, इसीलिए वर्तमान शिक्षित आबादी इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है और परिणाम स्वरूप इसकी सराहना करने में असमर्थ है। जब किसी भी गतिविधि की बात आती है तो यह एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है और इसे उन लोगों के दैनिक जीवन में एकीकृत करता है जो इनमें संलग्न है। किसान भाई, पारंपरिक कृषि प्रणाली के तहत खेती की विशेषता, आधुनिकीकरण की अनुपस्थिति और कृषि क्षेत्र में किसी भी तरह के व्यवसायीकरण की अनुपस्थिति है। श्रम से लेकर बीज तक पारंपरिक तरीकों का उपयोग हर जगह किया

जाता है। यह एक पुरानी खाद्य उत्पादन तकनीक है जो आधुनिक तकनीक या उन्नति के लाभ के बिना हजारों वर्षों से उपयोग में है। इस तरह की खेती का अधिकांश हिस्सा जीविका के उद्देश्य से किया जाता है। देश में हल और अन्य पारंपरिक कृषि उपकरण अभी भी उपयोग में है। तो किसान भाई, देखते हैं पारंपरिक कृषि के कुछ लाभ है। तो क्योंकि हम रासायनिक खादों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद जैसी प्राकृतिक खादों का उपयोग कर सकते हैं, हम उर्वरकों पर पैसा बचा सकते हैं। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के अभाव के कारण पानी की आवश्यकता में कमी आती है। क्योंकि हम केवल प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कृषि योग्य क्षेत्र बहुफसलीय कृषि शैली के लिए उपयुक्त है। पुराने दृष्टिकोण में उत्पादन की लागत कम होती है क्योंकि इसमें कम संसाधनों का उपयोग होता है। क्योंकि इसमें जैविक खेती का उपयोग किया गया है, इसीलिए भोजन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो किसान भाई, ये तो हमने की लाभ की बातें, अब आइए थोड़ी नुकसान की भी बातें करते हैं। पारंपरिक खेती से जो नुकसान है, जैसे खेती में किसानों को अपनी फसल काटने में लगभग 15 घंटे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उच्च तकनीकी वाली खेती में बस कुछ ही घंटे लगते हैं। क्योंकि इसकी कटाई में लंबा समय लगता है, इसीलिए फसल पकने में लगने वाले समय की लागत वसूलने के लिए इसे ऊंचे दामों पर बेचना पड़ता है। साथ ही पारंपरिक तरीके से खेती करने से मिट्टी का उपयोग होता है, परिणाम स्वरूप अपघटन में उपलब्ध समय का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप फसलों को मृदा रोग लगने का भी अधिक खतरा बना रहता है। फसलों पर कीटों के हमले को रोकने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, परिणाम स्वरूप पौधों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। तो ये तो हुई पारंपरिक खेती से नुकसान की बातें, और अब देखते हैं कि आधुनिक खेती। आधुनिक खेती एक ऐसी खेती है जो इस अंतर्निहित ज्ञान की अवहेलना करती और उत्पादन के पारंपरिक तरीकों से बेहतर होने का दावा भी करती है। इसके अलावा समकालीन खेती अधिक पूंजी गहन और बड़े पैमाने पर प्रकृति की है, और यह भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशाल जीन पूल का बहुत कम उपयोग करती है। यह एक एकल खेती है जो स्थानीय संसाधनों, संदर्भ, जलवायु या अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रख सकती, और यह एक समुदाय में एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकलती है। आधुनिक खेती से मतलब है कि समकालीन तरीकों और तकनीक का उपयोग करके खेती करने से है। आधुनिक विज्ञान साथ ही खोजों और नवाचारों की कई नई विशेषताएं खेती करना संभव बनाती है। आधुनिक खेती सिंचाई प्रणालियों के साथ साथ पूंजी निवेश के नए स्रोतों का उपयोग करती है। साथ ही किसान भाई, वर्तमान समय में कृषि किसानों को एक व्यावसायिक व्यवसाय और रोजगार के कई अवसर प्रदान करती है। साथ ही ड्रिप सिंचाई से लेकर स्प्रे सिंचाई तक, नहर प्रणाली से लेकर खेती से लेकर कटाई तक के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, कई विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उच्च उपज देने वाले हाइब्रिड HYB बीजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा समकालीन कृषि प्रणाली मुख्य गतिविधि का समर्थन करने के अलावा साइड कंपनियों के साथ साथ किसी भी सेवा प्रदान करने वाले संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर प्रदान करती है। किशन भाई, अब देखते हैं कि आधुनिक खेती के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, खाद्यान्न की कमी के बिना संपूर्ण जनता को भोजन उपलब्ध कराना, साथ ही भूमि का उपयोग उसकी पूर्ण क्षमता तक किया जा रहा है, यानी कि फसल सघनता 300% से अधिक। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। वैश्विक बाजार यहाँ तक कि हमारे आम संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उपलब्ध है, और हम कैलिफोर्निया के सेबों के साथ साथ अन्य फसलों का भी आयात करते हैं। साथ ही कारखानों के विकास और मशीनों के उपयोग के कारण यह क्षेत्र विस्तारित हो रहा है और उत्कृष्ट नौकरियां पैदा कर रहा है। और अब किसान भाई, देखते हैं कि आधुनिक खेती के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में लवणता बढ़ती है और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा की झूठी भावना पैदा होती है। साथ ही आधुनिक उपकरण महंगे हैं और इसलिए अधिकांश लोगों के पहुँच से बहुत बाहर है। साथ ही उत्पादन की विशिष्टता खत्म हो रही है। चूंकि पारंपरिक
कृषि प्रणाली किसान

की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। इसीलिए यह लोगों की लगातार बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अनुपयुक्त है। दूसरी ओर आधुनिक कृषि मानव खाद्य मांगों को पूरा करने के प्रयासों के साथ साथ प्रजाति प्रजनन कृषि पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेती को अनुकूलित करना है। किसान भाई, पारंपरिक खेती आधुनिक तकनीकों के बिना मैनुअल श्रम और सरल औजारों का उपयोग करके फसलों की खेती और पशुधन पालने की सदियों पुरानी प्रथा है। यह अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए आवश्यक है, जो वैश्विक खाद्य उत्पादन में योगदान देता है। विधियों में प्राकृतिक उर्वरक, फसल चक्र और पारंपरिक सिंचाई शामिल है। आधुनिक खेती के बावजूद पारंपरिक खेती जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो देखते हैं कि पारंपरिक कृषि उपकरण के विषय में, किसान भाई, पारंपरिक खेती में खेती की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रमुख औजार हैं हल। हल एक मजबूत उपकरण है जिसे अक्सर घोड़े से खींचा जाता है, जिसमें मिट्टी को काटने और उलटने के लिए एक ब्लेड होता है। यह इष्टतम रोपण स्थितियों के लिए मिट्टी को तोड़ता और पलटता भी है। अब देखते हैं हैरो के बारे में। हैरो में स्पाइक्स या डिस्क होते हैं, जिनसे खेत में घसीटकर गांठों को तोड़ा जाता है और महीन बीज बिस्तर बनाया जाता है। इसके अलावा यह जुताई के बाद मिट्टी को समतल और परिष्कृत करता है। कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में घूमने वाले ब्लेड या टिंग्स लगे होते हैं, जो मिट्टी को पूरी तरह घुमाए बिना काम करते हैं। यह बढ़ते पौधों के आसपास की मिट्टी को हवा देता है और उसे ढीला करता है, जिससे खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण होता है। हार्वेस्टर। ऐसी मशीनीकृत मशीनें हैं जिन्हें फसलों को कुशलतापूर्वक इकट्ठा करने और संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मैनुअल श्रम से कम हो। यह अनाज और फलों जैसी फसलों की कटाई की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। बीज ड्रिल। सीड ड्रिल एक ऐसा उपकरण है जो रोपण के दौरान एक निश्चित गहराई और अंतराल पर नियंत्रित बीज रोपण सुनिश्चित करता है। यह व्यवस्थित और समान रूप से बीज बोता है। और अब देखते हैं किसान भाई कि पारंपरिक खेती के तरीके कैसे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक खेती की तरीके स्थिरता और भूमि के साथ गहरे संबंध पर जोर देती है। सीधे दी गई तरीकों आधुनिक खेती से अलग है, जो अधिक संसाधन कुशल विकल्प प्रदान करती है। अब देखते हैं कृषि वानिकी। इसमें खेती और वानिकी को मिलाकर ऐसे पेड़ उगाए जाते हैं जो फसलों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाते हैं। यह विधि तापमान, सूर्य के प्रकाश और हवा को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। इस दृष्टिकोण से लाभ उठाते हैं, जिससे फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुकूल होते हैं। फसल चक्रण। एक ही क्षेत्र में कई मौसमों में अलग अलग फसलें उगाना फसल चक्रण कहलाता है। यह दृष्टिकोण फसलों की विशिष्ट पोषक तत्वों पर निर्भरता को कम करता है और कीटों और खरपतवारों से जुड़े जोखिमों को कम करता है। इसके अलावा यह कीटों और खरपतवारों में प्रतिरोध विकसित होने की संभावना को भी कम करता है। देखते हैं मिश्रित फसल। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जाती है। उदाहरण के लिए किसान एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, जिसमें विविधतापूर्ण और संतुलित फसल सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अंतर फसल। यह तब होती है जब आप दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाते हैं। तो किसान भाई, इसका लक्ष्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके भूमि के एक टुकड़े से अधिक फसल प्राप्त करना है, क्योंकि प्रत्येक पौधा अकेले में संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। और किसान भाई, अब देखते हैं पारंपरिक खेती के कुछ फायदे हैं। इस खेती के कई लाभ हैं, जिसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता का संरक्षण होता है। स्थिरता। पारंपरिक किसान अक्सर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं। वे बहुत ज़्यादा रसायनों का इस्तेमाल करने से बचते हैं, जिसमें पर्यावरण संतुलन में रहता है। फसलों का विविधीकरण। पारंपरिक खेतों में आप पाएंगे कि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती है। यह मिश्रण
न केवल खेतों को विविधतापूर्ण बनाता है।

बल्कि अगर एक फसल अच्छी नहीं होती है तो भी मदद करता है। पारंपरिक ज्ञान, किसान एक दूसरे को खेती के पुराने तरीके सिखाते हैं। इसका मतलब है कि वे जिस खास जगह पर काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सबसे अच्छी तरकीबें पता है। पारंपरिक किसान रसायनों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहते। इससे न सिर्फ हवा और पानी साफ रहता है बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। सरल और किफायती उपकरण, वे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं वे सरल हैं और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। यह उन छोटे किसानों के लिए अच्छी खबर है जिनके पास शायद महंगी मशीनें नहीं हैं। किसान भाई, पारंपरिक खेती में लोग अपने हाथों और बुनियादी औजारों का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों और पुरानी परंपराओं पर आधारित जैविक खादों पर निर्भर रहते हैं। इसके विपरीत आधुनिक खेती के लिए कृषि निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्यबल थ्रेशर और हार्वेस्टर जैसी उन्नत मशीनरी और नवीनतम तकनीकें शामिल है। इन तकनीकों में चयनात्मक प्रजनन, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक

अभी हमारे कृषक भाई सुन रहे थे संध्या चंद्रा की वार्ता पारंपरिक खेती का तात्पर्य। आइए आपको सुनवाते हैं भरत सिंह भारती की आवाज़ में एक लोक।

0: और इस लोकगीत के बाद बात करते हैं कम पूंजी में सागों की खेती कैसे करें हमारे कृषक भाई। किसान भाई, यदि आप कम लागत में अच्छी आमदनी चाहते हैं तो सागों की खेती एक अच्छा विकल्प है। पालक, मेथी, सरसों का साग, चौलाई, बथुआ और धनिया ऐसे साग कम समय में तैयार हो जाते हैं, उसकी बाजार में हमेशा मांग रहती है। साग की खेती के लिए पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करें और गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट मिलाएं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुनें और समय पर बुआई करें। हल्की सिंचाई करते रहें और खेत को खरपतवार से साफ रखें।
1: सितंबर का महीना पत्तेदार साग सब्जियों की खेती के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मानसून विदा हो रहा होता है और मौसम में हल्की ठंडक की शुरुआत होने लगती है। इस महीने में उगाई जाने वाली हरी सब्जियां बेहद कम समय यानी 25 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और बाज़ार में इनकी मांग अधिक होने के कारण किसानों को बेहतरीन मुनाफा मिलता है। सितंबर महीने में आप अनेकों पत्तेदार सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। सबसे पहले पालक साग की बात करते हैं तो यह सितंबर में उगाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय फसल है, जो मात्र 25 से 30 दिनों में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। हरी धनिया की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर के दौरान मंडियों में हरी धनिया का भाव 100 से 150 रुपये किलो तक मिल जाता है, जिससे यह बेहद मुनाफा देने वाली फसल बनती है। और मेथी की जो साग है, मेथी औषधीय गुणों से भरपूर है और इसे सर्दियों की शुरुआत से पहले सितंबर के मध्य या अंत में आसानी से उगाया जा सकता है। लाल चौलाई जो है, सितंबर की शुरुआत में हल्की गर्मी और नमी का फ़ायदा उठाकर चौलाई का साग भी तेज़ी से बढ़ता है। और मूली और शलजम के पत्ते सितंबर में लगाई गई अगेती मूली के पत्तों का उपयोग भी साग के रूप में काफ़ी मात्रा में किया जाता है। सलाद प्रेमियों के लिए सितंबर का आखिरी हफ्ता लेट्यूस उगाने के लिए बेहतरीन समय है। साग वर्ग की फसलें बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए इनकी खेती के लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है।
0: खेत और मिट्टी की तैयारी कैसे करें किसान भाइयों? तो जल निकासी, सबसे पहले मिट्टी का चयन कर लें। जल निकासी वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी साग के लिए सबसे अच्छी होती है। खेत की 2-3 बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। फिर खाद प्रबंधन जरूरी है, तो मिट्टी तैयार करते समय प्रचुर मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। पत्तों की अच्छी बढ़वार के लिए नाइट्रोजन युक्त जैविक खाद बहुत फायदेमंद होती है। बीजों की बुआई भी जरूरी है, तो बीजों को समतल क्यारियों में छिड़क कर या 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बनाकर बोया जा सकता है। कवक यानी फंगस जनित रोगों से सुरक्षा के लिए बीजों को बोने से पहले कवकनाशी जैसे ट्राइकोडर्मा से उपचारित जरूर कर लें। साग के बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई यानी फवारा विधि या झारे से करें। पानी को खेत में जमा न होने दें, नहीं तो बीज सड़ सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है। साग की फसल घनी होती है, इसलिए शुरुआती 15 से 20 दिनों में हाथों से निराई गुड़ाई करके खरपतवार घास फूस निकाल दें।

0: उन पौधों के पत्ते अच्छी तरह विकसित हो जाए। जब पौधों के पत्ते अच्छी तरह विकसित हो जाए, लगभग 4 से 6 इंच लंबे हो जाए, तब नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़कर उसकी कटाई करें। सही तरीके से काटने पर पालक और मेथी जैसी फसलें 3 से 4 बार दोबारा फूटती और बार बार पैदावार देती हैं।
1: तो ग्रामीण भाइयों, इसी चर्चा के बाद हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति। नमस्कार।

हमारे ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे खेती बारी। कुछ ही देर में कृषक महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम आप सुनेंगे ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: ग्रामीण सभा सुनने वाली सभी महिला बहनों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम ग्रामीण सभा में। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए उन्नत कृषि यंत्र के बारे में।
1: बिल्कुल महिला बहनों, महिलाओं के लिए ऐसे उन्नत कृषि यंत्रों की जो खेती को आसान, सुरक्षित और अधिक लाभदायक बनाते हैं। आज आधुनिक कृषि में महिलाओं के लिए हल्के और उपयोग में आसान उपकरण उपलब्ध हैं। इनमें बैटरी या पावर स्प्रेयर, वीडर जिसे खरपतवार हटाने का यंत्र भी कहते हैं, सीड ड्रिल, मल्टी क्रॉप प्लांटर, मिनी पावर टिलर, रीपर, चारा काटने की मशीन और मिनी थ्रेसर प्रमुख हैं।
0: और ये इन यंत्रों के उपयोग से कम समय में अधिक काम होता है, मेहनत और शारीरिक थकान कम होती है और उत्पादन की गुणवत्ता और पैदावार में भी सुधार होता है। इससे महिलाओं का समय बचता है जिससे वे अन्य आय बढ़ाने वाले कार्यों में भी लगा सकती हैं। महिलाएं कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन यंत्रों के उपयोग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं और कई सरकारी योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। बैटरी स्प्रेयर की बात करें तो फसलों और कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव आसानी और समान रूप से करने के लिए है। कोनोवीडर यानी खरपतवार जो हटाने का यंत्र है, धान और अन्य फसलों में उगी खरपतवार को कम मेहनत में हटाने के लिए होता है। बीजों को सही गहराई और उचित दूरी पर बोने के लिए जिससे अंकुरण अच्छा होता है, वो सीड ड्रिल है। और मल्टी क्रॉप प्लांटर जो अलग अलग फसलों की बुआई जल्दी और समान दूरी पर करने के लिए है। मिनी पावर टिलर जो खेत की जुताई, गुड़ाई और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए है। रीपर जो यंत्र है वो पकी हुई फसल की तेज और आसान कटाई के लिए है। मिनी थ्रेसर यानी कटाई के बाद अनाज को बालियों से अलग करने के लिए। और चारा काटने की जो मशीन है वो है पशुओं के लिए हरा और सूखा चारा जो छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। और मिनी धान रोपण यंत्र यानी राइस ट्रांसप्लांटर यानी धान के पौध को कम समय और कम मेहनत में लगाने के लिए। ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो पौधों की जड़ों तक आवश्यक मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए जिससे पानी की बचत होती है।
1: बहनों, कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यंत्र चलाने से पहले उपयोग विधि को अच्छी तरह समझें और प्रशिक्षण लें। काम करते समय दस्ताने, जूते, मास्क और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा चश्मा पहनें। हर बार उपयोग से पहले यंत्र की बैटरी, तार, नट बोल्ट और अन्य हिस्सों की जांच करें। ढीले कपड़े, खुला दुपट्टा, खुले बाल लेकर मशीन के पास काम ना करें। बच्चों और पशुओं को यंत्र चलाने वाली जगह से दूर रखें। कीटनाशक का छिड़काव करते समय हवा की दिशा का ध्यान रखें और मास्क अवश्य पहनें। मशीन की सफाई, मरम्मत या ब्लेड बदलने से पहले यंत्र बंद करें और बिजली

0: बैटरी का संपर्क अलग करें। यंत्र का उपयोग केवल उसकी निर्धारित क्षमता के अनुसार करें, उस पर अधिक भार न डालें। काम पूरा होने के बाद यंत्र को साफ करके सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें। किसी भी खराबी या असामान्य आवाज़ आने पर यंत्र का उपयोग तुरंत बंद करें और प्रशिक्षित तकनीशियन से जाँच कराएँ। याद रखें, सुरक्षित किसान समृद्ध किसान। तो सावधानी के साथ कृषि यंत्रों का उपयोग करें बहनों, अपनी सेहत की रक्षा करें और खेती को आसान बनाएं। आइए आपको वार्ता सुनवाते हैं, मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, जो कृषि विज्ञान केंद्र चियां की पलामू के कृषि विशेषज्ञ हैं। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें मृदा की। जी हां किसान बंधु, हमारे मृदा की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है और इसके साथ ही जल धारण क्षमता जो है भूमि की, वो भी निम्न स्तर पर जा चुकी है। कई तरह की तकनीकियां कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेतों खलिहानों में उतारी गई है, उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। और आज मृदा एवं जल संरक्षण से संदर्भित विस्तृत बातें जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि अभियंत्रण शाखा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार, झारखंड के सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार और प्रणाम।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों के सामने जो प्रमुख मुद्दा है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि मृदा की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो क्षीण होती जा रही है, उर्वरा शक्ति जो कम होती जा रही है, साथ ही जल धारण क्षमता जिसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, हमारे किसान भाई इसका निदान कैसे करें?
2: किसान भाई, सबसे पहले तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो है मिट्टी और जल का जो प्राकृतिक संसाधन जो मिला हुआ है, ये जो है अनमोल है। इसको सिर्फ इसकी रक्षा की जा सकती है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, इसका उत्पादन नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: ये जो है हमारे प्रकृति में बहुताय में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसके जो है गुणवत्ता और इसके जो है उपयोग में जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की भिन्नताएँ पाई जाती है, जिसके चलते जो है इसमें भारी कमी आई है। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षीण होने का एक प्रमुख कारण है कि जैसे बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद जो है पानी बहता है, तो पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बह जाती है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी की जो है 15-20 से 25 सेंटीमीटर तक ही उर्वरा शक्ति रहती है, उसके नीचे की मिट्टी जो है वो सही नहीं होती है, वो खेती करने योग्य नहीं होती है। इसलिए उसका जो है संरक्षण करना, उस मिट्टी को जल के साथ साथ मिट्टी को भी बचाना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए तरह तरह की उपाय जो है हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को बताते हैं और आज उसी पे हमको विशेष चर्चा करनी है।
1: जी हाँ, और वो प्रमुख तकनीकियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं?
2: वो प्रमुख तकनीकी जो है किसान जो है सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो खेत हमारे हैं वो यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत है।
1: जी जी।
2: और उसमें जो है किसान जो है वो सबसे पहले जो है कंटूर फार्मिंग करेंगे, जैसे खेत की जुताई करते हैं तो जैसे करते हैं वैसे ही करें, लेकिन जो अंतिम जुताई उसकी करें वो जो है वो स्लोप के विपरीत करें।
1: अच्छा।
2: स्लोप के दिशा में जुताई ना करें। इसके बाद जो है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो पानी बह करके आता है वो कुंडों में जो है वो रुक जाता है, रुकता है, जिसके चलते जो है हमारी मिट्टी जो है नहीं बह पाती है।
1: हाँ।
2: इसलिए जो है आप अंतिम जुताई हमेशा जो है
1: स्लोप में नहीं करें,
2: स्लोप में के साथ ना करें, स्लोप के विपरीत करें। दूसरा ये कर सकते हैं किसान भाई जो है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, पट्टीदार खेती।
1: अच्छा।
2: पट्टीदार खेती का मतलब ये होता है कि जैसे कि बारिश होती है तो मिट्टी बहती है, तो आप जो है एक लाइन जो है इस तरह की फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को रोकती हो।
1: अच्छा।
2: और दूसरे लाइन में जो है ऐसी फसल लगाए जो मिट्टी और पानी को नहीं रोकती है।
1: अच्छा।
2: जैसे कि मान लीजिए कि आप एक लाइन मक्का लगा रहे हैं तो एक लाइन जो है आप मूंग लगाइए।
1: अच्छा।
2: तो मक्का यदि मिट्टी के बहाव को नहीं रोकेगा तो मूंग रोक देगा,
1: फिर दूसरे लाइन में
2: फिर दूसरे लाइन में फिर आप मक्का लगाइए, फिर उड़द मूंग लगाइए। तो ऐसे कर इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है पट्टीदार खेती कहते हैं। तो इस तरह की खरीफ फसलों में भी ज्यादा ही हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है

0: हमारी कमजोर होती है, मिट्टी बह जाती है।
1: जी जी।
0: तो ऐसे केसेस में जो है देखा जाता है कि यदि आप पट्टीदार खेती कर रहे हैं तो उससे हमारी जो है मिट्टी भी बचती है और पानी भी बचता है हमारा।
1: अच्छा।
0: इसके बाद जो है आप ये काम कर सकते हैं कि वेजिटेटिव जो है बंड बना सकते हैं, वेजिटेटिव बंड बना सकते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा इरोजन हो रहा है वहाँ पर मेड़ों पे जो है आप जो है सजीव बंध जिसको कहते हैं, जैसे कि मूज की घास हो, मूज हो गया।
1: अच्छा।
0: या मतलब कि आपका और भी जैसे दीननाथ घास हो गया, तो इस तरह की
1: ये सब रोकेंगे।
0: ये सब जो क्या करता है कि वो पानी को बहने नहीं देता है, मिट्टी को रोक देता है वहाँ पे। ये आप काम कर सकते हैं ऐसे करके भी। इसके अलावा भी जो है आप उसमें बंडिंग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि यहाँ पर झारखंड में हमारे खेत जो हैं वो छोटे छोटे हैं, इसके पीछे कारण है। छोटे छोटे इसलिए हैं कि वो जितना स्लोप उसका कम रहेगा उतना ही मिट्टी का इरोजन कम होगा।
1: अच्छा।
0: मिट्टी का जो कटाव होता है, यदि मिट्टी का स्लोप बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हम बंडिंग नहीं किए हुए हैं तो मिट्टी का कटाव ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए खेत को यहाँ पे छोटे छोटे बनाया जाता है ताकि मतलब कि उसकी जो स्लोप की हमारी लंबाई है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव जो है हमारा रुक जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से जो है हम उसमें मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा जल के संरक्षण करने के लिए जो है बहुत तरह की उपाय है। उसमें जो है जल का संरक्षण करने के लिए आप जो है तालाब का, यहाँ झारखंड में कंसेप्ट है कि तालाब का निर्माण,
1: डोभा का निर्माण करवा दीजिए।
0: हाँ, डोभा का निर्माण करिए। जैसे कहा जाता है खेत का पानी खेत में। तो उसके पीछे कारण यही है कि जो आपका खेत का अंतिम सिरा है वहां पर आप डोभा का निर्माण कर दीजिए।
1: अच्छा।
0: और डोभा जो है बहुत ज्यादा गहरा नहीं, मतलब कि 10 फीट गहरा और जो है 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा,
1: इतना काफी है
0: ताकि खेत का पानी जो है आपके उसमें जमा हो जाएगा
1: और इसके अंदर जाएगा।
0: हाँ, आज जो आप जब आप जरूरत पड़ेगी तो उससे जो है आप निकाल भी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा उसका उपाय है कि आप तालाब का जब भी निर्माण करें तो वो जो है आप जैसे कि यहाँ की जमीन जो है ऊपर नीचे है, जैसे ऊपरी जमीन, मध्यम जमीन और नीचे की जमीन।
1: हाँ,
0: तीन तरह की जमीन यहाँ पे है।
1: हाँ,
0: तो यदि आप ऊपरी जमीन में आप तालाब बना रहे हैं तो ये देख करके बनाएं तालाब कि उसका जो है कैचमेंट एरिया कितना है।
1: अच्छा।
0: मतलब कैचमेंट एरिया से किसान इसको ऐसे समझे कि उसमें पानी आने का जो है
1: साधन कितना,
0: कितनी दूर से पानी उसमें आ सकता है।
1: अच्छा।
0: यदि पानी का आने का साधन वहां पे है तो जो है वहां तालाब का निर्माण करे।
1: अच्छा।
0: ताकि मतलब कि बारिश का पानी जब हो तो वो तालाब में आ जाए। ऐसी जगह तमाम हम लोग देखे हैं कि ऐसी जगह तालाब भी बन जाते हैं जहाँ पानी का कोई आगमन नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो है तालाब भर नहीं पाता।
1: हाँ, सूख जाता है।
0: हाँ, तो वो तालाब के निर्माण में एक और सावधानी रखनी है कि तालाब जब भी बनाए वो एक निश्चित लंबाई चौड़ाई और गहराई का रहे। जैसे कि मैंने 100 फीट लंबा 100 फीट चौड़ा
1: जी,
0: और जो है 10 से 12 फीट गहरा हो। और उसकी जब खुदाई कराए जेसीबी से या अपने किसान जो है अपने से भी उसकी खुदाई कराते हैं, तो उसकी जब भी खुदाई कराए तो उसमें जो है उसकी जो मेड़ दे वो तीन तरफ से ही मेड़ दे, एक तरफ से उसको खुला रखे।
1: अच्छा।
0: ताकि उससे पानी आ सके। बहुत जगह देखा जाता है कि वो चारों तरफ से मेड़ दे दी जाती है,
1: इसके चलते जो
0: है वो जो है पानी आ नहीं पाता है तालाब में। तो किसान भाई को हम सलाह देंगे कि मैंने उसको मेड़ जो भी बनाए वो तीन तरफ से बनाए, और मिट्टी की जो कटिंग करेंगे उसको वो जो है मिट्टी कटिंग करने के 3 से 4 फीट बाद जो है मिट्टी को डाले।
1: अच्छा।
0: जैसे कि आप मिट्टी की कटाव यहाँ से कर रहे हैं तो उससे 3 फीट छोड़ करके मिट्टी को फेंके, जिसको जो है हम लोग बर्म कहते हैं, वो बर्म के ऊपर मिट्टी ना रहे।
1: अच्छा।
0: ताकि जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद मिट्टी बहती है तो वो तालाब में सीधे चली जाती है।
1: अच्छा।
0: तो वो जो है जो बर्म जब रहेगा तो वहां पर मिट्टी जो है तालाब के अंदर जो है कम आएगी। पहले साल जब नया तालाब बनता है तो उसमें जो है मिट्टी ज्यादा आ जाती है।
1: हाँ, हाँ।
0: उसके पीछे कारण है कि जहां से वो खुदाई करता है लोग तालाब की, वहीं पर मिट्टी फेंक देता है और बारिश हुई है तुरंत मिट्टी जो है बह करके तालाब।
1: अच्छा, बांध पर भी तो वृक्ष लगा सकते हैं।
0: हाँ, बांध में वृक्ष लगा सकते हैं, वो भी मिट्टी के आपको
1: कटाव को रोकेगा।
0: इस

0: के अलावा जो भी तालाब बनाए तो उसको एक निश्चित स्लोप दे, जैसे कि 1:1 हम लोग कहते हैं या 1:2 कहते हैं, माने एक संबंध है एक या एक संबंध है दो।
1: अच्छा।
0: जैसे कि 1 फीट गहरा करे,
1: हाँ,
0: तो 1 फीट जो है चौड़ा करे, फिर 1 फीट गहरा करे।

0: वो हाँ भंसने का खतरा रहता है, तालाब में जो है भंस जाता है और मिट्टी भर जाता है, जिसको हम लोग सिल्टेशन कहते हैं। और सिल्टेशन हो जाएगा तो पता चले कि आपका जो है तालाब 12 फीट गहरा था, अब पहले ही साल में दूसरे साल में देखेंगे कि तालाब 6 फीट हो गया।
1: बिल्कुल,
0: इसके पीछे कारण यही होता है कि वो जो है तालाब में जो है मिट्टी बह करके चली जाती है और तालाब की गहराई जो कम हो जाती है, तो उसका जो है उसमें जो पानी का जो एरिया है वो भी कम हो जाता है हमारा।
1: तो ये तो कटाव की रोकने की बात हो गई हमारे किसान भाइयों के लिए। और अब प्रश्न उठता है कि जो इसकी जो उर्वरा शक्ति जो छीण हो रही है, और लोग बोलते हैं कि रासायनिक खातों का अंधाधुंध प्रयोग करें, अगर इसका प्रयोग ना करें तो खेती भी अभी की स्थिति में थोड़ी लचर स्थिति में हो जाएगी, आखिर क्या करें किसान भाई?
0: देखिए, आज के समय ऐसा हो गया है कि मिट्टी जो है हमारे खेत का जो भी उर्वरा शक्ति है वो टोटली जो है डिपेंड हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर पे।
1: जी,
0: वो जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, साथ साथ में जो है जो भी उसका भोजन कर रहा है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए जो है हम लोग जो है अब सलाह दे रहे हैं किसानों को कि आप जो है जो भी आपका रासायनिक खाद है उसका जो है उपयोग कम से कम करें, और अधिक से अधिक जो है आप प्राकृतिक खाद का उपयोग करें
1: तो ज्यादा,
0: या जो है कंपोस्ट का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे कि किसान कहते हैं कि हमारे पास गोबर की कमी है, कंपोस्ट नहीं है, तो ऐसे तमाम आज के समय में आ गया है, पहले से ही चला रहा था प्राकृतिक खाद जो है जो आपको 10 केजी गाय के गोबर से और 5 लीटर गोमूत्र से आपका तैयार किया जा सकता है 1 एकड़ के लिए
1: जी।
0: तो यदि उसको आप करते हैं तो उसकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है हमारी बढ़ती है। एक्चुअली है क्या ना कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो है जो हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं उससे नष्ट हो गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि खेत में केंचुआ आजकल नहीं है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो केंचुआ तो आपको बड़ा है वो दिख जा रहा है, लेकिन छोटे छोटे तमाम ऐसे बैक्टीरिया है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वही मिट्टी को जो है पोषक तत्व देते हैं और जिसके चलते पौधों को मिलता है,
1: विकास होता है।
0: तो वो जो है बैक्टीरिया मर गए हैं, और बैक्टीरिया तभी आ सकते हैं जब आप प्राकृतिक खाद दें
1: जी। और ऐसे भी तो अगर अनुपात मिला करके देने की बात आती है कि कुछ आप रासायनिक का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आप प्राकृतिक जो केचुआ वगैरह उसका भी उपयोग करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो है जैसे कि हम लोग एकाएक बंद करने की बात नहीं कहते हैं कि रासायनिक खाद को आप एकाएक बंद कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि 1.5 केजी यूरिया प्रति कट्ठा आप दे रहे हैं तो उसको जो है आप जो है 1 केजी कर दीजिए या 1.25 केजी कर दीजिए, फिर इसके अगले साल फिर उसको 200-250 ग्राम और कम कर दीजिए, फिर उसके अगले साल और कम कर दीजिए, ऐसे करके धीरे धीरे जो है आप एक समय 3 साल के बाद हम लोगों ने ऐसा देखा है और खुद किया है अपने फार्मों में किया है, किसानों के यहाँ किया है
1: जी।
0: कि आप 3 से 4 साल के बाद आपको जो है रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और जो है मिट्टी जो है अपने आप जो है उसके अंदर उर्वरा शक्ति जो है उसके अंदर बैक्टीरिया इतने पनप जाएंगे कि फिर जो है आपको किसी भी तरह के हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस पे बहुत ज्यादा माने फोकस है कि आप जो है प्राकृतिक खेती करिए। इस प्राकृतिक खेती में क्या है कि आप जो किसी भी तरह का माने बहुत ज्यादा आपके गोबर की खाद या किसी तरह के माने खाद की जरूरत नहीं है। 10 केजी से 1 एकड़ की आप खाद का काम हो सकता है 10 केजी गोबर से ही, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
1: लेकिन तकनीकियां
0: किसान इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने कंपोस्ट से खेती करेंगे या प्रकृति खेती करेंगे तो ज़्यादा मतलब कि गोबर की जरूरत पड़ेगी, उतना हमारे पास जानवर नहीं है, तो कैसी बात नहीं, कम से कम गोबर में और गोमूत्र में जो है आपका खाद उससे बन जाएगा। उसमें बहुत तरह की प्रोसेस होती है, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में उसको बना करके दिखाते हैं किसानों को, और किसान के खेतों में भी हम लोग इसको करते हैं।
1: अब बात उठता है कि हमारे ग्रामीण बंधु किस प्रकार से जल का संरक्षण करें, तो कई तकनीकियां खेतों खलिहानों में ऐसे उतारी गई हैं जिनमें आपका बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, टपक सिंचाई है, ये कहाँ तक कारगर सिद्ध हो पाता है?
0: ये बहुत कारगर है, ये जो है टपक सिंचाई जो है झारखंड सरकार इस पे जो है 90% सब्सिडी दे रही है, और याद से नहीं कम से कम जो है 12-13 साल से

0: जो है इस पे सब्सिडी आ रहा है और किसान इसको जो है अपने खेत में जो है इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। वो आप कृषि विभाग में जाएंगे, वहाँ आत्मा एक विभाग है, कृषि अच्छा, विभाग का ही पार्ट एक है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से जो है आपको बूंद बूंद सिंचाई का, टपक सिंचाई का जो है आपको मिल जाएगा। एक फार्म होता है, उसको भरना होता है, उसके साथ आधार कार्ड
1: जी जी,
0: और जो है अपना जमीन का पेपर जो है, जिस जमीन में आपको जो है लगाना है। इससे बहुत तरह के फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पानी की बचत है
1: जी,
0: 60-70% पानी की बचत आपकी हो जाती है। किसान ऐसे तमाम हम लोगों को मिलते हैं कि वो जो है पानी के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं।
1: अच्छा, इससे कौन कौन सी खेती की जा सकती है, जैसे अनाज वाली फसलें हो गई? हाँ,
0: इससे जो है धान को छोड़ करके अच्छा, सारी फसल की जा सकती है, गेहूं भी।
1: वाह,
0: हाँ, इससे जो है सिर्फ धान ही एक ऐसी फसल है जिसमें ये कारगर नहीं है।
1: हाँ, हाँ,
0: क्योंकि धान में हमेशा पानी लगा हुआ रहता है और कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें जो है पानी हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए, इसलिए जो है ये हर फसल के लिए उपयोगी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है किसी तरह का श्रम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप सतही सिंचाई करते हैं तो आप पंप से कर रहे हो या बोरिंग से कर रहे हो, तालाब से जैसे भी आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2-3 लेबर जो है आपके खेत में लगे रहते हैं। यदि 1 एकड़ सिंचाई करना है तो आपको 4 घंटे लगेंगे। इसमें क्या है कि आपको 1 एकड़ सिंचाई करना है तो 15-20 मिनट लगेगा। एक बार आप जो है मोटर अपना स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्ट करके जो है 15-20 मिनट जो है आप खेत में घूमिए, आपके खेत की सिंचाई हो गई।
2: नमस्कार।

0: अभी हमारे महिला बहनें सुन रही थी भेंटवार्ता, मृदा अपरदन से बचाव एवं जल संरक्षण। भेंटवार्ताकार थे कृषि विज्ञान केंद्र चिया की पलामू के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पांडे जी, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए सुनते हैं दीदीबाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस विषय पर बात। दीदीबाड़ी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवारों को पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को अपने घर के आंगन या खाली भूमि में मौसमी सब्जियां, फल और पौष्टिक साग उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके कुछ खास उद्देश्य हैं, परिवार को वर्ष भर ताजी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय बढ़ाना, कुपोषण कम करना और परिवार के स्वास्थ्य में सुधार लाना, घर की खाली जमीन का बेहतर उपयोग करना, जैविक खेती और रसोई बाड़ी को बढ़ावा देना
1: और अतिरिक्त सब्जियों को बेचकर परिवार की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को पोषण, खेती और बागवानी के प्रति जागरूक बनाना। बहनों, हर घर में दीदीबाड़ी, हर परिवार में सेहत और खुशहाली, पौष्टिक भोजन भी, अतिरिक्त आय भी। इस चर्चा के बाद अब आज का मौसम
0: आपको बता दें। आज पलामू में अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस।
1: बहनों, मौसम के बाद अब चलते चलते आज की नसीहत में हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती एक ऐसी है खेती है जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कम या बिल्कुल नहीं किया जाता। इसके बजाय गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, घन जीवामृत, कंपोस्ट और अन्य प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, लागत कम होती है और पर्यावरण की भी रक्षा होती है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए खेत में जैविक खाद का उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं, मल्चिंग करें और खेत की नमी बनाए रखें। कीट और रोग नियंत्रण के लिए नीम, लहसुन, मिर्च और अन्य प्राकृतिक घोलों का उपयोग करें।
0: प्राकृतिक खेती से मिट्टी में लाभदायक जीवाणु बढ़ते हैं, पानी की आवश्यकता कम हो सकती है और लंबे समय में खेती अधिक टिकाऊ बनती है। साथ ही किसानों की उत्पादन क्षमता घटने से लाभ बढ़ने की संभावना रहती है। तो प्राकृतिक खेती अपनाएं, मिट्टी की सेहत बचाएं, लागत घटाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित खेती का रास्ता बनाएं।
1: तो ग्रामीण बहनों, इसी नसीहत के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और ज़िले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर अब 7 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं पर बढ़ा सियासी पारा। भाजपा ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक स्टंट। मतदाता पंजीकरण पर रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। पहले दिन विशेषज्ञों ने निर्वाचन समावेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर किया मंथन। राज्य में स्वाइन फ्लू का बढ़ा प्रकोप। 30 दिनों में मिले 36 नए मरीज। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जारी किए विशेष निर्देश। और राज्य में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जामताड़ा में 1 की मौत। पलामू में स्कूल बंद और कई नदियां उफान पर। डैमों के खोले गए फाटक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में डीजीपी की नियुक्ति मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट न मिलने की बात कहे जाने पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर तय की है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की नियमावली को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी है। महिला सुपरवाइजर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। जेएसएससी के अधिवक्ता ने बताया कि चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने आयोग की अपील पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की गई है।
1: ऑनरेबल रीड कोर्ट का कहना था कि जो क्वालिफिकेशन आप डिस्क्राइब किए हैं कि ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस में होना चाहिए, वो गलत है। इसलिए गलत है कि 2023 अपॉइंटमेंट रूल्स के अनुसार आप उसको एडवर्टीजमेंट में लाए हैं और एडवर्टीजमेंट ये 2023 अपॉइंटमेंट रूल्स का गजट नोटिफिकेशन ही हुआ है 2026 में। हम लोग रिटर्न नोट्स ऑफ आर्गुमेंट दिए थे, बहस भी किए थे कि सारा अपॉइंटमेंट रूल्स का नोटिफिकेशन हुआ है 2026 में, इसलिए अगर वो वैलिड नहीं है तो अदर अपॉइंटमेंट रूल्स भी नहीं है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों द्वारा संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के कड़े निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर को तत्काल रद्द करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है।
2: 1000 छात्र पर जो एफआईआर है, बच्चे भागे हुए हैं, एफआईआर के डर से घर छोड़ दिए हैं, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, राज्य सरकार एफआईआर वापस करेगी कि नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी साहब के पास कहा है कि अगर सरकार 48 घंटे के अंदर अगर उनका एफआईआर वापस नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
0: प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा द्वारा मुख्य सचिव को सौंपे गए ज्ञापन और 48 घंटे के अल्टीमेटम पर तीखा पलटवार किया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है।
3: आंदोलन को बैक करने का कोशिश किए, छात्रों ने इनसे किनारा कर लिया। जब ये ज्यादा पीछे पड़े तो छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया। अब ये एक बार फिर से छात्रों को उकसाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आप जो ये अल्टीमेटम देते हैं 48 घंटे का, संजीदगी से बात रखी जानी चाहिए।
0: रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी

0: ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL में वोटर रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्टर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले दिन पैनल चर्चा और 6 तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने मतदाता जागरूकता, निर्वाचन समावेशन और ऑनलाइन पंजीकरण पर विचार विमर्श किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 30 दिनों में राज्य के 36 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM में जांच की विशेष सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने सभी जिलों को संदिग्ध मरीजों की त्वरित जांच और दैनिक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
1: झारखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर हम लोग अलर्ट मोड में हैं। हमने एडवाइजरी जारी भी किया है और खास करके आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हटिया वगैरह जहां लोग जाते हैं वहां पे हमारी डॉक्टर्स की टीम लगी है, मेडिकल टीम लगी है। जो बाहर से आ रहे हैं उसका पहले स्क्रीनिंग होता है। नॉट ओनली रांची, सभी डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने एहतियातन मैंने निर्देश दिया है।
0: भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपने गौरवशाली 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ के महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल ने हजारीबाग में बताया कि LIC की कुल संपत्ति 59,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। निगम ने देश के विकास में 55,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। गिरिडीह में वाहन और मकान निर्माण पर 40 से 80% तक सरकारी अनुदान दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 4 मुख्य आरोपियों को पचम्बा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। DSP R.K. राणा ने बताया कि राधास्वामी संगठन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने करीब 30 से अधिक लोगों से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में भारी बारिश के बीच हथियारबंद 3 अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लाखों की लूट की और दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की। SDPO विजय कुमार ने घटना की पुष्टि की है। राज्य में मॉनसून की सक्रियता के कारण लगातार हो रही बारिश अब आफत बनने लगी है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे कई जगहों पर जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
2: राज्य में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर में बीती रात लगातार बारिश के कारण एक घर की मिट्टी की दीवार ढह गई, जिसके मलबे में दबकर एक गर्भवती महिला की दुखद मौत हो गई। वहीं पलामू जिले में स्कूल परिसरों में भारी जलजमाव को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कक्षा KG से 12वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को कल तक बंद कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, रेखा और खरकई नदियां उफान पर हैं। रांची में काके और गेतलसू डैम जबकि अन्य क्षेत्रों में तेनू घाट और चांडिल डैम से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी रखा है और लोगों को जल जमाव वाले क्षेत्रों तथा उफनती नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड DGP नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर अब 7 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। JPSC JSSC परीक्षाओं पर बढ़ा सियासी पारा। भाजपा ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने बताया राजनीतिक स्टंट। मतदाता पंजीकरण पर रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। पहले दिन विशेषज्ञों ने निर्वाचन समावेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर किया मंथन। राज्य में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ा। 30 दिनों में मिले 36 नए मरीज।

0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जारी किए विशेष निर्देश, और राज्य में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जामताड़ा में एक की मौत, पलामू में स्कूल बंद और कई नदियां उफान पर, डैमों के खोले गए फाटक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामगढ़ के सिद्धू कानू जिला मैदान में बीते दिनों झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने झंडोत्तोलन किया। इस क्रम में मंत्री ने विभिन्न सेवाओं में अव्वल प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी सहित स्कूली छात्राओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हमें यह आजादी बहुत संघर्षों के बाद मिली है, इसे संभाल कर रखना हम सबों की दायित्व है।
2: स्वतंत्रता दिवस पर मैं पूरे राज्यवासियों को, पूरे देशवासियों को और विशेष करके रामगढ़ के जिलावासियों को शुभकामना देना चाहती हूँ। हमें ये आज़ादी बहुत संघर्षों के बाद मिली, इसको संभाल के रखना हम सबका दायित्व है। तो हम लोग कैसे इस देश के संविधान है उसके अनुरूप कार्य करते हुए कैसे इस देश की अक्षुण्णता बरकरार रखें, सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: माटी की पुकार, पुरखों की पहचान, आदिवासी संस्कृति, झारखंड की शान, इस थीम को लेकर रामगढ़ के टाउन हॉल में पिछले दिनों आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर उपायुक्त सहित रामगढ़ विधायक एवं तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने देश की आजादी के आंदोलन में शामिल होकर वीर गति को प्राप्त हुए सभी आदिवासी जन नायकों को पुष्पांजलि अर्पित कर सभा की शुरुआत की। इस मौके पर गौरवशाली आदिवासी संस्कृति, प्रकृति, जीवन दर्शन की विभिन्न झलकियों से लोगों को अवगत कराया गया। इस मौके पर लाभुकों को वन पट्टा के साथ छात्रों को साइकिल एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल आने वाले अन्य छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि इस मौके पर आदिवासियों से संबंधित सभी प्रकार के चीजों का प्रेजेंटेशन किया गया।
3: यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस का हम लोगों ने त्यौहार को अच्छे से मनाया, जिसमें जितनी भी हमारी आदिवासी संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो व्यंजन हो, नाच नृत्य हो, पेंटिंग हो या अन्य कोई हैंडलूम क्राफ्ट हो, इन सारी चीज़ों को बच्चों और सभी समूहों ने इसको बढ़िया से प्रेजेंट किया। इसके साथ साथ में हम लोगों ने जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय से संबंधित जितनी योजनाएँ राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही, चाहे वो स्कॉलरशिप की योजना हो, वन पट्टा हो, अन्य चीज़ों का हम लोगों ने वितरण भी किया। इस पूरे का मकसद यही है कि जो आदिवासी संस्कृति, जो एक गौरवपूर्ण संस्कृति है, उससे जुड़ के हमें आगे बढ़ना है।
1: पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में अनुसंधान की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, कांडों के समयबद्ध निष्पादन, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निगरानी तथा अनुसंधान में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रिज्म नामक एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म पिछले दिनों विकसित कर उसका विधिवत शुभारम्भ किया गया। इस प्रिज्म के माध्यम से किसी भी आपराधिक कांड में FIR दर्ज होने से लेकर अंतिम प्रतिवेदन आरोप पत्र समर्पित करने तक अनुसंधान के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण की डिजिटल मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाएगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी प्रत्येक कांड की प्रगति की नियमित समीक्षा कर सकेंगे।
4: तो 60 और 90 दिन में सह समय निष्पादन करते हुए इसमें हमें डिजिटल रिमाइंडर का भी एक मैकेनिज्म है। आपराधिक कानूनों में जो भी कांड है उनकी वैधानिक अवधि 60 दिन कुछ कांडों की, कुछ गंभीर प्रवृत्ति के कांडों की वैधानिक अवधि 90 दिन रखी गई है। तो 60 और 90 दिन में सह समय निष्पादन करते हुए इसमें हमें डिजिटल रिमाइंडर का भी एक मैकेनिज्म है, जो हमें समय समय पर बताएगा कि किस कांड में कितना अवधि अभी तक चार्जशीट का जो तय समय अवधि है उसमें बचा है।
1: रामगढ़ पुलिस नित्य नए अनुसंधान कर अपराध पर अंकुश लगाने की कार्रवाई तेजी से कर रही है, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
0: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में कुछ फिल्म नगमें।

सच्ची का बोलबाला फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था अमित खन्ना ने और इसकी तर्ज बनाई थी बप्पी लाहिरी ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं हत्या फिल्म से। आवाजें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीतकार हिंदीवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी।

वक्त की आवाज़ फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, शब्द रचना इंदीवर की थी और तर्ज बप्पी लहरी की। अगला गीत आइए सुनते हैं दिल जला फिल्म से। आवाज़ें जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार इंदीवर और संगीतकार बप्पी लहरी।

दिल जला फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। शब्द रचना इंदिवर की थी और धुन इसकी धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता, स्वस्थ पोषण खुशहाल जीवन। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, फिजिशियन पलामू। भेंट करता है संतोष कुमार।
1: तमाम श्रोताओं को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम

कल्याणी में। श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभी चल रहा है और ये पोषण सप्ताह का मुख्य लक्ष्य है अपने भारत के तमाम नागरिकों को स्वस्थ रखना। और पोषण से संबंधित विस्तृत जानकारी आज आपके साथ साझा करने के लिए स्टूडियो

0: जी
1: तो खासकर महिलाओं में और बच्चों में जो पोषण की कमी होती है ना, उसके लिए सरकार स्पेशल ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, नहीं इसको बोलते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि ये प्रोग्राम माल न्यूट्रिशन के तहत प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये प्रोग्राम जो है 2018 में लॉन्च किया गया था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 में प्रधानमंत्री बने थे और 18 में से उसे स्टार्ट किया गया।
0: जी
1: तो ये शुरू होने का मतलब था कि ये जो पोषण पखवाड़ा होगा उसमें स्पेशल कैंपेन करके जच्चा बच्चा को जो न्यूट्रिशन की कमी उसको पूरा करना है। क्योंकि अभी एक सप्ताह 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक ये सप्ताह चलेगा और इसमें विभिन्न तरह की एक्टिविटी सरकार के द्वारा किया जाता है। इस साल का जो थीम था वो स्टार्ट किया गया था 9 अप्रैल 2026 को
0: जी
1: देना,
0: जी
1: और 23 में भी प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये इस बार जो है 8वीं बार पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। ये
0: जी
1: तो ये 8 साल हो गया लगभग प्रोग्राम को। तो इसमें हमें ये देखना है कि सरकार किन किन बहुतों पर वो ध्यान रखती है, इसका कैंपेन का गोल क्या था। तो हम इसका गोल में हम लोग रखते हैं, ये रखते हैं कि हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें एक लोगों को जन आंदोलन के रूप में कम्युनिटी के द्वारा प्रमोट करना था, पार्टिसिपेट करना था, कि कैसे हम प्रॉपर बच्चों को ये ना हिटिंग ईटिंग हैबिट, खाने का जो उसका जो तरीका है, और जच्चा जच्चा बच्चा दोनों को इसमें ख्याल रखा जाता है।
0: जी
1: तो इसका कंपेन गोल यही हो गया कि किसी तरह से पोषण सप्ताह में कम्युनिटी का पार्टिसिपेंट द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करके कि आपके घर में कोई जच्चा बच्चा है तो आंगनबाड़ी केंद्र में किस तरह की सरकार सुविधाएं दे रहे हैं उसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। कोर थीम इसका क्या है, 2026 का कोर थीम रखा गया कि मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर, मैंने बच्चों का जो मस्तिष्क विकास है वो 6 साल के अंदर में हो जाता है। तो ये जो गोल रखा गया है इसमें, जब बच्चों का जब मैक्सिमम विकास होता है, ब्रेन का विकास होता है, तो उसमें यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो बच्चे का जो है वो ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं
0: नहीं
1: होगा।
0: होगा जी
1: तो इसके की फोर्स एरिया है, जैसे पहला है फर्स्ट 1000 डे,
0: अच्छा
1: बच्चा के जन्मने के बाद 1000 दिन जो है वो बहुत मायने रखता है।
0: अच्छा
1: ये हाई लाइट्स हम मैटरनल न्यूट्रिशन से, जैसे इसको कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेकर 1000 दिन तक ले भी इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये बहुत वाइटल चीज़ है।
0: अच्छा
1: तो प्रॉपर हमको वहाँ पर ध्यान रखना है कि महिलाएं क्या करती हैं कि जब वो जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसको जब पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए, तो उसको पता समय लगते लगते 3 महीना पता चल जाता है।
0: अच्छा
1: जब उसका माहवारी बंद हो जाता है तब वो जाके कहीं चेक कराती है, तब उसको पता चलता है कि हम आई एम प्रेग्नेंट। तो ऐसी स्थिति में 3 महीना 2 महीना लेट हो जाता है, तो उसको आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर उसको रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, वहाँ टीटी का इंजेक्शन करते हैं।
0: जी
1: तो जो महिला स्वस्थ बच्चों को जन्म देना है तो उसे खान पान का ध्यान जो है वो फर्स्ट डे कंसेप्शन से ही ध्यान रखना है।
0: जी
1: हमारी महिला क्या करते हैं, पहले पति खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी और फिर बच्चेगा तो लास्ट में अपना खाना खाती है।
0: नहीं, ये
1: तो
0: गलत
1: ऐसा ये
0: है।
1: गलत परंपरा है। इस परंपरा को खासकर घर में जो गार्जियन है उसको ध्यान देना है कि प्रेग्नेंट लेडी को पहले भरपूर भोजन दीजिए, फिर बाद बाकी धीरे धीरे सब लोग खाइए। तो फर्स्ट 1000 डे जो है हाईलाइट मैटरनल न्यूट्रिशन का प्रोग्राम कहता है कि इसमें महिलाओं के लिए पूर्ण आहार जो है उसको देना है। और जब वो जच्चा बच्चा जन्म हो गया उसको,
0: जी
1: तो उसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। बच्चा कहते हैं कोई 1 घंटा बाद देता है, कोई 4 घंटा के बाद देता है, कोई 6 घंटे के बाद पिलाता है, नहीं, बच्चे के जन्मने के ठीक 1 घंटा के अंदर में ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। संपूर्ण बच्चों को आहार जो है, और लोग थोड़ा थोड़ा क्या कहता है, कोलोस्ट्रम बहुत थोड़ा मात्रा में निकलता है, लेकिन बच्चे के लिए जो कोलोस्ट्रम है थोड़ा सा जो गाढ़ा पीला दूध होता है, बोलते हैं ना खिरसा दूध, तो खिरसा दूध ही जो है बच्चों के लिए एक बूंद काफ़ी है,
0: अब बात
1: उतना ही
0: सही
1: बच्चा का न्यूट्रिशन पूरा हुआ था।
0: है।
1: झारखंड में कहावत है कि जो खिरसा दूध पिएगा वही बनेगा बिरसा।
0: वाह।
1: तो इस तरह पर ध्यान रखना है कि वो बच्चों को गांव में के लोग नहीं समझते हैं, वो दूध को गार के फेंक देते हैं गाढ़ा पीला दूध को, और बाहर के माताओं को दूध देते हैं, तो ऐसा नहीं करना।
0: माँ का प्रथम दूध आप
1: वही,
0: बच्चों को
1: हाँ,
0: दीजिए।
1: वो गाढ़ा पीला जो आता है वही दूध को पिलाना है, भले ही थोड़ा हो। तो ये ध्यान रखना है कि उसके अर्ली डाइट, जिस दिन से लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसी दिन से उसको खान पियाने के से ले के बच्चे के सेकेंड चाइल्ड बर्थ तक ले, मैंने दूसरा जन्म दिवस तक ले, उसको जच्चा को भी ख्याल रखना है और बच्चा ख्याल करना है।
0: जी जी

0: चाइल्ड डे में पहला जब उसका बर्थडे आएगा तो बच्चा चलना शुरू करता है, और चलने के बाद बाबा दादा मामा वो बोलना दो सब शुरू करता है। तो वैसी स्थिति में देखना है कि एक फर्स्ट बर्थडे में बच्चा चल रहा है कि नहीं, और उसकी माँ की क्या स्थिति है। तो ये आपका हो गया बच्चे बच्चे से डे ऑफ कंसेप्शन, कहने का मतलब जिस दिन से प्रेग्नेंट है, क्योंकि बच्चे का विकास तभी होगा जब माँ का पूर्ण स्वस्थ आहार मिलेगा। दूसरा हम लोग एक साथ थीम रखते हैं अर्ली स्टिमुलेशन।
1: अच्छा,
0: तो अर्ली स्टिमुलेशन कहते हैं कि इंकरेज द प्ले बेस्ड लर्निंग एंड पेरेंटल इंगेजमेंट फॉर द चिल्ड्रेन अप टू 6 मंथ।
1: अच्छा,
0: 6 महीना तक ले उसको हम अर्ली स्टिमुलेशन दे के ध्यान रखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को खेलने के लिए माँ के लिए जो पोषण आहार है उसको टेक होम रासिंग THR भी बोलते हैं। तो जब प्रेग्नेंट हो जाती है, आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो THR सरकार देती है, उसको स्पेशल तरह का फूड है जो आंगनबाड़ी केंद्र में मिलता है महिलाओं को, उसको खाना चाहिए। लोग गांव में दूसरे को खिला देते हैं, गाय को खिला देंगे, दूसरे को खिला देंगे, जबकि वो बच्चे के लिए और जच्चे के लिए स्पेशल आहार बना हुआ है। तो 6 महीना तक ले आंगनबाड़ी में उस बच्चे को पूर्णा जो है खेल कूद संबंधी सामान उसको इंकरेज करना है, और साथ साथ विनिंग फूड।
1: अच्छा,
0: जो 6 महीना के अंदर जो बच्चों को खाने के लिए देते हैं, जैसे पका हुआ चावल मैस के देना है, उसी में दाल जो है, जैसे चावल पका रहे हैं तो दाल भी उसी में डाल के पोटली बांध के डाल दें, और कुछ सब्जी है उसको मैस के साथ, कुछ फ्रूट है केला वगैरह मैस के, बच्चों को 6 महीने से विनिंग फूड स्टार्ट कर देना है। हम लोग बहुत देर से बच्चों को 1 साल तक ले बच्चा दूध पीते रहता है, तो दूध पीने से बच्चा कमजोर हो जाता है, तो विनिंग फूड कहता है कि 6 महीने से उसको शुरू कर देना। आज पूरे इंडिया में 14 लाख आंगनबाड़ी है जो केंद्र सरकार से डायरेक्ट योजना के तहत संचालित होती है।
1: अच्छा,
0: साथ में हमारी NM भी है, झारखंड सरकार के सहिया भी है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसी काम के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में यह तरह का प्रॉपर व्यवस्था किया गया है, जहाँ जच्चे बच्चों को। अच्छा, उसके बाद हमको डिजिटल ट्रैकिंग भी करना है। आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर को सिखाया जाता है कि पोषण ट्रैकर कैसे करना है। एक हमारा ऐप है, उस ऐप में हम बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, और उसका डिलीवरी के बाद से ही वो रियल टाइम से उसका हम लोग देखते हैं कि बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं। तो उस ट्रैकर से उसको पता चलता है कि प्रॉपर, यदि बच्चा का जब प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है तो सही ग्रोथ जा रहा है तो ट्रैकर से पता चल जाएगा, और यदि वो न्यूट्रिशन का शिकार है, अंडर न्यूट्रिशन है, तो नीचे जाएगा, तो सदर अस्पताल में या ब्लॉक में MTC सेंटर होता है कुपोषित बच्चों के लिए, वहाँ भेज कर जच्चा बच्चा को इलाज करना है। वहाँ सरकार क्या करती है कि बच्चों को प्रॉपर खाना देती है, उसको प्रॉपर फीडिंग दिया जाता है, माँ को भी खाना दिया जाता है, और प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से उसका पैसा भी मिलता है।
1: अच्छा,
0: कम से कम 15 दिन वहाँ रखना चाहिए।
1: ये सब इसलिए है कि पोषण की तरफ उनका रुझान बना
0: बढ़ा रहे
1: जी,
0: पर सरकार प्रमोशन करती है। और तीसरा पॉइंट है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल। हम लोग करना है कि जो बच्चा है, बच्चा उस उम्र में कभी ज्यादा खा लेता है या ज्यादा है, तो भी ध्यान रखना है कि बच्चा को उसको स्क्रीनिंग टाइम होता है, उसमें बच्चे को देखना है कि उसका हाइट के साथ वेट बढ़ रहा है कि नहीं, बट बच्चा ओबेसिटी का तो शिकार नहीं हो रहा है।
1: अच्छा,
0: तो ये भी ध्यान रखना है। तो चौथा पॉइंट है शिशु का जो मस्तिष्क का विकास है वो 85% ये विद इन 6 आवर में ही हो जाता है, 6 साल 6 साल में हो जाता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो 0 से 3 साल में हम लोग बच्चों को विशेष ख्याल रखेंगे तभी उसका ब्रेन का डेवलपमेंट,
1: मस्तिष्क का विकास बढ़िया।
0: हाँ, तो 6 साल के अंदर भी बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है।
1: तो इसके लिए जो पोषण के लिए जो आहार होते हैं,
0: हाँ, वही इसलिए आहार दिया गया,
1: इसीलिए
0: आहार में, और खासकर ये प्रोग्राम जो पोषण सप्ताह है, और ये जो इस साल का जो 2026 का है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपोषित माँ का अभियान। सुपोषित माँ का अभियान का मतलब है कि शिशु का 85% ब्रेन का डेवलपमेंट जो है विद इन 6 आवर चाइल्ड में हो जाता है।
1: अच्छा, सुपोषित माह अभियान, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं,
0: इसको बोल सकते हैं। 1 सितंबर से लेके अभी 9 सितंबर तक चलेगा
1: जी,
0: वो सुपोषित माह अभियान इसको कह सकते हैं
1: जी। हाँ,
0: इस सप्ताह का इसमें आंगनबाड़ी जितना है सरकार का, सभी आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी वर्कर, सहिया वर्कर, ANM मुझे न सब लोग मिल के जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल के बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट देखते हैं, और गर्भावस्था से ही सभी ख्याल रखना। बच्चे को फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन का मतलब है कि जिस दिन उसका महीना बंद हुआ, जिस दिन प्रेग्नेंट हुई, आजकल आंगनबाड़ी में प्रेगनेंसी किट रखा हुआ है, हीमोग्लोबिन किट रखा हुआ है, ब्लड शुगर किट रखा हुआ है, सरकार ने सारी व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र में दे दिया है। ANM हमारी जाती है टीकाकरण के दिन, और वो दिन ये काम करना है। अगले जो आहार है 6 माह को बच्चों को जब जैसे 6 महीना होगा उसको मीनिंग फूड उसको शुरू कर देना है।
1: जी।
0: दूसरा पॉइंट है कि 0 से 3 साल जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो बच्चे में लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। यहाँ पर जब चाइल्ड डेवलप ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो लैंग्वेज का लर्निंग कैपेसिटी बहुत तेज होता है। इस उम्र में बच्चों को जौन भाषा में सिखाइएगा तुरंत सीख लेगा।
1: अच्छा।
0: तमिल हो, कन्नड़ हो, इंग्लिश हो, जो अच्छा। भाषा दीजिएगा।
1: अच्छा।
0: तो ये 0 से 3 साल का बहुत अच्छा पीरियड होता है और 6 वर्ष सकले आप कोई भी लैंग्वेज बच्चों को आप सिखा सकते हैं।
1: जी।
0: तो तेजी से डेवलप होता है, यहाँ पर बोलने और सीखने की क्षमता बच्चों में बहुत मजबूत होता है।
1: जी।
0: तीसरा पॉइंट है खेल पर आधारित यहाँ पर सीख मैंने गेम खिलाया जाता है बच्चों को, इसलिए आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल कहा जाता है। खेल खेल में बच्चों को बहुत सी चीज़ें यहाँ सिखाया जाता है और प्ले स्कूल भी इसको कहा जाता है। और उसका उचित आहार, बात करना सिखाना, रचनात्मक तरीकों से कार्य खेलना कराना और बच्चे को प्रेरित करना यहाँ पर, मतलब ये आंगनबाड़ी नहीं है, एक तरह से ये बच्चों के लिए प्ले स्कूल है। मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट है और साथ में पोषण ट्रैकर के हिसाब से उसको देखना है कि बच्चे का डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं।
1: कुल मिलाकर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं सर कि हमारे जो बच्चे हैं सर्वप्रथम आप इनका ख्याल रखिए पोषण के रूप में।
0: हाँ, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है।
1: और जितना इनकी अवधि बताई गई है, अगर बेहतर रूप से इनका पोषण कर दिया जाए
0: तो बच्चा कुपोषित कभी नहीं होगा।
1: तो कभी नहीं कुपोषित
0: होगा, कभी नहीं होगा बहुत। यदि 0 से 6 साल में बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया, उचित आहार मिल गया सरकार के द्वारा, वो अपने ये न तो ये बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाएगा। और सबसे लास्ट 5वां पॉइंट है सबकी भागीदारी और सशक्त आंगनबाड़ी। गांव में आप ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र बना के रखिए लोगों के, आप देखिए गांव में दूर में किनारे में आंगनबाड़ी बना देता है, वहां को जाना भी पसंद नहीं करता। तो ऐसे से उसको बोलते हैं हम लोग सबकी भागीदारी, मैंने कम्युनिटी में जितने लोग हैं, मुखिया हुआ, सरपंच हुआ,
1: सब पहुंच
0: पंचायत संबंधी हुआ, इजिली वहां ऊपर विजिट हो सके। शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, वहां पर पानी पीने का व्यवस्था होना, साफ पानी पीने का प्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वहां पर बैठने का व्यवस्था होना चाहिए, महिलाएं आती हैं उनके लिए शौचालय होना चाहिए। इस संस्था का पूर्ण विकसित करें और समुदाय संस्थाएं गांव के सभी लोगों को मिलकर इसका पूर्ण विकास करें। और लास्ट में हम पंखुड़ी एक पोर्टल है उससे जोड़ें।
1: अच्छा।
0: और हर आंगनबाड़ी पंखुड़ी पोर्टल से जोड़ के प्रॉपर डेवलपमेंट करके ऐसा हम लोगों को विश्वास करा सकते हैं।
1: जी। अच्छा सर, ये हम जानना चाहेंगे, हमारे जो युवा हैं खासकर, तो आजकल पढ़ाई लिखाई वगैरह के चलते निश्चित रूप से उनको जो है मस्तिष्क पर भी दबाव पड़ता है।
0: हाँ।
1: और शारीरिक भी बहुत दौड़ धूप के बाद उस पर भी प्रभाव पड़ता है, तो उनका आहार कैसा होना चाहिए?
0: देखिए प्रॉपर हम 4 चीज पर बात करेंगे किसी भी मनुष्य के लिए, जब वो
1: चाहे युवा हो चाहे कोई भी।
0: हाँ।
1: जी।
0: सबसे पहला चीज प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब है उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो उचित आहार मिलना चाहिए उनको।
1: जी।
0: दूसरा कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी, 15 से 20 मिनट उनको मैंने भाग दौड़ वाला एक्सरसाइज करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और 15 से 20 मिनट में उसको योगा मेडिटेशन करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया 15 से 20 मिनट और 15 से 20 मिनट योगा हो गया। और चौथा पिलर हो गया सकारात्मक सोच।
1: अच्छा।
0: उसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड।
1: अच्छा।
0: ये 4 पिलर पर आप ध्यान दीजिएगा तो मनुष्य के जीवन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आंगनबाड़ी में इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। आंगनबाड़ी में किशोरी स्वास्थ्य योजना, खास करके 10 साल से 19 साल के लड़के लड़कियों को वहां भी उचित आहार देना है।
1: अच्छा।
0: उसके लिए सरकार अलग से फंड देती है। उसका टीकाकरण, उसका डेवलपमेंट, उसका सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो 10 साल से 19 साल के बच्चों को किशोर और किशोरी योजना भी है, आंगनबाड़ी में ऐड है। हालांकि लोगों के द्वारा देखने को नहीं मिलता है, खासकर बच्चों के डॉक्टर के जाइए और उनसे ये सवाल पूछिए तो बच्चों का जो पोषण सप्ताह के बारे में शायद उनको पता होगी, क्योंकि हम लोग प्रभारी रह चुके हैं तो ग्रामीण लेवल में जो प्रभारी रह चुके हैं उनके प्रोग्राम से मतलब होता है। लेकिन बच्चे के डॉक्टर को आंगनबाड़ी केंद्र में, आंगनबाड़ी सहिया को, सहिया साथी है भाई है, और साथ में हमारे जो ये सहिया साथी के साथ BTT लोग होते हैं और हमारे NM होती है, ये ग्रुप है, सप्ताह में एक दिन वहाँ पर आंगनबाड़ी टीका केंद्र में बैठना है और वहाँ पर NM के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, सहिया के साथ, गांव के जो मुखिया हैं ये सारे मेंबर को बैठ के डिसाइड करना है कि हमारे गांव के बच्चों का डेवलपमेंट और प्रेग्नेंट लेडी को उचित पोषाहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है
1: जी।
0: नहीं मिल रहा है तो आपको जाकर देखने की जरूरत है और उसको अवेयरनेस करने की जरूरत है।
1: अच्छा एक सवाल सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो स्थिति है आपको खान पान की, लोग जंक फूड की तरफ है बहुत से लोग, और ये आपकी जो साग सब्जियां जो है वो थोड़ा सा
0: कम कर दिए लोग।
1: कम कर दिए,
0: इसके पीछे देख कारण क्या है
1: जी?
0: लोगों का मुंह का टेस्ट बदल गया है
1: जी,
0: स्वाद। और स्वाद में क्या होता है कि जितने सब्जी फ्रूट्स आ रहे हैं उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है
1: जी, जी, जी।
0: तो इसके चलते लोगों का टेस्ट बदल रहा है। यदि घर में आप साग उगा के खाइए उसका टेस्ट देखिए और बाजार से लाके साग खाइए, दोनों में टेस्ट अंतर पड़ जाएगा।
1: तो ऐसी स्थिति में
0: ऑर्गेनिक फूड
1: जी,
0: ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जो लोग किसान भाई लोग जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनको प्रमोशन देने की ज़रूरत है। और बिना पेस्टिसाइड और बिना फर्टिलाइजर का जो साग सब्जी उसको यूज कीजिए तो थोड़ा महंगा होता है, तो उसको यूज करने से आपका टेस्ट उनका बदल जाएगा। और ये खाने के पीछे, लोगों के पीछे कारण ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेने के पीछे उनको जो मुंह का टेस्ट है वो बिगड़ गया है।
1: तो इस बात से तो ये निष्कर्ष निकलता है कि हमको जो साग सब्जियां भी लेना है वो हमको ऑर्गेनिक लेना है।
0: हाँ, ऑर्गेनिक लीजिए आप।
1: अच्छा,
0: घर में छोटा वो आंगन में आपका खेत है तो उसमें उगाइए, और खासकर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जो किसान उनसे कॉन्टेक्ट करके जो है आप सामान लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होते जा रही है लोगों को। और कोशिश कीजिए वैसे सब फल सब्जियों का प्रयोग कीजिए जिसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कम हो,
1: कम
0: यूज होता है। जैसे बाजार से सब्जी लाते हैं उसको काट के उसको पानी में डाल दीजिए थोड़ा देर के लिए।
1: अच्छा।
0: कुछ डिटर्जेंट ऐसा आता है या कुछ पेस्टिसाइड कम करने के लिए आता है, एक दो बूंद ड्रॉप डाल दीजिए, आधा घंटा पानी में सब्जी रहने, कुछ तो कम हो जाएगा।
1: उबाल दीजिए,
0: हाँ उबाल दीजिए पानी में डाल के, नमक डाल के थोड़ा कम करके उसको हिसाब से खाइए, तो आपका स्वास्थ्य पर इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए लोगों के पास पैसा नहीं था
1: जी,
0: तो लोगों के पास जब पैसा आया तो लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया
1: जी, जी।
0: और लाइफ स्टाइल बदल गया तो लोगों का लाइफ स्टाइल डिजीज भी हो गया, इसमें फास्ट फूड भी आता है
1: जी।
0: तो लाइफ स्टाइल डिजीज जब आपका जब हो गया तो लाइफ स्टाइल डिजीज हो ना ही आपको, जब खाने का तरीका बदल दीजिएगा, रहने का तरीका बदल दीजिएगा तो डिजीज होना ही है। और लाइफ स्टाइल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड, उसको रोका जा सकता है। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब जितनी बीमारियाँ हैं सब लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। जीवन का खान पान बदलना, रहन सहन बदलने से बीमारी हो रही है। बच्चों को शुरू से प्रमोशन दीजिए कि आप फास्ट फूड भी खाओ लेकिन साथ साथ आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी लो और साथ में जो पोषण युक्त भोजन होता है उसका भी सेवन करो।
1: और महिलाएं या फिर अभिभावक इस बात पर जरूर ध्यान दें, गौर करें कि वे प्रथम 6 वर्ष
0: बच्चों के
1: डेवलपमेंट के लिए, बेहतर विकास के लिए,
0: जिस दिन महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है उस दिन से लेके बच्चे के 6 साल तक ले, जच्चे और बच्चे को 6 महीने तक ले, बच्चों को दूसरा भी प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, ताकि पहला बच्चा को डेवलपमेंट बढ़िया से हो सके तभी दूसरा बच्चा अप्लाई है। तो वही करते हैं 0 से लेके 6 वर्ष तक ले बच्चे के डेवलपमेंट के साथ साथ जो जच्चा है उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तभी स्वस्थ माँ रहेगी और स्वस्थ बच्चा जन्म देश का स्वस्थ नागरिक हो सकता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
1: आप थे पलामू जिला के मेदनी राय मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट के वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सर, आप कार्यक्रम से जुड़े और पोषण माह के जो लक्ष्य हैं और किस प्रकार पोषण से लाभ हमारे श्रोता ले सकते हैं और हमारा देश एक स्वस्थ देश के रूप में कहा जा सकता है, आप सारी बातों से जानकारी अवगत कराए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, पूरा रेडियो स्टेशन परिवार को और ग्रामीण श्रोताओं को भी।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी के अंतर्गत भेंट वार्ता, स्वस्थ पोषण खुशहाल जीवन। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, फिजिशियन पलामू। भेंट करता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से हम बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

दीवाना फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाजें थी विनोद राठौर और साथियों की। गीत लिखा था समीर ने और इसकी तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने। अगला गीत आई सुनते हैं दिल परदेसी हो गया फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

त्रिदेव फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मनहर उदास और अलका याग्निक की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है दिल जले फिल्म से, आवाज़ कुमार सानू की है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।

भीगी पलकें फिल्म से भी आपने ये गीत सुना। गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। एमजी हशमत के बोल थे और जुगल किशोर का संगीत था। प्रेम गीत लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत। आवाज़ जगजीत सिंह की है।

गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ पंकज उदास की थी, शब्द रचना इंदिवर की थी और इसकी धुन बनाई थी अन्नू मलिक ने। इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया आप बने रहें हमारे साथ।

0: पूर्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी, और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई है, जबकि लगभग 4,900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशुल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले 2 दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20

0: years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तीन नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर की जा रही है।
3: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा आपके इशारों पर। जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
4: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है।

0: कविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं, इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जाँच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
1: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ड को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।

0: महंत नृत्य गोपाल दास की सदारत के तहत अयोध्या में मनी राम दास छावनी के मकाम पर मुनक्किदा ट्रस्ट की मीटिंग के बाद इस तकर्रुरी का ऐलान किया गया। CEO ट्रस्ट के इंतजामी कामकाज निगरानी के जिम्मेदार होंगे और वो श्री राम मंदिर कॉम्प्लेक्स से मुतालिक कामकाज की तमाम अहम जिम्मेदारियों को अंजाम देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए मेंबरों के नामों का भी ऐलान किया है, जिसमें अयोध्या के सीनियर वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद से रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के उबरी जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने इतला दी कि ट्रस्ट के नए CEO मगरबी एयर कमांड के साबिक कमांडर ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम रोल अदा किया था। वो 30 अप्रैल 2026 को रिटायर्ड हुए हैं। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। 6 जुलाई को 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक सर्च कमेटी तश्कील दी गई थी, ताकि वो श्री राम मंदिर में दान की चोरी के इल्जाम के बाद CEO का इंतखाब करे। CEO के ओहदे के लिए 5,500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई थीं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वीवर अब से कुछ देर में भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके हमराह बेल्जियम के वजीर दिफा थ्यू फ्रैंकिन होंगे। ये बेल्जियम के वजीर आजम का गुज़िश्ता बरस फरवरी में ओहदा संभालने के बाद भारत का पहला दौरा है। वो कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें बाहमी ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात का अहाता किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि ये दौरा भारत बेल्जियम शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने और तजारत व सरमायाकारी, दिफाओ सिक्योरिटी और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का एक मौका फराहम करेगा।
2: 2 दहाइयों में बेल्जियम के वजीर आजम का भारत का ये पहला दौरा है जो भारत बेल्जियम ताल्लुकात को एक नई सम्त अता करेगा। इस दौरे से भारत और बेल्जियम के दरमियान मुसलसल आला सतही राब्तों की अक्कासी होती है। ये भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मजबूत करने के सिलसिले में बेल्जियम के अहम रोल को भी तकवीत बख्शेगा। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक अहम इकतसादी शराकतदार है। 2025-26 में बाहमी तजारत 13 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बेल्जियम के वजीर आजम का 4 सितंबर को मुंबई जाने का भी प्रोग्राम है। बेल्जियम के दिफा और गैर मुल्की तजारत के वजीर के साथ साथ बेल्जियम की दिफाई सनतों के एक वफ्द की मौजूदगी भारत और बेल्जियम के दिफाई सनती को निजाम में इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगी। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो भारत की बार काउंसिल की तश्कील 9 के मामले को उस वक्त देखेगा जब 9 मुंतखबा रियासती बार काउंसिल्स भारत की बार काउंसिल की तश्कील के लिए लाजमी अमल मुकम्मल कर लें। सुप्रीम कोर्ट उन अर्जदाश्तों की समाअत कर रही थी जिसमें BCI के चेयरपर्सन के ओहदे पर सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा के मुस्तकिल जारी कब्जे को और उनकी मुद्दत कार में 2030 तक तौसी को चैलेंज किया गया था। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत की सदारत में एक बेंच ने दायरा इख्तियार के हामिल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस को हिदायत दी है कि वो 2 हफ्ते के अंदर रियासती बार काउंसिलों में ख्वातीन मेंबरों को ऑप्ट करने के इल्तिवा में पड़े काम को मुकम्मल कर लें। वजीर खारजा एस जयशंकर आज एक सरकारी दौरे पर पोलैंड पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को फरोग देना है। पोलैंड में भारत की सफीर नीता घूषण ने वारसा में हवाई अड्डे पर वजीर मौसूफ का खैर मकदम किया। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर पोलैंड के नायब वजीर आजम रेडोस्ला सिकोरस्की के साथ मुजाकरात करेंगे। पोलैंड में अपनी मीटिंग को के इख्तिताम पर वजीर खारजा यूक्रेन का सफर करेंगे, जहां वो यूक्रेन के अपने हममनसब एंड्री साइबा से बातचीत करेंगे। ये आकाशवाणी है। ईरान ने आज खबरदार किया है कि वो अमेरिका के साथ जारी अपने तनाजे के सिलसिले में एक नई हिकमत अमली इख्तियार करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाजे में आई हालिया तेजी के बाद ये बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कौमी सलामती की आला काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने कहा कि मैदान जंग पर सिफारतकारी में और इकतसादी नाकाबंदी से महाज आराई में ईरान की नई हिकमत अमली उसके मुखालिफिन की बुनियादों को हिला कर रख देगी। ये इंतबाह पूरे मगरबी एशिया में की पोजीशंस पर ईरानी हमलों के ताजा लहर के बाद सामने आया है, जिसे कई हफ्तों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दोनों तरफ से सबसे भारी हमले करार दिया गया है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज प्रोग्राम में हम बात करते हैं हिंदी सिने जगत के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की।

साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। साधना के पिता ने उनका नाम साधना इसलिए रखा क्योंकि वो उस दौर की एक्ट्रेस और डांसर साधना बोस के फैन थे। यहां मैं आपको ये भी बताता चलूं कि साधना के पिता फिल्म एक्टर हरी शिवदासानी के भाई थे और हरी शिवदासानी एक्ट्रेस बबीता के पिता यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के नाना।

0: कराची में जन्मी साधना पार्टीशन के बाद अपने माता पिता के साथ बंबई यानी आज की मुंबई आकर बस गईं। यहाँ उनकी माँ ने उन्हें 8 साल की उम्र तक घर में ही पढ़ाया। उसके बाद वडाला मुंबई के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की साधना ने जय हिंद कॉलेज चर्चगेट मुंबई से।
1: मेरे

साधना के मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा तो बचपन से ही थी और इसके लिए उनके पिता उन्हें बहुत सपोर्ट भी करते थे। बात है सन 1955 की, जबकि राज कपूर फिल्म श्री 420 बना रहे थे, तब उन्हें फिल्म के एक गाने में एक बच्ची की भी जरूरत थी। साधना के पिताजी ने इस रोल के लिए कोशिश की और साधना चुननी गई। श्री 420 फिल्म का आपको वो गीत सुनवाते हैं, ये रहा। मुड़ मुड़

0: एक्ट्रेस नादिरा पर पिक्चराइज्ड इस गीत में साधना भी नजर आती हैं। एक्टिंग का शौक तो साधना को था ही, सो वो अपने कॉलेज के ड्रामों में भी पार्टिसिपेट किया करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक ड्रामे में उन्हें किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया और कास्ट कर लिया अपनी सिंधी फिल्म अबाना में। ये बात है सन 1958 की। इस फिल्म में साधना ने उस दौर की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी अदाकारा शीला रमानी की छोटी बहन का रोल किया था।
1: मैंने

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म अनीता का गीत जो साधना ने मनोज कुमार के साथ की थी। मनोज कुमार और साधना की एक और फिल्म जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो कौन थी? जी, मैं फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, यही उसका नाम है। और इस फिल्म का संगीत

0: साधना के करियर की ये सुपरहिट फिल्म थी। हालांकि साधना की हिंदी फिल्मों की पारी शुरू हुई फिल्म लव इन शिमला से, जिसे प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी ने। उस समय एक एक्टिंग स्कूल भी शशधर मुखर्जी चलाया करते थे, उसमें साधना भी ट्रेनिंग ले रही थी और शशधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी भी उसी स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। उस समय की बात है जबकि शशधर मुखर्जी को असिस्ट कर रहे थे आर के नैयर। उसी दौर में प्लान हुई फिल्म लव इन शिमला और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी शशधर मुखर्जी ने सौंप दी आर के नैयर को। हीरो तय हुए जॉय मुखर्जी और हीरोइन साधना।
1: Hey baby, hey,

लव इन शिमला फिल्म की शूटिंग से पहले का एक वाक्या आपको सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब इस फिल्म के लिए साधना का लुक टेस्ट हुआ। अब आर के नैयर और यूनिट के कुछ और लोगों को लगा कि साधना का जो ये उठा हुआ माथा है यानी फोरहेड, ये इनकी खूबसूरती को कुछ कम कर रहा है। तब आर के नैयर ने ब्रिटिश एक्टर ऑड्री हेपबर्न के

हम बात कर रहे थे साधना कट बालों की। ऐसा नहीं है कि उस दौर में सिर्फ साधना की हेयर स्टाइलिंग को ही कॉपी किया गया। उस दौर की फैशन आइकन रही साधना। ये साधना ही थी जिन्होंने चूड़ीदार पजामा और कुर्ते का चलन शुरू किया जो आज तक फैशन में है। अब आपको सुनवाते हैं वो गाना जो हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे रोमांटिक गाना माना जाता है।

हम दोनों फिल्म का गाना साधना और देव आनंद पर पिक्चराइज हुआ, कभी भुलाया नहीं जा सकता, एक किंवदंती सा बन गया है। मोहब्बत करने वालों के बीच इस गाने की अपनी एक जगह है। खैर, यहाँ साधना की एक और उल्लेखनीय फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, फिल्म मेरा साया। इस हिट फिल्म में साधना की जबरदस्त अदाकारी ने सभी का दिल जीत लिया और संगीत आज भी सुना जाता है।

दोस्तों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में आज भी एक कहावत सी बन गई है और बेहद पसंद किया जाता है ये गाना। खैर साहब, हम बात कर रहे थे साधना की, जिन्होंने 7 मार्च 1966 को अपनी पहली फिल्म के निर्देशक आर के नैयर से शादी कर ली। अपने फिल्मी करियर में साधना ने फिल्म डायरेक्ट भी की, गीता मेरा नाम।

और अब जिक्र साधना की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों का, जिनके गीत शायद वक्त की कमी के कारण हम यहाँ आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र जरूरी है क्योंकि उनके गाने सुपर डुपर हिट हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे आपको इन फिल्मों के गीतों की झलक सुनवाने की। एक फूल दो माली,

0: मस्ताना।
1: अपने जीवन के आखिरी समय में साधना अकेली हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन फिल्मों से उनका जो लगाव, प्यार और समर्पण था वो शायद इस गीत में व्यक्त हो रहा है।

0: तो दोस्तों, अभिनेत्री साधना पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। रमेश गोखले द्वारा प्रोड्यूस इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: जगत भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

शब्द रचना इंदीवर की थी और इसकी तर्ज बनाई थी अनु मलिक ने। तेजाब फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की, जावेद अख्तर के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार थे समीर और संगीतकार अनु मलिक। हंगामा फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। आवाज़ें हैं शान और साधना सरगम की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

जुर्म फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी कुमार सानू और साधना सरगम की, गीतकार थे इंदीवर और संगीतकार राजेश रोशन। डैडी लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत।

बैठा था और संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने। कालिया फिल्म से आइए अगला गीत सुनते हैं। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और आर डी वर्मन का संगीत है।

कालिया फिल्म से भी आपने ये नगमा सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था आरडी वर्मन ने। खामोशीदा म्यूज़िकल, लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत। आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत है।

खामोशी द म्यूज़िकल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गाया था कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और जतिन ललित का संगीत था। और ये है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म साजन से। आवाज़ें हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन और इसकी प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन

0: ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को एफसीएनआरबी जमा ईसीबी और ओएफसीबी के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब एफसीएनआरबी जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम की प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश बाग चंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rocks near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods. As rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas, death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitive